ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज दिन सोमवार है, शक संवत 1948, शुद्ध ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, तदनुसार 29 जून सन 2026 सुबह के 5:58 और 23 सेकेंड हुए हैं। आरंभ होता हमारा आज का दैनिक प्रसारण। आप सबका आज का दिन शुभ हो। सुप्रभात।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपसे बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस ईक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में एफआईएच प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में सुबह के 6:05 और 11 सेकेंड्स हुए हैं। आइए सुनते हैं चिंतन, श्रद्धा और विश्वास।

कभी किसी पत्रिका में उड़िया की एक कहानी का हिंदी अनुवाद पढ़ा था। गांव में अकेली रह रही वृद्धा माँ को बेटा शहर ले आता है। वृद्धा माँ नेम टेम वाली, नियमित भजन कीर्तन करने वाली, पूजा पाठ करने वाली, नियमित मंदिर जाने वाली। बेटा शाम को शहर पहुंचा है माँ के साथ। परेशान है, किसे अपना दुख कहे। जिस मोहल्ले में उसने किराए का घर ले रखा है उसमें करीब ठीक ही कहीं मस्जिद है। भोरे उसमें तार सप्तक में अजान दी जाती है, आवाज यहां तक आती है। माँ जब सुनेगी तो कैसी चिढ़ जाएगी, कहां ले आया मुझे उठाकर। पति पत्नी चिंतित हैं, देर तक अपना दुख बतियाते हैं, चिंता में डूबे डूबे ही सोते हैं। भोर में किवाड़ पर दस्तक, माँ है, अजान दी जा रही है, अब क्या होगा। पर दरवाजा खोलना ही है। डरते सहमते बेटा किवाड़ खोलता है। माँ हर्षित है, आह्लादित है। अरे बेटा, कहीं पास ही मंदिर है क्या। कितने अच्छे मोहल्ले में तूने घर ले रखा है। कितना मधुर और सदा स्वर है गायक का, कितनी मीठी आवाज में भजन गा रहा है। जी जुड़ा गया, तन्मयता और श्रद्धा ऐसी कि औरों की दृष्टि में जो मस्जिद की अजान है, निश्चल मन में वह भजन है, अंतर तक भिगो देने वाला भजन है। क्या यही मधुमती भूमिका नहीं है। मेरे अग्रज एक भजन गाते थे, सिर धर मटुकिया डोले रे, ब्रज की ग्वालने दही बेचने अन्य गांव गई हैं, सिर पर दही की मटकी है, मन में हर घड़ी छाए रहने वाले श्याम। नतीजा, दधी का नाम भूल गई ग्वालिन, हरी ले बोले रे, लो सिर पर है दही और मन में है हरी, कहां दही याद रहा, हरी को बेचे जा रही है। यह नहीं कहती दही लोरे, कह रही है हरी लोरे, हरी लोरे। मुग्धा अवस्था का चरम, छाप तिलक धर दीनी या ऊधो मन तो एकै माही, सो तो ले घनश्याम सिधारे। जोग सिखावन का ही कि आत्मा अवस्था कहने का अब होश कहां रह गया है, कहां सुधी है अजान में और हरि भजन में भेद करने का। मीरा के विषपान में लोग ईश्वर कृपा चमत्कार पाते हैं। जो राणा ने भेजा था वह तो मीरा के लिए एक पेय पदार्थ था, विष कहां था कि प्राण लिया। हृदय राम जो हुई तो भेद करने पर रखने की दृष्टि कहां रह जाती है। स्वर्गीय भोलानाथ पिंब की एक कविता है, श्रद्धा जब दिया जलाती है, प्रतिमा की पूजा भी ले जाती है, मंदिर भी उजियारा हो जाता है। नहीं बंधु, श्रद्धा जब श्रद्धा से दिया जलाती है तो कहां प्रतिमा कहां मंदिर, बाहर भीतर चारों ओर उजियारा ही उजियारा। सिर पर दही, मुंह में हरी ले, हवा में अजान के स्वर, कानों में भजन के मीठे बोल।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना।

सद्गुरु के संसर्ग में रहने से व्यक्ति के सभी बुरे कर्म और पाप ऐसे धुल जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार।

सांसारिक मोह माया और कर्तव्यों का पालन करते हुए जो व्यक्ति गीता का ज्ञान प्राप्त करता है वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है।

स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि गीता का ज्ञान साक्षात उनका स्वरूप है। इसे पढ़ने वाला सीधे भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है।

मुकेश के कहे इसी भक्ति गीत के साथ कार्यक्रम वंदना यही समाप्त होता है। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी।

श्री राम की सुहावनी गाथा को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने वाणी दी, उसे जगत जननी पार्वती को सुनाया। फिर वही कथा मुनि याज्ञवल्क ने मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज को सुनाई। ये कथा फिर वाराह क्षेत्र में तुलसीदास ने अपने गुरुजी से सुनी, किंतु तब उनके अपने अनुसार अपने लड़कपन के कारण उसे भली प्रकार समझ नहीं सके। फिर भी जब गुरुजी ने बार बार वही कथा कही, तब अपनी अल्पबुद्धि के अनुसार उसे समझा और अपने संतोष के लिए उस कथा की रामचरितमानस के रूप में रचना की। राम कथा को तुलसीदास जी ने पंडितों को विश्राम देने वाली, सभी मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली बताया है। ये कथा नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती अर्थात दुर्गा है। स्वयं तुलसीदास के लिए ये उनकी माता हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए जानते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाली शेष कार्यक्रमों के बारे में।

6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। 7:00 का समय होगा लोक गीतों के कार्यक्रम लोक रंग का। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। आज का विषय होगा बहुप्रतिभा सिद्धांत के द्वारा रुचि के अनुसार करियर निर्माण। 7:30 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी एल्बम के गीत के अंतर्गत कार्यक्रम गीत संगीत। 8:00 आप सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से, और उसके ठीक बाद 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिसे हम रिले करेंगे अपने रांची केंद्र से। 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। 9:00 का समय होगा विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों का जिसे हम रिले करेंगे अपने मुंबई केंद्र से, और दिन के 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।

दिन के 11 बजे आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को हमारे मुंबई केंद्र से। 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। दोपहर के 1:20 पर आप सुनेंगे पुनः विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को हमारे मुंबई केंद्र से। 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 3 बजे आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को हमारे मुंबई केंद्र से और 4 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। 4:02 पर आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को हमारे मुंबई केंद्र से और 4:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की आज की कड़ी। शाम के 5 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी। 5:30 पर समय होगा ग्रामीण श्रोताओं के कार्यक्रम खेतीबाड़ी का। 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। 6:02 पर आप सुनेंगे महिलाओं के लिए कार्यक्रम अंगना। 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत और 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 7:10 पर जिले में आजकल आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से। सात बजकर 15 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जानकार। 7:30 पर समय होगा ऑल टाइम हिट्स का। 8 बजे आप सुनेंगे फार्मेसी की दोपहर का आधारित कार्यक्रम आपकी चाहत। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। 9 बजे News@9 और रात्रि के 9:15 पर आप सुनेंगे स्पोर्टलाइट हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि के 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों का हमारे मुंबई केंद्र से और रात्रि के 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि के 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक फिल्म से और कार्यक्रम का 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। और कार्यक्रम का समापन होगा रात्रि के 11:10 पर हमारे स्टूडियो से।

तो दोस्तों ये थी संक्षिप्त जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: श्रीमोदी उक्तवान् यत् भारतं तादृशीं हिन्द महासागरस्य कल्पनां करोति यत्र समुद्रीय सुरक्षया सह आर्थिक समृद्धिरपि सुनिश्चिता स्यात्।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: पर्यावरण संरक्षणस्य सतत विकासस्य च नेतृत्वाय सेशल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे श्री नरेन्द्र मोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मानः गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन प्रदत्तः। सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन प्रदत्तः अयं पुरस्कारः स्थायी अभिवृद्ध्यर्थं प्रधानमन्त्रिणः दीर्घकालीन संबलस्य तस्य हरितदृष्टेः च प्रतीकः वर्तते। श्रीमोदी जलवायु परिवर्तनस्य समाह्वानानां विरुद्धं संघर्षं कुर्वतां राष्ट्राणां कृते एतं पुरस्कारं समर्पितवान्। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी सेशल्स देशे ह्यः मारिशस् देशस्य समकक्षेन डॉ नवीनचन्द्र रामगुलामेन सह मिलितवान्। द्वावपि नेतारौ भारतस्य मारिशस्य च वर्तमान सहकार्यस्य विषये चर्चां कृतवन्तौ। भारतेन प्रदत्त विशेष आर्थिक अनुदानस्य कार्यान्वयनस्य प्रगतेः अपि तौ समीक्षां कृतवन्तौ। द्वावपि नेतारौ भारतस्य विजन महासागर इत्यस्य तथा नेबरहुड फर्स्ट इति नीतेः अन्तर्गतं भारत मारिशस वर्धित रणनीतिक सहयोगस्य महत्वस्य विषये वैश्विक दक्षिणस्य प्रति तेषां प्रतिबद्धतायाः विषये च सहमतिं प्रकटितवन्तौ। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक प्रकरणे भिवांडी नगरस्य सत्र न्यायालयेन त्रयाणां आरोपिणां कृते 6 जुलाई पर्यन्तं बन्धनं विहितम्। आरक्षि अन्वेषकाः अन्ताराज्य परीक्षा तस्कराणां संलग्नतायाः शंकां कृतवन्तः। भिवांडी आरक्षिणः न्यायालयं निवेदयन् यत् आरोपी दिल्लीतः भिवांडी नगरं गत्वा उक्त टीईटी प्रश्नपत्रं 1,50,00,000 रूप्यकेषु विक्रीतवान्। आरक्षि अन्वेषकाः लीक कृतस्य कागदस्य स्रोतः अन्वेष्टुं वित्तीय व्यवहारस्य परीक्षणं कर्तुं महाराष्ट्रे अन्यत्र कागदं विक्रीतम् अस्ति वा इति ज्ञातुं तस्कर समूहस्य अन्येषां सदस्यानां परिचयं कर्तुं च 10 दिनानां आरक्षि अभिरक्षणं याचितवन्तः आसन्। अधिकारिणः अवदन् यत् अन्वेषणेन अन्तर्राज्यस्य राष्ट्रियस्तरस्य च जालस्य संलग्नता ज्ञाता वर्तते। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण परिषदः 16 सम्मेलने समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमस्य विमोचनं करिष्यति। श्री नड्डा अस्मिन् एव सम्मेलने अनीमिया मुक्त भारत अभियानस्य परिचालन मार्गदर्शिकाः अपि विमोचयिष्यति। एनीमिया मुक्त भारत अभियानम् इत्ययं कार्यक्रमः भारतस्य एनीमिया विरुद्ध युद्धे महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः संयुक्तराज्यस्य भ्रमणस्य समाप्तेः अनन्तरं ग्रीस देशस्य एथेन्स नगरे व्यापारं निवेशं सामरिकं आर्थिक सहकार्यं च सुदृढीकर्तुं भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य उच्चस्तरीय सम्मेलनस्य नेतृत्वं कुर्वन् वर्तते। इति वार्ताः।
2: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में सुबह के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग।

0: अभी आप सुन रहे थे सियाराम पासवान और साथियों को। एक छोटे से अंतराल के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। आइए सुनते कुछ जरूरी संदेश, उसके बाद आप सुनेंगे गोविंद सिंह और साथियों के स्वर में गाए लोकगीत को।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: प्रोफेसर सुमर साहू की आवाजों में अभी आप ये सुन रहे थे लोकगीत, और इसी के साथ कार्यक्रम लोक रंग यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विविधता। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं एक वार्ता, विषय है बहुप्रतिभा सिद्धांत के द्वारा रुचि के अनुसार करियर निर्माण। वार्ताकार हैं संदीप सिन्हा।
1: ईश्वर की विभिन्न कृतियों में मानव का स्थान श्रेष्ठ कहा जाता है। ऐसा उसकी बौद्धिक क्षमता के आधार पर माना जाता है। बुद्धि के स्तर को मापने की एक और इकाई है प्रतिभा। आमतौर पर एक व्यक्ति एक ही प्रतिभा रखता है, जैसे कि पढ़ने में तेज होना या खेलने में तेज होना या संगीत में अच्छा होना। लेकिन किसी व्यक्ति में ये तीनों प्रतिभाएं हैं, जैसे वह पढ़ने में भी तेज है, खेलने में भी तेज है और संगीत में भी अच्छा है, तो इसे बहुप्रतिभावान कहा जाएगा। बहुप्रतिभा या मल्टीपल इंटेलिजेंस एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जिसे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर ने प्रतिपादित किया है। इस सिद्धांत के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति में 7 प्रकार की प्रतिभाएं होती है, लेकिन बात जब प्रधान प्रतिभाओं की करें तो किसी में 2 तो किसी में 7 प्रतिभाएं संतुलित रूप से हो सकती हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने प्रतिभाओं के वर्गीकरण के क्रम में पहली 2 को स्कूलों में विशेष महत्व देने की बात कही, अगली 3 को सामान्य कला से जोड़ा और अंतिम 2 को व्यक्तिगत प्रतिभा करार दिया। वे 7 प्रतिभाएं क्या है, आइए क्रमानुसार जानते हैं। दृश्य संबंधी या स्थानिक प्रतिभा। दृश्य को समझने की क्षमता वाले लोग चित्रों के रूप में सोचते हैं। इन्हें नक्शों, चार्ट, चित्रों एवं फिल्म देखने में आनंद आता है। उनके कौशल में पहेलियां बनाना, पढ़ना, लिखना, चार्ट एवं ग्राफों को समझना, स्केच बनाना, प्रतिबिंबों में हेरफेर करना, वास्तविक वस्तुओं की डिजाइन बनाना शामिल होता है। इस प्रकार की प्रतिभा वाला व्यक्ति नाविक, आर्किटेक्ट, मैकेनिक, इंजीनियर या इंटीरियर डेकोरेटर बनता है। शाब्दिक या बहुभाषा प्रतिभा। ऐसी प्रतिभा वाले व्यक्ति चित्रों के बजाय शब्दों में सोचते हैं। सामान्यतः ये शिष्ट वक्ता होते हैं। इनके कौशल में लिखना, बोलना, सुनना, कहानी कहना, हास्य का उपयोग, शब्दों के विन्यास एवं अर्थ की समझ, किसी को अपना विचार मनवाना और भाषा के उपयोग का विश्लेषण करना। ऐसे लोग कवि, पत्रकार, शिक्षक, राजनीतिज्ञ और अनुवादक बनते हैं। तार्किक या गणितीय प्रतिभा। ऐसी प्रतिभा वाले व्यक्ति तार्किक एवं संख्यागत तरीकों से संकल्पना कर विभिन्न जानकारियों के बीच समन्वय बैठाते हैं। अपने परिवेश के प्रति हमेशा जिज्ञासु होते हैं। उनके कौशल में प्राकृतिक घटनाओं के बारे में प्रश्न एवं विस्मय करना, जटिल गणितीय गणना करना, ज्यामितीय आकारों के साथ काम करना या जानकारी को वर्गों में बांटना शामिल होता है। ऐसी प्रतिभा वाले व्यक्ति वैज्ञानिक, लेखापाल, गणितज्ञ, कंप्यूटर प्रोग्रामर या शोधकर्ता बनते हैं। दैहिक या इंद्रियगत प्रतिभा। ऐसी प्रतिभा वाले व्यक्ति में शारीरिक हलचल एवं वस्तुओं को पकड़ने की दक्ष क्षमता होती है। ये खुद को हलचल के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इनमें हाथ एवं आँख के समन्वय का बेहतरीन बोध होता है। इनके कौशल में नृत्य, खेलकूद, अभिनय, कला एवं शारीरिक भाषा के बेहतर उपयोग की दक्षता होती है। ऐसी प्रतिभा वाले व्यक्ति एथलीट, शारीरिक शिक्षा के शिक्षक, अभिनेता, नर्तक एवं कारीगर बनते हैं। तालग्राही या सांगीतिक प्रतिभा। ऐसी क्षमता या प्रतिभा वाले लोग अपने आसपास की ध्वनि के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं, जैसे चिड़ियों की चहचहाहट, झिंगुर की आवाज या फिर वर्षा की बूंदों का शोर। ऐसे व्यक्ति ध्वनि ताल या पैटर्न के रूप में सोचते हैं। इनके कौशल में स्वर लहरी पहचानना, संगीत रचना और स्वर लहरी के ताल एवं संगीतीय ढांचे को याद रखना शामिल है। ऐसी प्रतिभा वाला व्यक्ति गायक, संगीतकार या वादक बनता है। अंतर व्यक्तित्व प्रतिभा, ऐसे लोगों में दूसरों को समझने की प्रतिभा होती है। ये किसी बात को अन्य लोगों के नजरिए से देखने और समझने का प्रयास करते हैं। वे दूसरों से बातचीत शुरू करने के लिए बोलकर या नजरों से सांकेतिक भाषा का प्रयोग दोनों करते हैं। इनके कौशल में लोगों की मनोदशा, प्रोत्साहन और इरादों पर ध्यान देना, विश्वास का निर्माण, शांतिपूर्ण ढंग से विवाद निपटाना और अन्य के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करना शामिल होता है। अंतर व्यक्तित्व प्रतिभा वाले व्यक्ति व्यापारी, राजनीतिक या परामर्शदाता बनते हैं। अंतः व्यक्तित्व प्रतिभा, ऐसे प्रतिभावान लोगों में अन्य की अंतः स्थिति को समझने की क्षमता होती है। वे दूसरों के साथ संबंधों एवं उनकी शक्तियां और कमजोरियों को समझने की कोशिश करते हैं। इनके कौशल में स्वयं की शक्ति और कमजोरी पहचानना, अंदरूनी भावनाओं के प्रति जागरूकता, सोच प्रक्रिया का आकलन, स्वयं के साथ तर्क वितर्क

0: वास्तविक प्रतिभा की बात करें तो यह प्रतिभा मानव को पहचानने, श्रेणी में बांटने और सांस्कृतिक मूल्यों का आदर का भाव जगाती है। आइए अब जानते हैं, यदि स्कूलों में हार्वर्ड गार्डनर के बहुप्रतिभा सिद्धांत या मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी को अपनाया जाए तो क्या होगा, बच्चों के प्रतिभा निर्माण में यह कैसे सहायक होगा। स्कूल छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं प्रतिभाओं के आधार पर उन्हें सीखने का अवसर प्रदान करेंगे, जिससे छात्र अधिक क्रियाशील और समर्पित विद्यार्थी बनेंगे। छात्र अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर उसे अपने सहपाठियों संग बांट सकेंगे। इसके द्वारा छात्रों को एक विशेषज्ञ बनने का प्रोत्साहन मिलेगा। शिष्य की तरह सीखने की गतिविधि अन्य छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में शामिल करेंगे। गार्डनर के सिद्धांत माने तो सीखना सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। छात्र जब अपनी बहु प्रतिभाओं का संतुलन समझने लगेंगे तो उनमें व्यक्तिगत शक्तियों के सम्मान की सीख मिलेगी और वे स्वयं सीखने की प्रक्रिया भी समझने लगेंगे। इससे शिक्षक भी जान पाएंगे कि किस छात्र में प्रबल अंतर व्यक्तित्व प्रतिभा की संभावना है। व्यक्ति में शक्ति उत्पन्न करने का अवसर भी सरल हो जाएगा। बहुप्रतिभा सिद्धांत वास्तव में किसी बालक में उसकी रुचि की प्रतिभा के विकास का अवसर प्रदान करती है, जिसे वह खुशी खुशी अपनाता है और क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ बनकर उभरता है। अध्ययन की इस राह में वह कुंठित नहीं बल्कि वास्तविक जिज्ञासु या व्यवहार करता है। खोज कर पाने की ललक उसे एक प्रतिभा संपन्न बनाती है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे एक वार्ता, विषय था बहुप्रतिभा सिद्धांत के द्वारा रुचि के अनुसार करियर निर्माण। वार्ताकार थे संदीप सिन्हा और इसके साथ कार्यक्रम विविधा यहीं समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं गैर फिल्मी एल्बम के गीत के अंतर्गत कार्यक्रम गीत संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शंकर महादेवन के गाए गीतों को।

0: एक छोटे से अंतराल के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। आइए सुनते कुछ जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
3: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
2: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
3: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
2: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
0: कार्यक्रम गीत संगीत में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं शंकर महादेवन के गाए इस गीत को।

0: वही सुनते हैं सोनू निगम को, एल्बम का नाम है चंदा की डोली।
1: कुछ बातें अनकही दिल में दबी रह जाती हैं, जो कभी तपिश, कभी खलिश और कभी घुटन बनकर हमेशा सताती हैं। इसीलिए जो कहना है कह दो, वरना ये अनकही यादें बनकर तमाम उम्र तुम्हारा पीछा करेंगी।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से, उसके ठीक बाद प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे जिसे हम रिले करेंगे अपने रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमरीका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान सम्पन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS

0: इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन, महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में चौथा वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी

0: संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार की कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
1: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, यूएई, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय एमएसएमई, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं जीएफएससी जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
0: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल दो फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
2: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। टीईटी परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर वत्सल अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
3: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
4: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच पहाड़ी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो से तीन दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112317107 और 0112334444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को एक रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, छह आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी, आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू, कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिन्दुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अल नीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फार्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड सेशल्स नेशनल डे सेलिब्रेशंस एज गेस्ट ऑफ ऑनर, ऑल्सो होल्ड्स टॉक्स विद हिज मॉरिशियस काउंटरपार्ट नवीन चंद्र रामगुलाम। United States and Iran agree to halt counter-strikes and resume talks in Qatar's capital, Doha, tomorrow. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan today. IMD issues red alert for very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in hockey, India beat England 3-2 in penalty shootout to finish FIH Pro League campaign on a winning note. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of the independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour. More from our correspondent.
7: An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special

0: And in the knockout stage of the FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 for its first knockout match victory at Los Angeles in the United States. Stephen Eustachio of Canada scored the goal in the second minute of the second half stoppage time. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
1: Thank you, Anuja. All the dailies have noticed the strengthening of India's maritime footprint in Seychelles with the Prime Minister's visit. PM Modi creates history with twin firsts, writes the Times of India. The first Indian PM to address Seychelles of National Assembly and the first to be honoured with the country's highest environmental honour. Lauding the support to austerity called by citizens, Prime Minister Modi backs self-reliance in aviation and defence sectors. Quoting the Prime Minister in his monthly radio programme Mann Ki Baat, the Asian Age writes, "From seas to skies, India is becoming secure." In a significant transformation, Army set to establish operationalized first integrated battle groups next month, headlines the Indian Express. Government to amend rules for speedy approvals for medical services, states in the Sun Times. The Statesman says, Northern Railway adds 2.2 megawatt rooftop solar capacity in April-May, accelerating green energy transition. The Economic Times headlines cites, foreign outflows thin down on healthier cues as cooling crude, RBI's rupee support and easing rallies at Asian rivals boost confidence in Indian markets. The dailies have also noted the missing monsoon at the heat wave back in the national capital after 40 days, with the nights and days warmest in 2 years, feeling a 50 degrees Celsius. And finally, in a first instance, Sanskrit University introduces B.Tech in AI and data science, providing opportunities to apply modern computational techniques to traditional domains such as Ayurveda, Yoga, Jyotish, Nyaya and other classical disciplines, states the Hindu. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi attends Seychelles National Day celebrations as guest of honour, also holds talks with his Mauritius counterpart Naveen Chandra Ramgoolam. United States and Iran agree to halt counter-strikes and resume talks in Qatar's capital Doha tomorrow. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan today. IMD issues red alert for very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in hockey, India beat England 3-2 in penalty shootout to finish FIH Pro League campaign on a winning note. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के खेलगांव में 1042 नवचयनित इंटर और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को प्रदान करेंगे नियुक्ति पत्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज करेंगे समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ। 3 साल तक के बच्चों को घर के पास मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शराब घोटाला मामले में राज्य के पूर्व मंत्री वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और उनके पुत्र को पूछताछ के लिए जारी किया समन। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के 20 जिलों में आज से 4 जुलाई तक बारिश, आंधी और वज्रपात की जताई संभावना। और भारतीय जूनियर हॉकी टीम में झारखंड से 4 खिलाड़ियों का चयन, 5 से 14 जुलाई तक इंग्लैंड में टीम खेलेगी 7 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 1042 नवचयनित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इनमें पहली से पांचवीं कक्षा के लिए 274 तथा छठी से आठवीं कक्षा के लिए 768 सहायक आचार्य शामिल हैं। राज्य सरकार प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 26,000 सहायक आचार्यों की चरणबद्ध नियुक्ति कर रही है, जिसके तहत अब तक 12,500 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह योजना पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की सोच पर आधारित है। इसका मकसद जन्म से 3 साल तक के बच्चों को घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत

0: करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने में अहम भूमिका निभा सकता है। एक कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने युवाओं से नौकरी मांगने की बजाय रोजगार देने वाला बनने का आह्वान किया। राज्य में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर कल से शुरू हो जाएगा। इस कड़ी में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चतरा जिले में कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडेय ने पत्रकारों से बातचीत की।
1: झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार पूरे राज्य में दौरा करके और सभी जिलों में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद का कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया है, ताकि किसी भी तरह से वोटर का नाम उस लिस्ट से नहीं कटे जो पात्र है, जो पात्रता रखता है, या जो 18 वर्ष जिसका आयु हो गया है उस आदमी का नाम वोटर लिस्ट में जुड़े।
0: रांची में महिला सशक्तिकरण को लेकर सामाजिक संस्था इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 325 की ओर से प्रत्युषा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित किया।
2: ये लोग लगातार सोशल वर्क करते हैं, स्कूल में जाके हैप्पी स्कूल बनाते हैं, जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम रहता है उसको दूर करते हैं। और अभी यहाँ कुछ जैसे बुके वगैरह जो दिया गया वो बच्चों के द्वारा ही बना के दिया गया, महिलाओं के द्वारा बना के दिया गया, तो लगातार ये लोग फील्ड में काम कर रहे हैं।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शराब कारोबार और उससे जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और उनके पुत्र रोहित उरांव को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। ईडी ने रोहित उरांव को आज तथा रामेश्वर उरांव को कल यानी 30 जून को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने को कहा है। यह कार्रवाई योगेंद्र तिवारी से जुड़े शराब कारोबार मामले की जांच के क्रम में की जा रही है, जिसमें ईडी पहले भी संबंधित ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। रांची के पहाड़ी मंदिर से बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए 82 श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालु 3 जुलाई को अमरनाथ गुफा के लिए प्रस्थान करेंगे और 6 जुलाई को बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। साथ ही वैष्णो देवी, रघुनाथ मंदिर, खीर भवानी और स्वर्ण मंदिर सहित अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों का भी दर्शन करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देवघर स्थित एम्स ने पहली बार सफलतापूर्वक ओपन हार्ट सर्जरी कर स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह जटिल सर्जरी कार्डियो थोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी विभाग के डॉ. रजत अग्रवाल और एनेस्थीसियोलॉजी विभाग के डॉ. संजय कुमार के नेतृत्व में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। रांची में कल 3 दिवसीय चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल 2026 का समापन हुआ। विस्तृत ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: रांची स्थित सरला बिरला यूनिवर्सिटी में आयोजित 3 दिवसीय चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल 2026 का कल सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, सम्मान समारोह और पुरस्कार वितरण के साथ समापन हुआ। समापन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई शिक्षाविदों, फिल्मकारों और कलाकारों ने भाग लिया। इस अवसर पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के कलाकार राज्य की संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता को देश दुनिया तक पहुंचाकर राज्य की ब्रांडिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सी. जगन्नाथ ने युवा फिल्मकारों से झारखंड की प्राकृतिक संपदा को फिल्मों के माध्यम से वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि अर्जुन मुंडा ने कहा कि सिनेमा समाज में रचनात्मक सोच विकसित करने का प्रभावी माध्यम है और नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। समारोह में विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं और प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का

0: मोहलिया। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: मॉनसून से पहले हजारीबाग नगर निगम ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस सिलसिले में महापौर अरविंद कुमार राणा ने शहर के स्कूलों समेत अन्य स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: मैं सारे निगम क्षेत्र के विद्यालयों का करने वाला हूँ विजिट। जहाँ भी आवास होगा हमारा विद्यालय को हम ठीक करेंगे। रोड और नली तो हमारा प्राथमिकता सूची में है। हम अभी 70 नलियों का और रोडों का काम करवाने वाले हैं। टेंडर हो गया हमारा, ये हमारा विद्यालय के सामने अतिक्रमण कर लिया है और पक्का अतिक्रमण है।
1: मौसम विभाग ने राजधानी रांची, रामगढ़, धनबाद समेत 20 जिलों में आज से 4 जुलाई तक बारिश और वज्रपात की आशंका जताई है। अधिकतर क्षेत्रों में तेज बारिश, वज्रपात और 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। स्कूली खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI ने वर्ष 2025-26 के लिए 2 राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया है। परिषद को राष्ट्रीय चयन ट्रायल एवं कोचिंग कैंप के सफल आयोजन के लिए सराहना पुरस्कार तथा 69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के उत्कृष्ट आयोजन के लिए सर्वश्रेष्ठ आयोजक श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। भारतीय जूनियर हॉकी टीम में झारखंड की 4 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इनमें से 3 रांची के बरियातु स्थित CM स्कूल ऑफ एक्सलेंस की छात्राएं हैं और चौथी खिलाड़ी सिमडेगा की है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले अधिकतर प्रमुख अखबारों ने पूर्व वित्त मंत्री सह कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव और उनके बेटे को ईडी से मिले समन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, शराब घोटाले में पूछताछ के लिए रोहित को आज, रामेश्वर को कल बुलाया। प्रभात खबर की हेडलाइन है, खुद कार चलाकर जोन्हा पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पत्नी संग उठाया प्रकृति के मनोरम दृश्य का आनंद। दैनिक जागरण लिखता है, SIR कल से गणना प्रपत्र लेकर घर घर पहुंचेंगे BLO। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, झारखंड में 17 जिलों में कुपोषण की स्थिति गंभीर, 13 लाख महिलाओं बच्चों को 3 माह से पोषाहार बंद। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के खेल गांव में 1042 नव चयनित इंटर और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को प्रदान करेंगे नियुक्ति पत्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा आज करेंगे समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ। 3 साल तक के बच्चों को घर के पास मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शराब घोटाला मामले में राज्य के पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और उनके पुत्र को पूछताछ के लिए जारी किया समन। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के 20 जिलों में आज से 4 जुलाई तक बारिश, आंधी और वज्रपात की जताई संभावना। और भारतीय जूनियर हॉकी टीम में झारखंड से 4 खिलाड़ियों का चयन, 5 से 14 जुलाई तक इंग्लैंड में टीम खेलेगी 7 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: मीडियम वे 546.45 मीटर यानी
1: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:43 और 27 सेकेंड हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी।

कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए सुनते कार्यक्रम का पहला गाना, जिसे हमने लिया है फिल्म आकाश से। आवाजें बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की हैं।

0: कार्यक्रम का अगला गाना फिल्म आक्रोश से आवाजें अनुपम आमोद और साथियों की हैं, लेकिन इस गीत से पहले सुनते कुछ जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
3: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
2: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
3: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
2: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
4: ये कहानी है एक नर्स और उसकी अंतर्मन की।
5: आगे सैलरी? नहीं झुमके
6: ना, पहले बचत,
5: पहले झुमके।
6: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
5: लेकिन झुमकों का क्या,
6: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
7: आरबीआई कहता है
8: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

अभी आप सुन रहे थे अनुपम आमोदा और साथियों को फिल्म आक्रोश में, और दोस्तों इसी के साथ कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी यही समाप्त होता है। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को, जिसे हम रिले करेंगे अपने मुंबई केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए अब सुनते हैं अनुपम रॉय और श्रेया घोषाल का गाया हुआ पीकू फिल्म का ये गाना।

0: की बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं केदारनाथ फिल्म का गाना देव नेगी की आवाज में। गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन बनाई है अमित त्रिवेदी ने।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए सुनते हैं ये गाना।

सनम पुरी और शिप्रा गोयल की आवाजों में हंसी तो फंसी फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। कुमार के बोल थे और विशाल शेखर का संगीत था। चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए इस कार्यक्रम में सुनते हैं अजहर फिल्म का गाना अरमान मलिक की आवाज में। रश्मि विराग का लिखा गीत है और अमाल मलिक का संगीत।

डियर जिंदगी फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह का गाया हुआ। कौसर मुनीर के बोल थे और अमित त्रिवेदी का संगीत था। और लीजिए अब सुनिए लैला मजनू फिल्म का गाना। अरिजीत सिंह और जॉनिता गांधी की आवाजें हैं। इरशाद कामिल का लिखा गीत जिसे संगीत से सवारा है नीलाद्री कुमार ने।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती

0: साथियों, आज हम जिस फनकार के फन का जिक्र कर रहे हैं वो वर्सिटाइल आर्टिस्ट हैं, इसलिए हमारे लिए ये मुश्किल है कि हम उनकी किस खूबी का जिक्र करें और किसका ना करें। हम सोचते हैं क्यों ना उनसे आपकी सीधी बात करा दें।
1: नमस्कार जी, मेरी तारीफ मैं अपने मुंह से क्या करूं।
0: सुदेश भोसले आज के हमारे फनकार हैं, और अब आप समझ ही गए होंगे हमारी मुश्किल क्या है। बहरहाल, हम पहले सुनते हैं उनका गाया गाना, फिर सुनेंगे उनके बारे में उन्हीं की जबानी।

कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप बारी बारी मालूम हुआ। जो भी आज मैं दिखता हूँ या जो भी करता हूँ बिल्कुल उसके विरुद्ध था। बिल्कुल बचपन में मैं स्कूल भी जाता तो मालूम भी नहीं पड़ता था मैं स्कूल में क्लास में बैठा हूँ या नहीं। क्वाइट एकदम, किसी से बातचीत नहीं। फिर अब जो मैं आवाज़ें बनाता हूँ, जैसे खासतौर पे अमित जी की आवाज़, मैं बचपन में लता जी के गाने बिना वॉइस चेंज किए गा सकता था। मतलब वॉइस में आवाज़ मेरी लड़की जैसी थी। तो लोग, मेरे फ्रेंड्स वगैरह काफ़ी चिढ़ाते थे कि भाई बिल्कुल वॉइस आवाज़ तुम्हारी एकदम लड़की की तरह है। लेकिन एक बात यह थी कि मम्मी जो थी गायिका थी सुमन भोसले, मेरी नानी क्लासिकल सिंगर थी दुर्गाबाई शिरोडकर, आगरा घराने की क्लास। तो म्यूजिक का माहौल तो बचपन से था, लेकिन कभी माता पिता ने ये नहीं सोचा था कि मैं भी गायक बनूंगा। लेकिन बचपन से बहुत सुना है और अच्छा गाना बहुत सुना है, और घर में ये लगा था कि मैं पेंटर बनूंगा क्योंकि मेरे पिताजी आर्टिस्ट थे और मैं खुद बहुत अच्छा पेंटर हूँ, पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप बनाता हूँ। फैमिली में म्यूजिक एंड पेंटिंग दोनों बचपन से हमने देखा है और उसके साथ हम बड़े हुए हैं। और मेरे पिताजी पेंटर थे और हम लोग फिल्मों की पब्लिसिटी करते थे, जिससे आप होर्डिंग्स और बैनर्स जो देखते हैं एनआर भोसले के नाम से हम लोग करते थे। और एट द एज ऑफ 1974 में मैंने पहले पोस्टर, मतलब पहला पोस्टर पेंट किया, वो था राजेश खन्ना हेमा मालिनी की फिल्म प्रेमनगर का। तो मुंबई में जितने भी बैनर्स लगे थे सारे मेरे हाथों से पेंटिंग हुए थे। उसके बाद मैंने कई साल 74 से 82 तक लगातार पेंटिंग किया पिताजी के साथ।

0: उसके बाद मैंने जैसे प्रेमनगर के बाद जूली, स्वयंवर, स्वर्ग नर्क, श्रीमान श्रीमती, निशाना, काफ़ी फिल्में मराठी हिंदी फिल्मों के बैनर्स पेंट किए। तो मेरा पेंटिंग भी इतना अच्छा था कि मेरे पिताजी को ये लगा कि मैं यही बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा।
1: एक मिनट सुदेश जी, आगे बढ़ने से पहले हम एक गाना सुन लें, फिर बातें भी होंगी।

के गाने का शौक था और एक बचपन से ये मुझे एक ऊपर कुदरती एक देन थी कि आमतौर पे जब आदमी कोई अच्छा गाना सुनता है उसकी इच्छा होती है गाने की तो वो अपनी आवाज़ में गाता है, लेकिन बचपन से मुझे ये था कि अगर मैं हेमंदा का गाना सुनूं तो हेमंत कुमार की जैसे ही गाने की अपने आप कोशिश होती, या सैगल साहब हो या सचिन दा हो या किशोर दा हो, तो ये फ़ायदा मुझे कॉलेज में हुआ। तो हर कॉलेज में जैसे कल्चरल ग्रुप होता है तो वहाँ मैं ज्वाइन हुआ, तो जब जब भी मौका मिले मैं एक एक दो दो लाइनें सब सिंगर्स की गाता था, तो उधर लोगों को अच्छा लगा कि एक आदमी कई आवाज़ों में गाता है। अब ये करते करते हुआ कि मिमिक्री तो मतलब जैसे इमिटेशन तो चल ही रहा था, सब उस वक्त मुझे कॉलेज में पहली बार मतलब लोगों के सामने गाने का या ना पब्लिक परफॉर्मेंस का मतलब कई साल मुझे एक कह सकते एक ट्रेनिंग जैसे मुझे मिल गई। गाना तो बचपन से शौक तो था लेकिन कभी किसी के सामने गाने की हिम्मत हुई नहीं। धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे कॉलेज जाने लगा तो लोगों ने मतलब फ्रेंड्स ने थोड़ा इनक्रेज किया, तो उनके साथ धीरे धीरे हंसी मजाक में पहले जैसे दोस्तों में बैठ के गाना सुनाना शुरू किया तो उन्होंने पसंद किया, फिर जैसे हमारे ग्रुप का जो कॉलेज का जो ग्रुप था ऑर्केस्ट्रा उसमें कभी मौका मिला तो एक हाथ दूसरे गाने गा लेता था मैं। बहुत साल

पहले हमारे जहाँ रहता हूँ मैं, हमारे कॉलोनी में एवरी ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते थे 26 जनवरी। तो वहाँ लोगों को, तो अड़ोस पड़ोस वालों को पता था कि थोड़ा बहुत अच्छा गा लेता हूँ। तो उन्होंने एक दिन अचानक मुझे ऐसे बिना कहे मेरा नाम अनाउंस करके मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया मुझे, और बोले अभी सुदेश भोसले गाएंगे। और मुझे पता भी नहीं था, और जब मैंने देखा कि सामने इतने लोग थे तो मैं तो बिल्कुल घबरा गया था, लेकिन मैंने गाना शुरू कर दिया। वो गाना था दुश्मन का, किशोर दा का, वादा तेरा वादा। अरे सच्चा

0: वेद भारती के हमारे सभी श्रोता सुदेश भोसले जी को बहुत करीब से जानते हैं, है ना? आज ही जानेंगे क्यों नहीं। अक्सर सुदेश जी अपने हिट प्रोग्राम्स के साथ विविध भारती पर मौजूद रहते हैं। उनके ऐसे ही एक आइटम की छोटी सी झलक यहाँ भी।
1: इधर तुम्हारा घर में, तुम्हारा सामने किसी ने फादर को और तुम देखते रह गए। अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो अपन को उठाने का था। अपन का इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसका जरूरत है। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मासूम एंथनी को चर्च के बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। कौन पालता सलावर इस बच्चा लोग को? ये पालता ये। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं।
2: तो ये सीन था और बिल्कुल वो बच्चे एकदम हैरान हो गए। बिल्कुल दोबारा मुझसे वो करवाया, तब मुझे कहते ना कॉन्फिडेंस आ गया कि यस। उसके बाद मैंने उनके जो उस वक्त की सारी फिल्में थी, जैसे लावारिस, दीवार, या उसके बाद अम्मा अकबर एंथनी, अंधा कानून वगैरह, उनको मैंने लाके डायलॉग्स को लिखा, उनको बाय हार्ट किया। फिर एक एक एक एक जैसे मौके मिलते गए, मैं एक एक सीन लोगों के सामने करता गया। और उस वक्त बहुत पसंद किया लोगों ने, क्योंकि अमित जी बिल्कुल एकदम टॉप पर थे, मोस्ट पॉपुलर उस वक्त थे उनके, जब डॉन वगैरह फिल्में आई थी। और कोई मिमिक्री आर्टिस्ट उस वक्त अमित जी की नकल नहीं करता था, तो दैट्स वाई लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मेरी भी मतलब हिम्मत बढ़ गई।

शशि कपूर जी जो प्रोड्यूसर थे फिल्म अजूबा के, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो मुझे ले गए अमित जी से मिलाने कि अमित जी ये सुदेश भोसले, इन्होंने गाया है आपके जो दो गाने इन्होंने गाए हैं। तो अमित जी को मैं देख रहा था जैसे साक्षात, यकीन नहीं हो रहा था कि अमित जी सामने खड़े मेरे, तो मैं हाथ जोड़ के उनको नमस्ते करने लगा, तो सामने से वो हाथ जोड़ के बोले, भले अरे भैया हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती हैं। ये उनका फर्स्ट रिएक्शन था। और जब जुम्मा चुम्मा मैंने गाया उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं नहीं गाऊँगा, मेरे सारे गाने सुदेश गाएगा। तो ये उनकी रिएक्शन थी, बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे और बहुत

0: आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था स्टेज की दुनिया के जाने माने कलाकार और पार्श्व गायक सुदेश भोसले पर।
1: आज के फनकार।

0: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:59 और 59 सेकेंड्स हुए हैं। आइए सुनते हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स

हेलो हजारीबाग प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग। और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों संग हेलो हजारीबाग।

कार्यक्रम हेलो हजारीबाग सुन रहे आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। साथ ही स्वीकार करें प्रेमेंद्र कुमार मिश्रा की ओर से सप्रेम नमस्कार भी। श्रोताओं, एक अच्छे दिन की शुरुआत के लिए सुबह के समय के लिए खुद को थोड़ा शांत रखें, एक सकारात्मक सोच के साथ उठें, जैसे कि आप खुद को एक नई संभावना के लिए तैयार कर रहे हैं। कुछ गहरी सांस लें, एक छोटा सा धन्यवाद या ध्यान करें और एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित करें, जिससे दिन भर आपका ध्यान जिस पर केंद्रित रहे और आप उत्साह से दिन भर भरे रहें। तो दोस्तों, इन्हीं सोच के साथ अगर हम दिन की शुरुआत करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो दिन है वो अच्छा बीतेगा, बेहतर बीतेगा, नई सोच के साथ और

सकारात्मक ऊर्जा के साथ बीतेगा। हम भी आपके साथ इस कार्यक्रम में इसी उद्देश्य के साथ हाजिर हैं दोस्तों, ताकि हम आपका इस कार्यक्रम में भरपूर मनोरंजन करें और साथ ही ज्ञानप्रद बातें आपसे शेयर करें, साझा करें। एक गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, हम सब मिलकर इस गीत का आनंद लेते हैं।

दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम आपको सबसे पहले बता दें आज के मौसम का हाल और तापमान और शहर में हो रहे अनुष्ठान के बारे में, साथ ही सराफा बाजार भी के बारे में भी आप जानेंगे।

तो तापमान के अगर हम बातचीत करें तो आज अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24.5 डिग्री सेल्सियस होगा। आज भी बादल छाए रहेंगे, बारिश की संभावना है, तापमान में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आज शहर में भगवत गीता का पाठ किया जाएगा। आयोजन झील सेंटर में संध्या शाम के 6:30 पर होगा और साथ ही बूढ़ा महादेव मंदिर में पूजा पाठ का आयोजन संध्या 6 बजे होगा। सराफा बाजार की अगर हम बातचीत करें दोस्तों तो सोना 22 कैरेट 1,34,900 रुपये और चांदी प्रति किलो 2,28,000 रुपये होगा। साथियों, असफलता से सीखकर आगे बढ़ें, असफल में सफलता के बीज अंकुरित होते हैं। श्रोताओं, हर वह ठेस हमें सिखाती है और वह ठेस भी गुरु है जो हमें चलना सिखाती है। नदी का जल जिस तरह था पेड़ों को सहकर आगे बढ़ता जाता है, उसी तरह हमें जीवन में गिरकर भी उठना और संभलना चाहिए और फिर चलना चाहिए। जब हम अपने गलतियों से सीखते हैं तो हम और भी मजबूत होते हैं और हर गलती और हर अगली बार एक बेहतर तरीके से कोशिश कर पाते हैं। यही हमें धीरे धीरे सफलता की ओर ले जाती है। संस्कृत का एक प्रसिद्ध वाक्य भी है, चरेवेति चरेवेति, यानी हार मत मानो, निरंतर प्रयास करते रहो और रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो चलते रहो। आइए दोस्तों, हम सभी मिलकर एक गीत का आनंद लेते हैं।

इस खूबसूरत से गीत के बाद अब हम जानकारी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं देश दुनिया का हाल अखबार में छपी खबरों के अनुसार। हमारे प्रदेश में भी जानते हैं क्या कुछ घटना घटी और किन खबरों को अखबारों ने प्रमुखता से अपने स्थान दिया है। हजारीबाग भास्कर क्या कुछ कहता है ये जानते हैं। रिटायर्ड कर्मी ने छत पर उगाई मियाजा की आम, कीमत है 3 लाख रुपए प्रति किलो। शहर में जगह की कमी के बीच अब लोग अपनी छतों को ही हरियाली का ठिकाना बना रहे हैं। हजारीबाग के यशवंत नगर निवासी रिटायर्ड कर्मी सुरेश कुमार इसकी एक प्रेरणादायक मिसाल बनकर सामने आए हैं। उन्होंने अपनी छत को मिनी गार्डन में बदल दिया है, जहां सोने जैसा मशहूर जापानी मियाजा की आम भी लहलहा रहा है। हजारीबाग में बिना फायर एनओसी के चल रहे सभी होटल व रिसोर्ट। शहर में एक भी होटल और आग अग्निशमन विभाग के अनुसार सुरक्षित नहीं है। आग लगी तो लोगों की जान बचाना भारी पड़ जाएगा। कहीं एक ही सीढ़ी है, आग बुझाने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं। शहर के 4 बड़े होटलों में भी आग की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया है। यही वजह है कि अग्निशमन विभाग ने 4ों को भी एनओसी नहीं दी है। सदर के अग्निशमन पदाधिकारी ने सभी होटलों संचालकों को पत्र लिखकर अग्निशमन नियमों का पालन करने के लिए कहा है। लखनऊ की घटना के बाद हजारीबाग में भी अग्निशमन विभाग ने जांच की। सदर अग्निशमन विभाग के पदाधिकारी शैलेन्द्र किशोर ने होटलों की जांच की, एक भी होटल नियमों का पालन नहीं कर रहा था। इन दिनों नासा के सौतारकरों का भी खैर नहीं और हजारीबाग पुलिस भी सख्ती से इन पर नजर रखी हुई है, निगरानी कर रही है। कुछ खबरें इस ओर से भी है। कफ सिरप और टैबलेट के साथ एक गिरफ्तारी, स्कूटी और मोबाइल जब्त। फिलहाल ओपी पुलिस ने अवैध कफ सिरप व नशीली दवाओं की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से बड़ी मात्रा में कफ सिरप, टैबलेट, एक 4 पहिया जुपिटर क्लासिक वाहन तथा एक मोबाइल फोन बरामद किया। थाना प्रभारी बिट्टू रजक ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध कफ सिरप और टैबलेट की खरीद बिक्री कर रहे हैं। 500 एकड़ का छड़वा डैम अतिक्रमण से सिमटकर 300 एकड़ हुआ, ये कहना हजारीबाग भास्कर का। हजारीबाग शहर की लाखों आबादी की प्यास बुझाने वाला छड़वा डैम धीरे धीरे अतिक्रमण की भेंट चढ़ता जा रहा है। डैम का जल क्षेत्र लगातार सिकुड़ रहा है, लेकिन अब तक स्थायी और व्यापक कार्रवाई नहीं होने से भविष्य की जल सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यदि समय रहते प्रशासन ने अतिक्रमण हटाकर डैम की सीमा को सुरक्षित नहीं किया तो आने वाले वर्षों में शहर को भीषण जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। शराब पीकर वहीं फोड़ते रहे बोतल, मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों को परेशानी, ये कहना हजारीबाग भास्कर का। प्रखंड के कटकमदाग प्रखंड की ग्राम पंचायत सुल्ताना में कब्रिस्तान के समीप स्थित मैदान इन दिनों असामाजिक तत्वों और नशेड़ियों का सुरक्षित अड्डा बनता जा रहा है। इसके कारण सुबह शाम टहलने वाले लोगों और स्थानीय ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मैदान में प्रतिदिन सुबह बड़ी संख्या में लोग मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचते हैं। इनमें विभिन्न बीमारियों से पीड़ित मरीज, पुलिस व सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवा, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं। युवा यहां दौड़ने का अभ्यास करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से असामाजिक तत्व रात में यहां बैठकर नशा करते हैं और शराब की खाली बोतलें मैदान में ही तोड़कर छोड़ देते हैं। दोस्तों, खबरों में आगे आपसे और भी बातें करेंगे साझा, लेकिन फिलहाल एक गीत का आनंद हम सभी मिलकर लेते हैं।

दोस्तों खबरों में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि दैनिक जागरण किन खबरों को प्रमुखता से अपने अखबार में स्थान दिया है। एसआईआर कल से गणना प्रपत्र लेकर घर घर पहुंचे पीएलओ। राज्य में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण मंगलवार से शुरू होगा। अभी तक इसकी तैयारियां तथा पोर्टल मैपिंग की प्रक्रिया चल रही। सोमवार को सभी स्तरों का प्रशिक्षण का कार्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद मंगलवार से बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र सौंपेंगे तथा मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। एसआईआर के तहत गणना का यह चरण 29 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान आपको सिर्फ बीएलओ द्वारा दिए गए गणना प्रपत्र को सही ढंग से भरकर तथा उस पर हस्ताक्षर कर उन्हें लौटाना है। इसके साथ साथ कोई दस्तावेज देना है। हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र भरकर ही देने से आपका नाम प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित हो जाएगा। गणना प्रपत्र में आधी जानकारियां पहले से ही भरी होंगी। हस्ताक्षर के बिना गणना प्रपत्र नहीं लौटाने से प्रारूप मतदाता सूची में नाम नहीं होगा। बीएलओ कम से कम 3 बार गणना प्रपत्र लेने पहुंचेंगे। 1 अक्टूबर 2026 है अहर्ता तिथि। झारखंड के अक्टूबर 2026 को अहर्ता तिथि मानते हुए मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अवधि तक जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है वे अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करा सकेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बच्चा चोर के शक में आदिम जनजाति की 2 महिलाओं समेत 4 को पीटा। दुमका जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के नौखेता पंचायत के बिघासारे गांव में शनिवार की देर शाम बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने आदिम जनजाति समुदाय के 2 पुरुष और 2 महिलाओं को बेरहमी से पिटाई कर दी। ग्रामीणों की पिटाई से सभी बुरी तरह घायल हो गए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि काठीकुंड थाना क्षेत्र की झंगाराई गांव की राजू देहरी और प्रदीप देहरी अपने परिवार के साथ बरमसिया पंचायत के लेटो गांव में अपने साढ़ोत्तम सिंह की बेटी की शादी समारोह में शामिल होने आए थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। घुसपैठियों को बाहर निकालने का देश भर में चलेगा अभियान। देश को माओवादियों से मुक्त कराने के बाद केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों से मुक्त बनाने के मिशन में जुट गए हैं। बिहार, राजस्थान, गुजरात और त्रिपुरा के सीमावर्ती जिलों का दौरा करने के बाद शाह ने अब सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों की बैठक बुलाई है। 9 जुलाई को दिल्ली में होने वाली सभी बैठक में खुफिया ब्यूरो, रॉ, ईडी, एनआईए समेत सभी केंद्र एजेंसियों के प्रमुख उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री आज 1042 सहायक आचार्यों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। यह कहना है दैनिक जागरण का। रांची से खबर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को 1042 सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। होटवार के खेलगांव में बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा उनमें 274 पहली से पांचवी कक्षा के लिए इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद के लिए नियुक्ति किए गए हैं। वहीं 768 अभ्यर्थियों की नियुक्ति छठी से आठवीं कक्षा के लिए स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों के पद पर हुई। स्नातक प्रशिक्षण का सहायक आचार्यों में सामाजिक विज्ञान विषय के 387, गणित एवं विज्ञान के 231 तथा भाषा विषय के 150 सहायक आचार्य सम्मिलित हैं। रिम्स की जमीन की अवैध खरीद बिक्री के मामले में बिल्डर शुभम गिरफ्तार। फर्जी वंशावली और जाली दस्तावेज के आधार पर राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स की जमीन का अतिक्रमण

मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के साथ मिलकर पलामू और बक्सा अभयारण्य सहित ऐसे 22 अभयारण्यों में बाघों की मौजूदगी बढ़ाने की नई योजना का काम शुरू किया है। इनमें 5 से 6 अभयारण्यों को जल्द दूसरे राज्यों से बाघ मुहैया कराने पर सहमति भी दे दी गई है। वज्रपात से अलग अलग घटनाओं में 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत, लोहरदगा व गुमला में 1, गढ़वा में 2 मरे। राज्य के विभिन्न जिलों में हुई वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौतें हो गई हैं, जबकि 3 झुलस गए। वहीं 11 मवेशियों की भी जान चली गई है। लोहरदगा के कैरो थाना क्षेत्र के अंतर्गत डुमरटोली गांव निवासी विजय उराव की 3 वर्षीय पुत्री अंकिता उराव की मौत रविवार को आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हो गई। खबरों में आप हमारे साथ बने रहेंगे और भी खबरें आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक गीत का आनंद हम सभी मिलकर लेते हैं।

इस गीत के बाद अब हम दोस्तों जानते हैं हिंदुस्तान अखबार क्या कुछ कहता है और किन खबरों को इन्होंने प्रमुखता से अपने अखबार में स्थान दिया है। अपील 20 तक हज आवेदन करें जमा, ये कहना है हिंदुस्तान अखबार का। झारखंड से हज की यात्रा जाने वाले लोग 20 जुलाई तक ऑनलाइन हज आवेदन जमा करें, निर्धारित तिथि बीतने के बाद हज आवेदन जमा नहीं लिया जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने झारखंड के सभी मस्जिदों के इमाम, खतीब और उलेमाओं से अपील की है कि वे जुमे के खुतबे और धार्मिक सभाओं में जनसंपर्क के माध्यम से हज आवेदन जमा करने की जानकारी दें। ज्ञान नवाचार की संस्कृति आगे बढ़ती रहे, आदित्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 135वें संस्करण को रविवार को

राज्य भर में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विभिन्न स्थानों पर सामूहिक रूप से सुना। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने पलामू जिले के पोलपुल मंडल की बूथ संख्या 314 पर कार्यकर्ताओं के साथ यह कार्यक्रम सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में नालंदा की गौरवशाली ज्ञान परंपरा का उल्लेख किया और बताया कि नालंदा केवल एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि भारत की ज्ञान शोध और वैश्विक बौद्धिक नेतृत्व की पहचान है। यह विरासत हमें ज्ञान और नवाचार की संस्कृति को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। भारत को फिर से विश्व का ज्ञान केंद्र बनाने के संकल्प को मजबूत करती है। मैसी ने विश्व कप मैच में रचा इतिहास, ये कहना हिंदुस्तान अखबार का। अर्जेंटीना के खिलाफ लियोनेल मेसी के नाम एक और कीर्तिमान दर्ज हुआ। वह लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। जॉर्डन के खिलाफ रविवार को अंतिम ग्रुप मैच में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। अर्जेंटीना ने यह मैच 3-1 से जीता और ग्रुप दौर में अजय रहकर नॉकआउट में प्रवेश किया। हंटरगंज में युवक की हत्या, भाई भाभी समेत 4 गिरफ्तार। चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र के सेलवार गांव में रविवार की सुबह 35 वर्षीय देवचरण यादव की हत्या कर दी गई। मृतक की पत्नी रंजू देवी ने हंटरगंज थाने में आवेदन देकर मृतक के मझले भाई कामदेव यादव, भाभी बिंदु देवी और भतीजा भतीजी पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोपियों की यहां संपत्ति के दस्तावेज और सिक्के जब्त। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में जांच में जुटी पुलिस ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 में से 7 अभियुक्तों के ठिकानों पर सुबह से देर शाम तक ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान आरोपियों की संपत्ति से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद कर उन्हें जब्त कर लिया। पुलिस इन दस्तावेजों की जांच कर संपत्तियों और वित्तीय लेनदेन की पड़ताल भी करेगी। जू में जानवरों के भोजन को हाईकोर्ट पहुंचकर सरकार। रांची के और मांझी स्थित भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान के शेरों सहित अन्य वन्य जीवों के भोजन, इलाज और रखरखाव पर संकट उत्पन्न होने के हवाला देते हुए राज्य सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है। वन विभाग ने अदालत में 10 जून 2026 को पारित उस आदेश को वापस लेने का अनुबंध किया है, जिसके तहत रेंजर आनंद कुमार बनाम राज्य सरकार मामले में वन विभाग और उससे संबंधित प्राधिकारों की योजना एवं गैर योजना मद से पैसे की निकासी पर रोक लगा दी गई है। इस खबरों से आगे बढ़ते दोस्तों, और हम सभी मिलकर एक और गीत का आनंद लेते हैं।

खबरों में दोस्तों आगे बढ़ते और जानते हैं कि हजारीबाग प्रभात क्या कुछ कहता है, किन खबरों को इन्होंने प्रमुखता से अपने अखबार में स्थान दिया है। एक माह से बंद है पर्यटन विभाग का टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, ये खबर इटखोरी से है। पर्यटन विभाग का टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स पिछले एक माह से बंद पड़ा है। इसमें मां भद्रकाली मंदिर व तमाशी नहाने वाले पर्यटकों को ठहरने के लिए अधिक राशि खर्च कर गैर सरकारी होटलों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं शादी विवाह जैसे सामाजिक आयोजन के लिए भी लोगों के महंगे मैरिज हाउस और होटलों की बुकिंग करनी पड़ रही है। कृषि अनुसंधान में ICAR गौरियाकर्मा का बड़ा योगदान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान गौरियाकर्मा का रविवार को 12वां स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव सह महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद डॉ ML जाट ने वर्चुअल माध्यम से समारोह को संबोधित किया। वहीं पूर्वी भारत में कृषि अनुसंधान शिक्षा व किसानोन्मुखी प्रौद्योगिकी विकास में संस्थान के योगदान की सराहना की। भविष्य को ध्यान में रखते हुए जलवायु स्मार्ट कृषि प्राकृतिक संसाधन संरक्षण तथा नवाचार आधारित अनुसंधान पर बल दिया। पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प। बड़ा बाजार स्थित जैन भवन में नगर पश्चिमी की बूथ संख्या 247, 248 और 249 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 135वां एपिसोड सामूहिक रूप से सुना। सड़क दुर्घटना में राजद नेत्री की पत्नी हुई चोटिल। उरीमारी बड़का गांव मार्ग में बघलतवा जंगल के पास रविवार को एक बड़ा हादसा टल गया, जब हजारीबाग लोस के पूर्व प्रत्याशी सह राजद पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कुछ बिहारी साव उनकी पत्नी बिहारी साव अपनी पत्नी के साथ रांची से लौट रही थी। इसी दौरान सड़क में क्षतिग्रस्त हिस्से पर दो वाहन आमने सामने आ जाने से दुर्घटना की स्थिति बन गई थी। 40,000 नगद व 1.5 लाख के जेवर की चोरी। न्यू कॉलोनी कोडरमा बाजार न्यू कॉलोनी के एक घर में चोरी हुई। चोरों ने वहां 40,000 रुपये नकद और करीब 1.5 लाख रुपये

मल्लिक के सोने के गहने की चोरी कर ली। मामले को लेकर पीड़िता माला देवी पति राजकुमार लाल ने कोडरमा थाना में आवेदन दिया। आवेदन में माला देवी ने बताया कि जून की रात परिवार के सभी सदस्य खाना खाकर सोने चले गए थे। चोर देर रात खिड़की का ग्रिल तोड़कर घर के अंदर घुसे। ब्राउन शुगर के साथ दो तस्कर गिरफ्तार। सदर पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर भेड़ी फार्म स्थित लक्ष्मणपुर डैम जाने वाली सड़क से 21.10 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इटखोरी थाना क्षेत्र के पीतीज गांव निवासी विकास कुमार पिता वेचन दागी और रवि कुमार पिता इंद्रदेव सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपियों के पास से 21.10 ग्राम ब्राउन शुगर और एक ब्रेजा कार तथा दो मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इस खबर के बाद दोस्तों एक बार हम सभी गीत संगीत की दुनिया में आइए लौटते हैं।

और दोस्तों आज है 29 जून और आज जानते हैं कि भारत और विश्व में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी और आज कौन से ऐसे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका आज जन्म हुआ और किनका आज निधन हुआ और आज कौन सा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आज के दिन 2002 में चीन में एक जबरदस्त भूकंप आया था और आज के दिन 2004 में पूर्व एशिया सम्मेलन जकार्ता में आसियान को प्रमुख ताकत बनाने पर सहमति मिली। 2005 में आज के दिन भारत और अमेरिका ने समग्र 10 वर्षीय समझौता किया। आज के दिन 2014 में साइना नेहवाल ने ऑस्ट्रेलियन सुपर सीरीज जीती और आज के दिन दोस्तों 2011 में दुनिया के प्रमुख विकसित एवं विकासशील देशों में आज की भागदौड़ और अपराधी आपदाओं में होने वाले तनाव के बारे में किए गए भारतीय महिलाओं के सर्वेक्षण के अनुसार भारत की सर्वाधिक महिलाएं तनाव में रहती हैं। दुनिया भर में महिलाओं को खुद को बेहद तनाव और दबाव को महसूस करती है या समस्या आर्थिक तौर पर उभरते हुए देशों में ज्यादा दिख रही है। आज के दिन 2011 में मानव तस्करी की निगरानी सूची से भारत को बाहर कर दिया गया। 6 साल के अंतराल के बाद अमेरिका ने भारत को मानव तस्करी की निगरानी सूची से बाहर किया। 29 तारीख को आज के दिन कौन से ऐसे प्रमुख व्यक्ति थे जिनका जन्म हुआ? तो दोस्तों आज के दिन 1861 में देवकी नंदन खत्री जी का जन्म हुआ जो हिंदी के प्रथम तिलस्मी लेखक के रूप में जाने जाते हैं और आज ही के दिन जन्मे 1893 ईस्वी में पीसी महालनोबिस जो भारतीय प्रसिद्ध वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे। और अब हम आपको बता दें कि आज के दिन यानी 29 जून को ऐसे कौन से प्रमुख व्यक्ति थे जिनका निधन हुआ। आज के दिन 2016 में निधन हुआ के जी सुब्रमण्यम जी का जो भारतीय मूर्तिकार और भित्ति चित्रकार थे। आज के दिन निधन हुआ 1988 में गौरी देवी का जो राजस्थान के प्रसिद्ध मांड गायिका रही और 1873 में आज के दिन निधन हुआ माइकल मधुसूदन दत्त का जो बंगला भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। आज के दिन 1966 में निधन हुआ दामोदर धर्मानंद गोस्वामी जो भारत के प्रसिद्ध विद्वान और भाषा वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे और आज के दिन निधन हुआ मेहता लजाराम का जो भारतीय साहित्यकार और पत्रकार थे। साथ ही आज के दिन निधन हुआ सरदार बलदेव सिंह का जो भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी राजनीतिक और प्रथम रक्षा मंत्री थे। और दोस्तों हम आपको बता दें कि आज 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में हम सभी मनाते हैं। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद एक बार फिर से हम गीत संगीत की तरफ बढ़ते हैं और कार्यक्रम के आखिर में आज का मोटिवेशनल थॉट भी हम सुनेंगे।

दोस्तों, अब कार्यक्रम से विदा लेने का समय भी हो चला है, तो जाते जाते आज के विचार पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, आज के मोटिवेशनल थॉट पर ध्यान देते हैं। हर रोज एक नई शुरुआत है, छोटा कदम भी मायने रखता है। असफल हमें सीख देती है, इसे अपनाएं और आगे बढ़ें। खुद पर विचार रखें, मेहनत से दम से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। हर बाधा के पीछे एक अवसर छिपा होता है, इसे पहचानें, लगातार प्रयास करें और इसी से आपको सफलता मिलेगी। और दोस्तों, इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ कार्यक्रम हेलो हजारीबाग से अपने दोस्त परमिंद्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

हेलो हजारीबाग प्रत्येक दिन के इतिहास महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे हेलो हजारीबाग मिलेगी मौसम की जानकारी साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स लोकल नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों संग हेलो हजारीबाग।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 10:58 और 58 सेकेंड्स में हैं। अभी से लेकर दोपहर के 1:10 तक आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को, जिसे हम रिले करेंगे अपने मुंबई केंद्र से। कृपया इसके लिए करें बस थोड़ा सा इंतजार, और फिलहाल हमें दे इजाजत। नमस्कार।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर कार्यक्रम रंग तरंग के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

शंकर महादेवन की आवाज में ये पारंपरिक रचना आप सुन रहे थे। विरुद्ध फिल्म के इस रचना को अजय अतुल ने संगीत से सजाया। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: इस पारंपरिक गीत को आप सुन रहे थे अदिति सिंह शर्मा और दिव्य कुमार की आवाजों में। सूफी जॉय एल्बम से ये गीत हमने आपको सुनवाया।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप

0: पद्मश्री पद्मजा पिहानी जोगलेकर की आवाज में जिंदगी की जुबान इस एल्बम से गजल आपने सुनी, जिसे लिखा संदीप गुप्ता ने और महेश खानोलकर का संगीत था।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे,
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: शकील आजमी की लिखी ये गजल आप सुन रहे थे। जगजीत सिंह और रेखा भारद्वाज की आवाजों में तुम बिन टू फिल्म से इसे हमने लिया, अंकित तिवारी का संगीत।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आपको याद दिला दें, शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी कड़ी। और अगर छाया गीत कल रात आप सुन नहीं पाए हैं तो आज शाम 5 बजे पुनः प्रसारण सुन सकते हैं। फिलहाल रंग तरंग कार्यक्रम में अगला गीत।

हम साथ साथ हैं फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। हरिहरन, उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजें, आर किरण के बोल, संगीत राम लक्ष्मण का। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

नीदा फाजली के बोल आप सुन रहे थे। सुर फिल्म के इस गीत में महालक्ष्मी अय्यर और साथियों की आवाजें, एमएम क्रीम का संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं रंग तरंग। तो रंग तरंग में ये अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, नुसरत फतेह अली खां का संगीत, फिल्म कच्चे धागे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। समारोह में आयोजित परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS रीक्षक विक्टोरिया में तैनात थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शिलू नागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीर्थ यात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों की समीक्षा की गई। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाय नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब

0: में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 152 अंक गिरकर 76,948 पर और निफ्टी 26 अंक कम होकर 24,030 पर आ गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमरीका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन स्टाक्यो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

आरोप फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, माया गोविंद के बोल, भूपेन हजारिका का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं इंदिवर के बोल सपन जगमोहन के संगीत के साथ अभी तो जी ले। इस फिल्म से गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें।

0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में अभी तो जीले फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इंदिवर के बोल, सपन जगमोहन का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर।

0: डॉक्टर, ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
0: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आपको याद दिला दें कि शाम 7:45 पर रोजाना होते हैं नए नए कार्यक्रम। इंद्रधनुष के अंतर्गत आज आप सुन सकते हैं एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज की फिल्म है उलझन। और कार्यक्रम यादों की महफिल में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आनंद फिल्म का गीत आपने सुना, गुलजार के बोल सलील चौधरी का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों की महफिल विविध भारती पर।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

लता मंगेशकर की आवाज में अभिमान फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: आंखियों के झरोखे से, इस फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे। आंखियों के झरोखों से, इस फिल्म से गीत आपने सुना। हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल और उन्हीं का संगीत।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे अब्दुल्ला फिल्म से ये गीत। आनंद बख्शी की शब्द रचना, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गीत, एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म से, और इसे संगीत से सजाया शंकर जयकिशन ने। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने।

कोई अफसाना बन के रहेगा, कोई अफसाना छिड़ के रहेगी कोई कहानी।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने करते
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

0: जिस मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: रियली?
0: राइट राइट।

0: Honestly, such extenuating circumstances coerce me to preclude you from such extravagance.
1: What?
2: अभी अभी इसी जगह पे एक लड़की देखी है, अरे देखी है, आज देखी है। अभी अभी इसी जगह पे एक लड़की देखी है जो मुझे इशारे करती है, पर किसी से शायद डरती है, और डरती है,

0: जिस मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिस मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: ओह माय,
0: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country.

0: कोई दौलत वाली तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए। रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्वेस।
2: ओह शूट,
0: राइट।

0: अरे जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज फ्रैंकी।
2: नो
1: नो, सेबेस्टियन।
2: नो,
1: गोल्डी, सोल्डी।
2: नो, एंथनी गोंसाल्विस।
3: ओह यस, एंथनी गोंसाल्विस।
4: अमर अकबर एंथनी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आवाजें किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन की। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अगला गीत आपकी कसम फिल्म से।

आपकी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संकेत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। फिल्म आन मिलो सजना, सुनिए ये गीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इस कार्यक्रम में हम करते हैं, इस कार्यक्रम में रोजाना एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट की जाती है जिसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे संबंधित गीत इस कार्यक्रम में सुनाए जाते हैं और आपको इस टेक्स्ट को पढ़कर अंदाजा लगाना होता है कि कौन से ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनसे गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वो टेक्स्ट तो आपने हमारे फेसबुक पेज पर पढ़ ही लिया है, लेकिन जो इससे नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए हम एक बार कार्यक्रम की शुरुआत में टेक्स्ट और या कहें इस इबारत को बता देते हैं। तो आज की इबारत है, ए दिल सुनो मेरी एक बात मानो तुम, तय जो किया तुमने वो सच करने की ठानो तुम, कभी गर राह हो मुश्किल तो खुद को आजमाना तुम, देखा कि ये दिन रात जो वो सपने सजाना तुम, किसी को देखकर धड़को तो फिर मुस्कुराना तुम, तुम्हारा भी तो दिल होगा उसे अपना बनाना तुम, कभी जो रूठ जाओ तो मुझसे मान जाना तुम। तो ये है आज की इबारत जिस पर संबंधित जो भी गीत हैं इनसे इनके अंदर जो भी शब्द हैं उन शब्दों में से कुछ शब्द ऐसे होंगे जिन पर आज गीत सुनवाए जाएंगे। हमारे साथियों ने तो बहुत सी बातें लिखकर भेजनी शुरू कर दी हैं और हमारे जो भी साथी जो अब तक हमारे फेसबुक पेज तक नहीं पहुंचे हैं उनके लिए बता दें कि www.facebook.com/vbsmumbai इस पते पर जाकर आप हमारे फेसबुक पेज तक पहुंच सकते हैं, या अगर आपका फेसबुक अकाउंट है तो आप फेसबुक अकाउंट के जरिए वहां अगर आप सर्च करेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा तो देवनागरी यानी हिंदी में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा ये पेज, और इसमें एक ब्लू टिक भी मिलेगा आपको साथ में। यहाँ आपको सुरीला सफर की पोस्ट मिलेगी और भी विविध भारती के जो कार्यक्रम होते हैं उनकी पोस्ट भी आपको यहाँ नजर आएंगी, और इस सुरीला सफर की पोस्ट पर कमेंट के जरिए आप शामिल हो सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में रोजाना। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम में हमारे साथियों ने जो बहुत सी बातें लिख भेजी है वो क्या है वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं आपसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिल कुछ और करना चाहता है, ऐसा लगता है कि हम क्यों ना अपने मन की कुछ काम करें, अपने दिल का कुछ काम करें, कहीं घूमने चले जाएं या बहुत सारी जो मुश्किलें हैं उनसे छुटकारा पा ले किसी तरह से, लेकिन हमारा दिमाग हमें जिम्मेदारियों की याद दिलाता है और बहुत सा ऐसा काम करने के लिए कहता है जिसे करने का हमारा दिल नहीं करता। तो आप अपने दिल की सुनते हैं या दिमाग की, और किस तरह से समझाते हैं अपने दिल को, ये सारी बातें आप हम तक भेज सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि क्या कभी दिल की बात मानकर आपने कोई ऐसा काम किया है जिसे करने के लिए आपके दिमाग ने साफ साफ मना किया हो। तो ये बातें हम तक पहुंचाइए कमेंट के जरिए। तब तक हम कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं। आपको बताना है कि किस फिल्म का ये गीत है और किसने इसे लिखा।

0: दुलारी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत। और हमारे सवाल का जवाब भी हमें मिल गया, फिल्म का नाम और गीतकार का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे एक साथी ने कहा कि मैंने भी एक समय अपने दिल की आवाज को अनसुना कर दिमाग की बात मान ली, उस वक्त लगा कि यही सही है, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो महसूस होता है कि कुछ सपने, कुछ खुशियां, कुछ अधूरी ख्वाहिशें वहीं पीछे छूट गई। दिमाग ने मुझे सुरक्षित रास्ता तो दिखाया, लेकिन दिल जिस राह पर चलना चाहता था उसका अफसोस आज भी कहीं ना कहीं बाकी है। वहीं हमारे साथी ने कहा कि सच्चे दिल की आवाज बिल्कुल सुनाई देती है अच्छी तरह से। इस इबारत की दिल छू लेने वाली लाइन हमारे साथी कह रहे हैं कि कभी जो रूठ जाओ तो मुझसे मान जाना तुम, ये इस पूरी नज्म की सबसे प्यारी लाइन है। जब इंसान खुद से रूठ कर खुद से ही मान जाता है तो उससे बड़ा कोई सुकून नहीं होता। वहीं हमारे साथी ने कहा कि किसी ने मुझको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया, ये गाना उन्होंने बताया। और आगे लिखा कि किसी की जिंदगी में एक शख्स के आने से पूरी दुनिया बदल जाती है, गीत सच्चे प्यार की उस मासूमियत और शक्ति को दर्शाता है। वहीं हमारे साथी ने कहा कि भाई आज गुजरात में वट सावित्री का व्रत मनाया जा रहा है और 15 दिन के बाद ये मनाया जाता है, बाकी राज्यों की अपेक्षा ये कह रहे हैं। और हम बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में भी ये त्योहार आज मनाया जा रहा है, सभी को शुभकामनाएं। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि इबारत की आखिरी लाइनें जैसे कि कभी जो रूठ जाओ तो मुझसे मान जाना तुम ने ये साफ कर दिया कि आज दिल धड़कने के साथ मान मनोवल भी होगा। कभी ये दिन अपनी जिंदगी में आए, बहुत बार रूठ जाने पर मनाना पड़ा, इसका आर्थिक दंड भी भुगतना पड़ा, लेकिन रूठा कोई अपना था, पैसा खर्च करने में कोई संकोच नहीं होता है। तो भाई क्या है ये पूरा किस्सा, हम जरूर जानना चाहेंगे। अगर आप लिखकर भेजना चाहें तो कमेंट में जरूर भेजें। हमारे एक साथी ने एक नज्म ही लिखी, ए दिल सुनो एक वादा कर लो, जो बोया है उसे फूलों सा सच कर लो, राहों में कांटे आए तो संभल कर चलो, हिम्मत से अपनी हर अंधेरी को रोशन कर लो, किसी की आंखों में जब तुम्हारा अक्स दिखे एक मीठी मुस्कान से उसे अपना कर लो, तुम्हारा भी तो है एक छोटा सा दिल, प्यार की खुशबू से उसे एक घर कर लो, झुंझला कर अगर कभी दूर हो जाओ मायूस न करो फिर से मान जाओ। वहीं हमारे एक और साथी ने इबारत के अनुरूप कुछ गाने सुझाए हैं, देखते हैं।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से कुछ देर में 1042 नव चयनित इंटर और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को प्रदान करेंगे नियुक्ति पत्र। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की खामियां दूर करेगी राज्य सरकार। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा ऋण सीमा बढ़ाने पर भी होगा विचार। झारखंड में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू। बीएलओ घर घर जाकर वितरित करेंगे गणना प्रपत्र, 29 जुलाई तक चलेगा अभियान। राज्य में नया बिजली कनेक्शन लेना हुआ महंगा, 1 किलोवाट घरेलू कनेक्शन के लिए अब देने होंगे 4825 रुपए। और मानव हाथी संघर्ष के कारणों का अध्ययन करेगा आईआईएम अहमदाबाद, पायलट स्टडी के बाद राज्य भर के लिए तैयार होगी रणनीति। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से कुछ देर में रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 1042 नव चयनित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इनमें पहली से पांचवी कक्षा के लिए 274 तथा छठी से आठवीं कक्षा के लिए 768 सहायक आचार्य शामिल हैं। राज्य सरकार प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 26,000 सहायक आचार्यों की चरणबद्ध नियुक्ति कर रही है, जिसके तहत अब तक 12,500 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। राज्य सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़ी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। राजधानी रांची में आयोजित समारोह में एक छात्रा द्वारा रीइंबर्समेंट और 15 लाख रुपए की ऋण सीमा का मुद्दा उठाए जाने पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि योजना की कमियों को दूर किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर ऋण सीमा बढ़ाने पर भी विचार होगा। इधर कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि आज के दौर में प्रतिस्पर्धा अधिक बढ़ गई है, इसलिए सफलता के लिए खुद को आगे रखने की जरूरत है।
2: यही जनरेशन जो है वो आने वाले समय में हमारे समाज को, हमारे देश को आगे लेके जाने वाली है। इनको उस लायक भी बनना होगा, उस लायक बन सकते हैं ये लोग, जहाँ ये लोग देश का नेतृत्व कर पाए सभी सेक्टर में। मुझे विश्वास है और भरोसा भी है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा करेंगे ये।
1: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत कल से होगी। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र देंगे और उनका सत्यापन करेंगे। यह अभियान 29 जुलाई तक चलेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि मतदाताओं को केवल गणना प्रपत्र सही ढंग से भरकर हस्ताक्षर सहित बीएलओ को लौटाना होगा।
3: आने वाला इनमेशन फेस 30 जून से 29 जुलाई तक
4: होंगे। कमीशन का इंस्ट्रक्शन पूरा स्टेट में पूरा कंट्री में एक ही है, इसलिए अलग अलग स्टेट का अलग अलग प्रोसेस नहीं। आपका कहां तक डॉक्यूमेंटेशन का संबंध है, कमीशन का बहुत ही इंस्ट्रक्शन क्लियर है, इनमेशन फेस में भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना है।
1: शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी से समन मिलने के बाद राज्य के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव ने पूछताछ के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है। समन के अनुसार पूर्व मंत्री को आज अपने पुत्र रोहित उरांव के साथ एजेंसी के कार्यालय में पेश होना था। ईडी ने संबंधित दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण कागजात के साथ दोनों को हाजिर होने के निर्देश दिए थे। राज्य में नया बिजली कनेक्शन लेना अब महंगा हो गया है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी JBVNL ने नए बिजली कनेक्शन के लिए संशोधित शुल्क सूची जारी कर दी है, जो 1 मई से लागू है। नई दरों के अनुसार शहरी क्षेत्र में 1 किलोवाट के घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को 4,825 रूपये का भुगतान करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के कारणों का अध्ययन अब भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद करेगा। देश में पहली बार किसी प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान ने इस विषय पर अध्ययन का प्रस्ताव दिया है। पहले चरण में गोला और गोमिया को पायलट अध्ययन के लिए चुना गया है और वन विभाग और IIM की टीम क्षेत्र का दौरा भी कर चुकी है। दोनों संस्थानों के बीच जल्द MOU होने और अध्ययन शुरू किए जाने की उम्मीद है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक PCCF वन्य प्राणी रवि रंजन ने बताया कि इस अध्ययन से मानव हाथी संघर्ष को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकेगा। धनबाद में जल्द ही 4 नए टाउन हॉल का निर्माण किया जाएगा। जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि जिले की आबादी को ध्यान में रखते हुए नए टाउन हॉल की जरूरत महसूस की जा रही थी।
5: धनबाद में जो टाउन हॉल की कमी है, जिसमें 200 से ज्यादा जैसी संख्या हुई तो कोई भी अच्छा हॉल, जिला परिषद का एक टाउन हॉल है, सर्किट हाउस का भी अपग्रेडेशन चालू कर दिया है। उसके सामने जो IB बंगलो है उसके लिए भी राज्य सरकार ने 80 लाख रूपए आवंटित किए हैं, उसका भी रेनोवेशन चालू है, वो भी अपग्रेड हो जाएगा तो वो भी हम लोग यूज करेंगे।
1: श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। श्री अमरनाथ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार तीर्थ यात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों के आकलन का जायजा लिया गया। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर देवघर जिला प्रशासन की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस बार एक नई पहल की गई है। देवघर के सिविल सर्जन डॉ. रमेश कुमार ने बताया कि पहली बार श्रावणी मेले के दौरान टोटो एम्बुलेंस सेवा शुरू की जा रही है।
6: सावन में भीड़ को देखते हुए हमने टोटो एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई है, ताकि भीड़ में ये टोटो एम्बुलेंस आसानी से चला जाए और वहाँ पे जो भी आवश्यकता होगी उनको वहाँ से लेके हम टेंडर निकाले हैं। कुछ दवाइयाँ भी रहेगी, अगर हल्का फुल्का होगा तो निकटवर्ती सेंटर रूम को ले जाएंगे, अगर विशेष दिक्कत होगी जिसमें हम लोग सदस्यता छूटेगा।
1: रांची के धुरवा स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा महापर्व की तैयारियां तेज हो गई हैं, जहां आज देव स्नान यात्रा के साथ धार्मिक अनुष्ठान शुरू होंगे और इसके बाद भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा 15 दिन के अनासर यानी एकांतवास में चले जाएंगे। 16 जुलाई को भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सुबह 4 बजे पूजा आरती के बाद दोपहर 2:30 बजे विग्रहों को रथारूढ़ कर शाम 5 बजे रथ संचालन शुरू किया जाएगा। रथ शाम 6 बजे मौसीबाड़ी पहुंचेगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 152 अंक गिरकर 76,948 पर और निफ्टी 26 अंक कम होकर 24,030 पर आ गया। इधर राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,900 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची, रामगढ़, धनबाद समेत 20 जिलों में आज से 4 जुलाई तक बारिश और वज्रपात की आशंका जताई है। अधिकतर क्षेत्रों में तेज बारिश, वज्रपात और 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से कुछ देर में 1042 नव चयनित इंटर और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को प्रदान करेंगे नियुक्ति पत्र। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की खामियां दूर करेगी राज्य सरकार। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा, ऋण सीमा बढ़ाने पर भी होगा विचार। झारखंड में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू। बीएलओ घर घर जाकर वितरित करेंगे गणना प्रपत्र। 29 जुलाई तक चलेगा अभियान। राज्य में नया बिजली कनेक्शन लेना हुआ महंगा। 1 किलोवाट घरेलू कनेक्शन के लिए अब देने होंगे 4825 रुपए। और मानव हाथी संघर्ष के कारणों का अध्ययन करेगा आईआईएम अहमदाबाद। पायलट स्टडी के बाद राज्यभर के लिए तैयार होगी रणनीति। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: चाचे चिक चिक चिक चा सच हुए सपने
1: काला बाजार फिल्म का ये गीत आपने सुना आशा भोसले की आवाज, सचिन देव बर्मन का संगीत, शैलेंद्र के बोल। संगीतकार का नाम और फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिमाग से दुनिया जीती जाती है, दिल से दुनिया बनाई जाती है। मनुष्य वही बड़ा है भाई जिसका दिल उसकी आंखों में दिखाई दे। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने कहा दिल सुनो मेरी पुकार, मेरे इन सपनों को अब करो तुम साकार। मन में है ठाना जो अपने लिए, आज उस संकल्प को पूरा कर सजाऊं जीवन का साज। दिल तुम सपनों की डगर हो और उम्मीदों का संसार, जहां रोज बनेंगे नए इतिहास। मेरी आंखों में जो पलते हैं कुछ अनकहे अरमान, उन्हीं सपनों को देना है अब मुझे अब एक नया मुकाम। वहीं हमारे और साथी कह रहे हैं कि आज की भारत दिल को मजबूत बनने, सपने पूरे करने, विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत न हारने और जीवन में प्यार और सकारात्मकता बनाए रखने की प्रेरणा देती है। हमारे एक और साथी ने भारत के लिए एक कविता लिख भेजी कि दिल के धड़कनों में सपने बसाए हैं, मानो तुम ही मेरी हर दुआ में समाए हैं। राह चाहे कठिन हो साथ अपना बना रहे, प्यार के सिलसिले यूं ही सदा चलते रहें। किसी बात पर कभी रूठ न जाना, अगर रूठ भी जाओ तो जल्दी मानना। दिन रात तेरी यादों का उजाला रहे, हर पल मुस्कुराना ही हमारा हवाला रहे। सपनों की डोर कभी टूटने ना पाए, दिल से दिल का रिश्ता सदा महकता जाए। ये जीवन तभी सच में सुंदर कहलाए जब हर राह पर अपना साथ मुस्कुराए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप अपनी बातें हम तक भेज रहे हैं, लेकिन कुछ किस्से भी तो भेजिए ताकि कुछ आनंद आए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई वो कह रहे हैं कुछ उलझनों के हल वक्त पे छोड़ देने चाहिए, बेशक जवाब देर से मिलेंगे लेकिन बेहतरीन मिलेंगे। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि आज टीम तो अच्छी है लेकिन हमने कभी दिल की नहीं, अपने आप पर कभी भरोसा नहीं किया, बस भाग्य के भरोसे चल रहे हैं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इस टोली के आदमी हैं हम, तो भाई इस टोली के लोग भी होने ही चाहिए क्योंकि सभी व्यक्ति एक ही तरह के होंगे तो कैसे होगा। हमारे एक और साथी ने लिखा कि दिल की सुनने से खुशी नहीं मिलती, दिमाग नहीं उन्होंने लिखा है कि दिल के सुनने से खुशी मिलती है, दिमाग के सुनने से नहीं मिलती। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि दिल में सजी यादें तो बहुत सारी हैं, हम जिक्र नहीं करते मगर बातें तो बहुत सारी हैं। तो भाई चलिए इन सारी बातों को लेते हुए क्यों ना कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा दें। और ये गीत तो हम अनुपमा फिल्म से सुनवा रहे हैं, बताइए किसने लिखा है।

अनुपमा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज, कैफी आजमी के बोल, हेमंत कुमार का संगीत। तो गीतकार का नाम हमने आपसे पूछा था, सही जवाब हमें आपने दिया। और सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती पर। हमारे साथी लिख रहे हैं कि दिमाग सदैव दिल के ऊपर होता है, दिल तो बहुत कुछ चाहेगा मगर दिमाग इन द्वंद्वों से सही राह दिखाता है, अतः दिमाग की ही मैं सुनता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने ये सोचा। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि रूठना मनाना तो जिंदगी का हिस्सा है, जहाँ अपना रिश्ता होता है वहाँ ये किस्सा है, वहीं ये किस्सा है। नाराजगी पल भर की हो सकती है लेकिन अपनापन उम्र भर का होना चाहिए, क्योंकि जो दिल से अपने होते हैं वो रूठ कर भी दूर नहीं जाते, बस मनाए जाने का इंतजार करते हैं। तो बहुत ही सही बात आपने कही कि वाकई बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रूठ जाते हैं और वो सोचते हैं कि उन्हें मनाया जाए, और एक बार भी मनाने की कोशिश की जाए तो तुरंत मान जाते हैं। आप हमें बताइए कि क्या आप किसी से रूठे हैं और अब तक माने ना हो, उनके मनाए जाने का इंतजार कर रहे हो, और कौन सी ऐसी बात है जिस पर आप रूठ जाते हैं आसानी से, और किसी को मनाना हो तो क्या करते हैं आप? ये बातें हम तक भेजिए। तब तक हमारे और साथी कह रहे हैं कि मैं हमेशा दिल की बात सुनती हूँ। वहीं हमारी एक और साथी कह रही है कि कभी

0: कभी दिमाग के सुनते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज किस कार्यक्रम में दिल की बातें होने वाली हैं, कैसी भी परिस्थिति हो हमें अपने दिल की ही सुननी चाहिए, पर कैसे, दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है और इन सब की कश्मकश में कभी कभी हम उलझ के रह जाते हैं। चले दिल की दुनिया को बर्बाद करके भूले से मोहब्बत कर, इस तरह से उन्होंने गानों की लाइंस बताई हैं, अपने पसंदीदा गानों के बारे में बताया है। देखते हैं उनके गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं या नहीं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कभी कभी इंसान दिल और दिमाग के बीच इस तरह से उलझ जाता है कि क्या करें और क्या ना करें, लेकिन इंसान को किसी को नुकसान पहुंचाकर कोई काम नहीं करना चाहिए, उस समय दिल की आवाज ही सुननी चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही और हमारा दिल कह रहा है कि क्यों ना आपको एक संदेश सुना दें।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
0: तो अपने दिल की सुनिए और कल ही लगाइए फोन हेलो सहेली में। लेकिन फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर, तो आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने बहुत से लोगों की लिस्ट में देखा है और हमारी लिस्ट में भी पहले से शामिल था, तो हमें ये बताइए कि कौन सी फिल्म का ये गीत है और इसमें आवाज किसकी है।

सीआईडी फिल्म का ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज से। ये हमारे सवाल का सही जवाब है और हमारे साथियों ने भी सही जवाब दिया। हमारे एक साथी, हमने पूछा ना दो दुनी चार फिल्म का गीत सुनवाते हुए कि भाई कभी किसी दिल की वजह से कभी पिटने की नौबत आई क्या, तो कुछ किस्सा साझा करें। तो हमारे साथी ने भी लिखा है कि बदमाश दिल ने किसी को पिटवाया है तो वो अपनी कहानी साझा करें, लेकिन हमारे साथियों का तो कुछ और ही कहना है। वो कह रहे हैं कि अगर दिल के सुनकर पिटने की नौबत आई या नहीं उसी को यहाँ उजागर करेंगे, तो कार्यक्रम के दौरान ही शायद पिटने की नौबत जरूर आ सकती है। तो कोई बात नहीं, हम बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहते हैं अपने सभी साथियों को, इसलिए आप ये किस्सा हमसे साझा ना करें। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब दिल धड़कता है तो ऐसा लगता है कोई अपना हमारे पास आ रहा है, जब अपना हमारे सामने होता है तो दिल कुछ कह ही नहीं पाता। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मेरे मिस्टर जल्दी नाराज हो जाते हैं और मेरी पोती भी जल्दी रूठ जाती है, तो दोनों को ही मुझे मनाना पड़ता है और वो जल्दी से मान भी जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि जल्दी मान जाते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उनका कहना है इस कार्यक्रम के बारे में कि आज आप हमारे पिटने की बातें क्यों कर रही हैं, ये तो सोचिए भला अपनी इज्जत का फालूदा कौन करवाएगा। भाई ठीक है, हम तो बिल्कुल माफी मांगते हैं कि ये बात आप ना साझा करें कि कभी पिटने की नौबत आई थी या नहीं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि औलाद द्वारा मन के विरुद्ध किए गए काम थोड़ी मुश्किल पैदा करता है, माँ बाप सबसे तर्क कर सकते हैं, कार्यरत जवान बच्चों से नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज नेटवर्क साथ नहीं दे रहा इसलिए वो इस कार्यक्रम में ज्यादा साथ नहीं दे पाएंगे। कोई बात नहीं, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं तो भी कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भैया आज हेलो फरमाइश में फोन लगा रहे हैं, इस वजह से उनका पूरा ध्यान वहां है, तो बस हमारी यही कामना है कि आपका कॉल लग जाए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिल और दिमाग का हिसाब किताब बहुत अलग अलग होता है, जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव होते रहते हैं, धैर्य की बहुत जरूरत होती है। वैसे भी पुरानी कहावत है कि समय से पहले और जरूरत से ज्यादा नहीं मिलता किसी को भी, किस्मत या भाग्य का भी बहुत बड़ा रोल होता है। होता तो है। हमारे एक और साथी कह रहे कि दिल कब किसी पे आ जाए पता नहीं, कब किससे रूठ जाए पता नहीं, दिल के करीब किसी को आने मत देना, क्या होगा पता नहीं, दिल को रहने दो पंछी की तरह मस्त खुले आसमान में उड़ने के लिए, दिल को लगी चोट कभी भरती नहीं, संभल जाओ वरना पछताओगे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उन्हें अपने पेड़ पौधों के साथ रहना और अपनी छोटी सी वाटिका में काम करना बहुत अच्छा लगता है, यानी कि उनका दिल खुश होता है इस काम से। और हमारा दिल खुश हो सकता है जब हम सुनवा दें कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए किसकी आवाज में ये गीत है।

अनाड़ी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। यही हमारे सवाल का सही जवाब, हमने किसकी आवाज में गीत सुन रही है पूछा था आपसे। और ये हमारे साथी लिख रहे हैं कि दिल तो पागल है, बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहता है पर दिमाग उसे कंट्रोल में रखता है और इसी तरह से काम चलता है, ऐसा उनका कहना है। वही हमारे साथी कह रहे हैं कि दिल के बारे में उन्होंने कहा कि दिल की सुनिए लेकिन फैसला दिमाग से कीजिए, क्योंकि दिल मंजिल चुनता है और दिमाग वहां तक पहुंचने का रास्ता बताता है, सही रास्ता चुनता है। हमारी कौर साथी कहने की मैं ना तो रूठती हूँ और किसी को मनाना भी नहीं आता। भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, ना इस चीज से मतलब ना उस चीज से मतलब, अपना जीवन आसानी से जीजिए। हमारी कौर साथी कहने की आज की इबारत पर दिल की मानने का किस्सा बताना चाहूंगा। बात 2023 की है, छोटे बेटे ने MBBS का टफेस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट में अच्छे मार्क्स प्राप्त की। काउंसलिंग सेकंड राउंड में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उन्होंने सीट हो गई थी, फुल हो गई थी। अन्य मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था, घर के अन्य सदस्य भी राजी थे, बेटे के टीचर्स भी राजी थे, सिर्फ मैंने अपने दिल की मानी और अगले काउंसलिंग राउंड तक इंतजार किया और बेटे को अपने शहर में ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया और बेटा MBBS यही कर रहा है, तो झूठा ना वो सच हो गया। बिल्कुल सही बात आपने कही। और जब कुछ ऐसा होता है तो हमारा दिल भी मुस्कुरा उठता है, हम कह सकते हैं। और आपके और हमारे दिल के लिए ये गीत सुनवाते हैं, बताइए किस फिल्म का गीत, किसकी आवाज़।

जिंदगी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में पापा से बहुत रूठते थे और वो मनाते थे, आज पापा उम्र के उस दौर में है वो हमसे रूठ जाते हैं और हम भी उन्हें मना लेते हैं। बहुत ही प्यारी सी बात आपने ये लिख भेजी। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिल है कि मानता ही नहीं, कभी कभी मेरा दिल मेरी सुनता ही नहीं, उसे जो चाहिए वही करना होता है, मैं भी मजबूर हो जाता हूँ अपने दिल के हाथों। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि क्या बातें हैं, इन्हें तो कुछ पता नहीं, बस जैसे ही सुना तो रूठने की बातें ही सुनी। वैसे रूठने तो हम भी हैं, बस थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर नहीं रह सकते, पर एक बात तो है, हम रूठें और कोई प्यार से मनाए उसका भी अलग एहसास होता है। कभी बच्चे रूठ जाते हैं तो उनकी पसंद का कुछ बनाकर उन्हें मना लेते हैं, और कभी डांट कर और कभी प्यार से। वही हमारे एक और साथी का कहना है कि दिल की हालत पर तो कई गीत, गजल और कहानियां लिखी गई हैं। निर्मल वर्मा का एक उपन्यास ये दिन भी पात्र के दिली हालत और मनोवेग को शानदार चित्रण पेश करता है। मैं एक अध्यापक हूँ, मैं बच्चों को दिल लगाकर पढ़ाता हूँ। ये भी बहुत अच्छी बात आपने लिखी। हमारे एक और साथी कहते हैं कि हम दिल से सुनते हैं कार्यक्रम, गीतों की लिस्ट भी भेजते हैं, दिमाग से ज्यादा दिल से गीत चुनते हैं, क्योंकि दिमाग कहेगा कि तुम्हारी लिस्ट से गीत नहीं मैच हुए तो, पर दिल कहता है कि सब अपने ही तो हैं, कार्यक्रम भी अपना, उद्घोषक भी अपना, इसलिए जहां भावनाएं जुड़ी हों वहां दिल की चलती है और दिमाग तो होता ही व्यवहारिक है। तो ये जब आपने कहा तो हमें मन में ये सवाल हुआ कि आपके लिस्ट में से कितने गीत शामिल हुए, आप सभी ने बताया ही नहीं कौन कौन से गीत शामिल हो गए आपकी लिस्ट में से, ये तो बताइए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिल किसी से लगाना यानी दिल को कमजोर करना। हमारे एक और साथी कहते हैं कि दिल वो अनमोल एहसास है जहां प्रेम जन्म लेता है, विश्वास पनपता है, रिश्तों की खुशबू बसती है, वो केवल धड़कनों का घर नहीं बल्कि यादों, सपनों और भावनाओं का सबसे सुंदर संसार है। जब दिल में अपनापन, करुणा और सच्चाई बसती है तो जीवन का हर रास्ता रोशन हो उठता है। एक साफ दिल नफरत को नहीं बल्कि प्रेम और क्षमा को जगह देता है। यही दिल हमें दूसरों की मुस्कान में अपनी खुशी ढूंढना सिखाता है और कठिन समय में भी उम्मीद की लौ जलाए रखता है। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी दौलत धन नहीं बल्कि एक सुंदर, संवेदनशील और प्रेम से भरा दिल भी है जो हर धड़कन के साथ इंसानियत का गीत गुनगुनाता रहता है। तो चलिए एक गीत की ओर आगे बढ़ते हैं, बताइए किसने लिखा ये गीत।

जालीनोट फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। राजा मेहंदी अली खां के बोल ओपी नैयर का संगीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें। हमारे एक साथी कह रहे कि जिंदगी के सबसे बेहतरीन फैसले तब जन्म लेते हैं जब दिल की सच्चाई और दिमाग की समझ एक दूसरे का साथ निभाते हैं। दिल हमें सपने देखने की हिम्मत देता है और दिमाग उन सपनों को हकीकत में बदलने का सही रास्ता दिखाता है। इसलिए न सिर्फ दिल की सुनिए, न केवल दिमाग की, दोनों का संतुलन ही जिंदगी की सबसे बड़ी समझ है। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि जब कोई अपना बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा आलोचनाएं कर देता है तब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक और साथी कहते हैं कि मैं तो सिर्फ एक शख्स से ही रूठती हूँ, वो भी तब जब कहीं जाने की प्लानिंग करके देर से घर आते हैं, फिर 10 बार ना नुकुर करके फिर तैयार हो ही जाती हूँ। तो भाई इन रूठने मनाने पर एक गीत आपको सुनवा देते हैं, कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए और हमें बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है।

एडमिशन के दिन आते हैं तो माता पिता का बच्चों पर दबाव बढ़ जाता है। अक्सर माता पिता ये चाहते हैं कि जो विषय वो तय करें बच्चे वही विषय चुनें और आगे की पढ़ाई करें। एक छात्र के जीवन में सबसे मुश्किल समय तब होता है जब उसे अपने आगे के रास्ते का चुनाव करना पड़ता है, जब उसे अपने लिए खास विषयों का चुनाव करके पढ़ाई की दिशा निर्धारित करनी पड़ती है। और तब अगर माँ बाप के दबाव में फैसला किया तो बच्चों की प्रतिभा इस दबाव और अनचाहे विषय के तले गुट्टी चली जाती है। हम अपने बच्चों को अपनी मर्जी से अपने करियर के चुनाव के अवसर आखिर कब देंगे?

हर बच्चे में एक नैसर्गिक प्रतिभा होती है, किसी न किसी विषय में उसकी दिलचस्पी होती है। हो सकता है कोई बच्चा बहुत अच्छा कलाकार हो, बहुत अच्छा अभिनय करता हो, कोई बहुत अच्छी पेंटिंग करता हो, कोई बहुत अच्छा लिखता हो, कोई तकनीक में बहुत अच्छा हो। जाहिर है कि हर बच्चे के भीतर छिपे प्रतिभा के इन बीजों को सही तरीके से पोषित करना अनिवार्य होता है। लेकिन हमारे यहाँ जीवन में ज्यादा पैसे कमाने और ज्यादा प्रभाव और रसूख कमाने पर जोर दिया जाता है। एक जमाना था जब डॉक्टर इंजीनियर के सिवा तीसरा करियर नजर ही नहीं आता था। आज भी माँ बाप या परिवार के बुजुर्गों का बच्चों पर दबाव रहता है कि वो कोई ऐसा करियर चुने जिसमें ज्यादा पैसे कमाने के अवसर हों और जिंदगी ज्यादा सुख सुविधाओं में बीते। ये नहीं देखा जाता है कि बच्चे का मन और उसके सपनों की उड़ान क्या है। अगर बच्चों को आजादी दी जाए अपना करियर खुद चुनने की, तो हो सकता है कि वो आगे चलकर बहुत ज्यादा तरक्की करें।

बहुत ज्यादा दबावों में प्रतिभा का विकास नहीं होता है, बहुत ज्यादा उम्मीदों का बोझ होता है, तब भी कहीं न कहीं बच्चों की प्रतिभा और उनके मन पर असर पड़ता है। ये ठीक है कि माँ बाप बच्चों की भलाई चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक सुविधाजनक जिंदगी बच्चे जिए जिसमें किसी तरह का कोई अभाव ना हो, कोई परेशानियां ना हो, लेकिन बच्चों को ये आजादी तो होनी ही चाहिए कि वो अपने मन से तय करें कि वो अपनी जिंदगी की राहों को किस दिशा में ले जाना पसंद करते हैं। बस माँ बाप को चाहिए कि वो इस दिशा को निर्धारित करने में बच्चों का थोड़ा बहुत मार्गदर्शन कर दें और उन्हें एक सही नजरिया प्रदान करें, बच्चों को सही हालात दें आगे बढ़ने के, और फिर देखिए कि वो किस तरह से अपने सपनों की उड़ान भरते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्वकप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के 2रे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद,

0: उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनयगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान यूपीआई, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन्स से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मानसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
3: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शिलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री सीपी राधा कृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरा लाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
5: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं, वो सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
1: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
6: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश की राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने

0: पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
1: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देवस्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
3: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
4: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना।

मैं कैसे उसकी बातों में कहता हूँ तुमको लेने दो हा हा हा कोई वो कैसे मेरी बातों में कहता हूँ तुमको लेने दो हा हा हा क्या क्या कह डाला आंखों आंखों में कहता हूँ तुमको लेने दो हा हा हा हमसे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो गया।

0: चीन समझ गए ना आने आने आने प्यार हो गया।
1: ओ मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा, मन्नू तेरा हुआ अब मेरा

0: हाथ में फिर अपना अपना हाथ, उसने खींचा मैंने खींचा, आ हा हा, हम थे वो थी और हमार रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।
1: चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और अनूप कुमार की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नकमे।
4: cat cat माने बिल्ली।
5: rat rat rat माने चूहा।

0: G-O-A-T, goat. Goat माने बकरी, L-I-O-N, lion. Lion माने शेर, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?
1: Hey, mad, mad.

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में दिल्ली का ठग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, रवि का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: बम्बई का बाबू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे लाजवंती फिल्म से ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडो स्टेडियम में 1042 नव चयनित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इनमें पहली से पांचवी कक्षा के लिए 274 तथा छठी से आठवीं कक्षा के लिए 768 सहायक आचार्य शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी द्वेष भाव से दूर रहकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें।
1: यहाँ पर 1000 से अधिक सहायक शिक्षकों की बहाली हो रही है, नियुक्ति पत्र आपको दिए जा रहे हैं। ये मैं मानता हूँ कि सरकार की प्रथम जिम्मेवारी हर विषयों पर हो, लेकिन उसके अंदर राज्य के नागरिकों की भी एक जिम्मेवारी है कि हम अपने इर्द गिर्द ऐसे वातावरण को जन्मने ना दें, पनपने ना दें, जहाँ हम एक दूसरे को एक अलग अलग नजरों से देखें।
0: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने धनबाद जिले के भूली बस्ती स्थित मतदान केंद्र संख्या 38 उत्क्रमित मध्य विद्यालय तथा मतदान केंद्र संख्या 210 गुरुनानक मध्य विद्यालय पर बीएलओ द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में किए जा रहे कार्य एवं कार्य योजना की समीक्षा की। वहीं दूसरी ओर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने धनबाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी आदित्य रंजन के साथ सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जिले के वेयर हाउस का निरीक्षण किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि शिक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। CBSE ने कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं के जिन छात्रों ने पहले ही दो विदेशी भाषाएं चुन ली है, उन्हें एक अतिरिक्त भारतीय मातृभाषा का अध्ययन करते हुए अपनी विदेशी भाषाओं को जारी रखने की अनुमति होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर का दरवाजा आज से श्रद्धालुओं के लिए बंद हो गया। मान्यता है कि पूर्णिमा के स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अस्वस्थ माने जाते हैं। बोकारो स्टील सिटी स्थित जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान को 108 कलश पवित्र जल से स्नान कराया गया। मंदिर के पुजारी लंबोदर उपाध्याय ने बताया कि इसके बाद वे करीब 15 दिनों तक विश्राम करते हैं। इस अवधि को अनवसर काल कहा जाता है।
2: दुनिया में जहां भी जगन्नाथ मंदिर है वहाँ पर ये सारे से नचा है। इसके बाद 15 दिन अभी इनका दर्शन साधन ग्रंथालय के नहीं रहेगा। पंक्तियों के दर्शन के लिए आप मंदिर नहीं वो आ जाएंगे भक्तजनों के पास। रथ यात्रा के एक दिन पहले नवयुवन दर्शन होता है, शुभ माना आता है।
0: सरायकेला खरसावां जिले में देवस्थान पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री जगन्नाथ सेवा समिति द्वारा लगभग 300 वर्ष से अधिक पुरानी धार्मिक परंपरा का निर्वहन श्रद्धा एवं विधि विधान के साथ किया गया। इस अवसर पर भगवान श्री जगन्नाथ उनके अग्रज बलभद्र एवं बहन सुभद्रा का पारंपरिक शाही स्नान सम्पन्न कराया गया। परंपरा के अनुसार नगर के 7 जलाशयों से एकत्रित पवित्र जल से भगवान का महाअभिषेक किया गया। हजारीबाग के मिशन अस्पताल के पास कल देर रात एक बेकाबू कार ने सड़क किनारे मौजूद कई लोगों को अपनी चपेट में लेने के बाद बिजली के पोल और चापाकल में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 6 से अधिक लोग घायल हो गए, जबकि कार चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेजा गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुनुआ चक्रधरपुर मुख्य मार्ग पर आज सुबह एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक घंटे आधारित शिक्षिका गंभीर रूप से घायल हो गई। यह हादसा निश्चितपुर स्कूल के पास हुआ, जहां सड़क पर जा रहे शिक्षिका को ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी। पूरी घटना आसपास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसे पुलिस ने जांच के लिए अपने कब्जे में लिया है। मौसम। राजधानी रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में दोपहर बाद से ही हो रही बारिश से तापमान में कमी आई है और लोगों को गर्मी से निजात मिली है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची, रामगढ़, धनबाद समेत 20 जिलों में 4 जुलाई तक बारिश और वज्रपात की आशंका जताई है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है नेहा शर्मा। तो नेहा, तुम्हें भी बहुत प्यार भरा नमस्कार और बहुत स्वागत है कि हम लोग बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं ना।
2: मंजरी जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी नेहा शर्मा का नमस्कार। बहुत दिनों के बाद तो मिल ही रहे, जैसे बारिश बहुत दिनों के बाद हमसे मिल रही है।
1: बिल्कुल। और देखो, कहीं कहीं पे देखो बारिश अभी भी नहीं हुई है, तो वो लोग गर्मी से परेशान है। तो बस लगता है कि यही प्रार्थना रहती है कि सब जगह पे बारिश हो, जिससे सबको आराम मिले
2: जी,
1: है ना। और जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो भी पानी उन्हें मिले, वो स्वस्थ रहे, खुशहाल हाँ। रहे, हरे भरे रहे। और आज तुमने देखा नेहा कि सुबह सुबह हमारी कितनी सारी, हमने देखा कितनी सारी लेडीज जो थी वो एकदम तैयार होके जा रही थी और हाथ में पूजा की थाल भी थी
2: जी।
1: तो तुम समझ गई होगी कि आज क्या विशेष खास दिन था उन लोग के लिए।
2: बिल्कुल, आज वट सावित्री का व्रत है जिसमें बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है, बरगद के वृक्ष की। और कह सकते हैं प्रकृति से जुड़ सकते हैं हम इस तरह, जैसे बरगद के जो पेड़ हैं वो सालों साल रहते हैं, उनकी जड़ें इतनी ज्यादा धरती पे के साथ समाई होती हैं कि सालों साल रहते हैं। तो एक तरह से प्रकृति को पूजकर अपने पति की लंबी आयु के लिए ये पूजा की जाती है आमतौर पर। और गुजरात में भी ये पूजा, महाराष्ट्र और गुजरात में ये पूजा पूर्णिमा के दिन में की जाती है, बाकी जगह अमावस्या मतलब 15 दिन पहले
1: हाँ, उस साइड में अमावस्या में होती है, यहाँ पर आज के दिन होती है। तो पेड़ों का जो महत्व है वो तो देखो, बरगद की जो जटाएं होती हैं उनसे भी कई सारे वृक्ष उनके निकलते हैं, पनपते हैं पौधों में, और ऑक्सीजन देता है ये पेड़। तो पहले के कहा जाता कि घर से निकल के औरतें जाएंगी तो वहां पूजा करेंगी, तो जब हम किसी पेड़ की पूजा करते हैं तो उसको काटा नहीं जाता है, तो इस तरह से पेड़ की रक्षा भी होती है। तो कहना चाहिए कि आज के दिन हम अपनी सभी बहनों को इस पर्व की बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, है ना नहीं?
2: जी बिल्कुल, बधाइयां हमारी ओर से। और क्या क्या विषय हम लेकर आए हैं आज, ये भी बता दें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो प्रादेशिक व्यंजन में जो हम आज लेके आए हैं, प्रयाग उत्तर प्रदेश की दाल की कचौड़ी और आलू की रसेदार पतली पतली सब्जी जो होती वो, और समोसा छोले चाट।
2: भाई देखिए, तो तुरंत बधाई देने के बाद, व्रत की बधाई देने के बाद जब व्यंजन की बात कर दी गई है तो सखियां थोड़ा हमें माफ कर देंगी। और इसके साथ साथ विषय है विवाह बंधन नहीं रिश्तों को समझें, इस विषय पर भी हम बात करने वाले हैं। और एक गंभीर मुद्दे पर भी बात करने वाले हैं, वो है व्यसन, जो कि एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है।
1: और कथा सुधा के अंतर्गत आज हम सुनेंगे एक आज की कसर, ये कहानी सुनेंगे। लेकिन जैसे कि मौसम ने करवट ली है, यहाँ पर ले ली है और जहाँ पे अभी नहीं ली वहाँ पर भी लेगी, तो क्यों ना पहले एक गीत सुनते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं।
2: ये गीतों के माध्यम से हम हर जगह बरसात को न्योता दे रहे हैं।

0: तो मंजरी जी, ये बात तो हमने कर ली कि बरसे फुहार हर जगह, और अब क्या किया जाए?
1: अब हम सबको कथा सुधा में कहानी जो है हमारी वो सुनाएंगे, एक आज की कसर
0: जी।
1: तो लीजिए सब लोग कहानी सुनिए।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको

0: कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: कथा सुधा में आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक आज की कसर।
2: सारे नगर में महाशय यशोदा नंद का बखान हो रहा था। नगर ही में नहीं, समस्त प्रांत में उनकी कीर्ति की जाती थी। समाचार पत्रों में टिप्पणियां हो रही थी, मित्रों से प्रशंसापूर्ण पत्रों का तांता लगा हुआ था। समाज सेवा इसे कहते हैं, उन्नत विचार के लोग ऐसा ही करते हैं। महाशय जी ने शिक्षित समुदाय का मुख उज्ज्वल कर दिया। अब कौन ये कहने का साहस कर सकता है कि हमारे नेता केवल बात के धनी हैं, काम के धनी नहीं हैं। महाशय जी चाहते तो अपने पुत्र के लिए उन्हें कम से कम 20,000 रुपए दहेज में मिलते, उस पर खुशामद घाते में। मगर लाला साहब ने सिद्धांत के सामने धन की रत्ती बराबर परवाह न की और अपने पुत्र का विवाह बिना एक पाई दहेज लिए स्वीकार किया। वाह वाह, हिम्मत हो तो ऐसी हो, सिद्धांत प्रेम हो तो ऐसा हो, आदर्श पालन हो तो ऐसा हो। वाह रे सच्चे वीर, अपनी माता के सच्चे सपूत, तूने वो कर दिखाया जो कभी किसी ने ना किया था। आज हम बड़े गर्व से तेरे सामने मस्तक नवाते हैं।

0: महाशय यशोदा नंद के दो पुत्र थे। बड़ा लड़का पढ़ लिख कर फाजिल हो चुका था, उसी का विवाह तय हो रहा था और आप सब समझ चुके कि बिना कुछ दहेज लिए। आज तिलक था, शाहजहांपुर से स्वामी दयाल तिलक लेकर आने वाले थे। शहर के गणमान्य सज्जनों को निमंत्रण दे दिए गए थे, लोग जमा हो गए थे, महफिल सजी हुई थी। एक प्रवीण सितारिया अपना कौशल दिखाकर लोगों को मुग्ध कर रहा था। दावत का सामान भी तैयार था। मित्रगण यशोदा नंद को बधाइयां दे रहे थे।
1: वाह भाई यशोदा नंद, तुमने तो कमाल कर दिया।
2: अरे जनाब, ये कहिए कि झंडे गाड़ दिए?
1: हाँ,
2: अब तक जिसे देखा मंच पर व्याख्यान झाड़ते ही देखा। जब काम करने का अवसर आता था तो लोग दुम लगा लेते थे।
1: हाँ, और कैसे कैसे बहाने गाड़े जाते हैं। साहब, हमें तो दहेज से सख्त नफरत है, ये मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है, पर क्या करूं, बच्चे की मां नहीं मानती। कोई अपने बाप पर फेंकता है तो कोई और किसी खर्राट पर।
2: अजी, कितने तो ऐसे बेहया हैं जो साफ साफ कह देते हैं कि हमने लड़के को शिक्षा दीक्षा में जितना खर्च किया है वह हमें मिलना चाहिए। मानो उन्होंने ये रुपए किसी बैंक में जमा किए थे।
1: खूब समझ रहा हूं, आप लोग मुझ पर छींटे उड़ा रहे हैं। इसमें लड़के वालों का ही सारा दोष है या लड़की वालों का भी कुछ है?
2: अरे भाई साहब, लड़की वालों का क्या दोष है सिवाय इसके कि वह लड़की का बाप है।
1: सारा दोष ईश्वर का, जिसने लड़कियां पैदा की। क्यों?
2: मैं ये नहीं कहता न सारा दोष लड़की वालों का है न सारा दोष लड़कों वालों का, दोनों ही दोषी हैं। अगर लड़की वाला कुछ न दे तो उसे यह शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं कि डाल क्यों नहीं लाए, सुंदर जोड़े क्यों नहीं लाए, बाजे गाजे पर धूमधाम के साथ क्यों नहीं आए। बताइए।
1: हाँ, आपका ये प्रश्न गौर करने लायक है। मेरी समझ में तो ऐसी दशा में लड़के के पिता से ये शिकायत नहीं होनी चाहिए।
2: तो यूं कहिए कि दहेज की प्रथा के साथ ही डाल, गहने और जोड़ों की प्रथा भी त्याज्य है। केवल दहेज को मिटाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है।
1: हाँ हाँ, सही है।
3: ये भी लेम एक्सक्यूज है, मैंने दहेज नहीं लिया है। लेकिन क्या डाल गहने न ले जाऊंगा?
1: महाशय, आपकी बात निराली है। आप अपनी गिनती हम दुनिया वालों के साथ क्यों करते हैं? आपका स्थान तो देवताओं के साथ है।
4: 20,000 की रकम छोड़ दी, क्या बात है।
3: हाँ, मेरा तो यह निश्चय है कि हमें सदैव प्रिंसिपल पर स्थिर रहना चाहिए।

0: प्रिंसिपल के सामने मनी की कोई वैल्यू नहीं है। दहेज की कुप्रथा पर मैंने खुद कोई व्याख्यान नहीं दिया, शायद कोई नोट तक भी नहीं लिखा। हाँ, कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव को सेकंड कर चुका हूं। मैं उसे तोड़ना चाहूं भी तो आत्मा तोड़ने न देगी। मैं सत्य कहता हूं, ये रुपये लूं तो मुझे इतनी मानसिक वेदना होगी कि शायद मैं इस आघात से बच भी ना सकूं।
1: आपके कॉन्फ्रेंस आपको सभापति ना बनाए तो उसका घोर अन्याय है।
0: हाँ, मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, उसका रिकॉग्निशन हो या ना हो मुझे इसकी परवाह नहीं।
2: इतने में खबर हुई कि महाशय स्वामी दयाल आ पहुंचे। लोग उनका अभिवादन करने के लिए तैयार हुए। उन्हें मसनद पर ला बिठाया और तिलक का संस्कार आरंभ हो गया। स्वामी दयाल ने एक ढाक के पत्तल पर नारियल, सुपारी, चावल, पान आदि वस्तुएं वर के सामने रखी। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, हवन हुआ और वर के माथे पर तिलक लगा दिया गया। तुरंत घर की स्त्रियों ने मंगलाचरण गाना शुरू किया। यहां महफिल में महाशय यशोदा नंद ने एक चौकी पर खड़े होकर दहेज की कुप्रथा पर व्याख्यान देना शुरू किया। व्याख्यान पहले से लिखकर तैयार कर लिया गया था। उन्होंने दहेज की ऐतिहासिक व्याख्या की।
0: पूर्व काल में दहेज का नाम भी न था महाशयों। कोई जानता ही न था कि दहेज या ठहरोनी किस चिड़िया का नाम है। सत्य मानिए, कोई जानता ही न था कि ठहरोनी क्या चीज है, पशु या पक्षी, आसमान में या जमीन में, खाने में या पीने में। बादशाही जमाने में इस प्रथा की बुनियाद पड़ी। हमारे युवक सेनाओं में सम्मिलित होने लगे। ये वीर लोग थे, सेनाओं में जाना गर्व समझते थे। माताएं अपने दुलारों को अपने हाथ से शस्त्रों से सजाकर रण क्षेत्र भेजती थी। इस भांति युवकों की संख्या कम होने लगी और लड़कों का मोल तोल शुरू हुआ। आज ये नौबत आ गई है कि मेरी इस तुच्छ महातुच्छ सेवा पर पत्रों में टिप्पणियां हो रही हैं, मानो मैंने कोई असाधारण काम किया है। मैं कहता हूं, अगर आप संसार में जीवित रहना चाहते हो तो इस प्रथा का तुरंत अंत कीजिए।
3: मेरे मन में एक शंका है, क्या इसका अंत किए बिना हम सब मर जाएंगे?
0: अगर ऐसा होता तो क्या पूछना था, लोगों को दंड मिल जाता। और वास्तव में ऐसा होना चाहिए। ये ईश्वर का अत्याचार है कि ऐसे लोभी, धन पर गिरने वाले, बुर्दा फरोश, अपनी संतान का विक्रय करने वाले नराधम जीवित हैं और समाज उनका तिरस्कार नहीं करता, मगर ये सब बुर्द फरोश हैं।
2: व्याख्यान बहुत लंबा और हास्य भरा हुआ था। लोगों ने खूब वाह वाह की। अपना वक्तव्य समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने लड़के परमानंद को मंच पर खड़ा किया। उसे उन्होंने एक छोटा सा व्याख्यान लिखकर दे रखा था। मुस्कुराता हुआ मंच पर आया और एक जेब से कागज निकालकर बड़े गर्व के साथ उच्च स्वर में पढ़ने लगा।
4: प्रिय बंधुवर नमस्कार, आपके पत्र से विदित होता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं ईश्वर को साक्षी करके धन आपकी सेवा में इतनी गुप्त रीति से पहुंचेगा कि किसी को लेश मात्र भी संदेह न होगा। हाँ, केवल एक जिज्ञासा करने की धृष्टता करता हूँ। इस व्यापार को गुप्त रखने से आपको जो सम्मान और प्रतिष्ठा लाभ होगा और मेरे निकटवर्ती में मेरी जो निंदा की जाएगी उसके उपलक्ष्य में मेरे साथ क्या रियायत होगी? मेरा विनित अनुरोध है कि 25 में से 5 निकाल कर मेरे साथ न्याय किया जाए।
2: महाशय यशोदा नंद घर में मेहमानों के लिए भोजन परसने का आदेश करने गए थे, निकले तो ये वाक्य उनके कानों में पड़ा, चेहरा फक हो गया, झपट कर लड़के के पास गए, कागज उसके हाथ से छीन लिया और बोले,
0: नालायक, ये क्या पढ़ रहा है? ये तो किसी वकील का खत है जो उसने अपने मुकदमे के बारे में लिखा था। ये तू कहां से उठा लाया? शैतान, जा वो कागज ला जो मैंने तुझे लिख कर दिया था।
1: पढ़ने दीजिए, इस तहरीर में जो लुत्फ है वो किसी दूसरी तकरीर में ना होगा।
3: सही बात है, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले।
1: भाई अब जलसा बर्खास्त कीजिए, मैं तो चला।
3: वाह वाह वाह वाह, यहाँ भी चलते हुए।
0: अरे बैठिए बैठिए, पत्तल लगाए जा रहे हैं। अरे बैठिए ना आप लोग, बैठिए बैठिए।
3: बेटा परमानंद, जरा यहाँ तो आना। सुनो, तुमने यह कागज कहाँ पाया?
4: बाबूजी ही तो लिखकर अपने मेज के अंदर रख गए थे, मुझसे कहा था कि इसे पढ़ना, अब बेकार मुझसे खफा हो रहे हैं।
0: वो ये कागज था? मैंने तो मेज के ऊपर ही रख दिया था, तूने ड्रॉर में से क्यों निकाला इस कागज को?
4: मुझे मेज पर नहीं मिला।
0: तो मुझसे क्यों नहीं कहा? ड्रॉर क्यों खोला? देखो आज मैं तुम्हारी कैसी खबर लेता हूँ, तुम भी याद करोगे।
1: अरे भाई ये और क्या है, इसी को तो लीडरी कहते हैं कि अपना उल्लू सीधा करो और नेक नाम भी बनो।
3: शर्म आनी चाहिए, यह त्याग से मिलता है, समझे? धोखाधड़ी से नहीं।
1: मिल तो गया था पर बस एक आँच की कसर रह गई।
3: सच बताऊं, ईश्वर पाखंडियों को यों ही दंड देता है।
2: ये कहते हुए लोग उठ खड़े हुए। यशोदा नंद समझ गए कि भंडा फूट गया, अब रंग न जमेगा। बार बार परमानंद को कुपित नेत्रों से देखते और डंडा तौलकर रह जाते थे। इस शैतान ने आज जीती जिताई बाजी जो खो दी थी। मुंह में कालिख लग गई, सिर नीचा हो गया, गोली मार देने का काम किया है। उधर रास्ते में मित्र वर्ग यूं टिप्पणियां करते जा रहे थे,
1: ईश्वर ने मुंह में कैसी काली मां लगाई कि हयादार होगा तो अब सूरत ना दिखाएगा।
5: ऐसे ऐसे धनी मानी विद्वान लोग ऐसे पतित हो सकते हैं, मुझे यही आश्चर्य है। लीना है तो खुले खजाने लो, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है? ये क्या कि माल चुपके चुपके उड़ाओ और यश भी कमाओ?
3: मक्कार का मुंह काला।
1: हाँ, यशोदानंद पर बड़ी दया आ रही है, बेचारे ने इतनी धूर्तता की, उस पर भी कलई खुल ही गई, बस एक आंच की कसर रह गई।
6: एक आज की कसर, मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आपने सुनी कथा सुधा में। इस कहानी में भाग लेने वाले कलाकार रेणु चतुर्वेदी, जी श्याम, जयंत पात्रिकर, यूनुस खान और दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। तो मंजरी जी, क्या संदेश प्रद कहानी थी?
7: बहुत अच्छी लग रही थी सुनकर, बहुत अच्छा लग रहा था, तो हमारे सभी साथियों को भी बहुत पसंद आई होगी, है ना? तो अब सुनते हैं गीत, उसके बाद हम अपने विषयों पर चर्चा करेंगे।
6: जी।

0: तो मंजरी जी, सब गीत सुन लिए, कहानी सुन ली, लेकिन बातें कब होंगी ये बताइए
1: भाई। बातें तो हमारा जो विषय है व्यसन, एक गंभीर समस्या है नेहा। और आज के समय में जो ये नशा है केवल एक बुरी आदत नहीं बल्कि समाज के सामने एक गंभीर चुनौती बन चुका है
0: जी।
1: और विशेष रूप से युवाओं युवतियों में कुछ लोग इस आदत को जो है वो आधुनिकता स्टाइल और फैशन का प्रतीक मानने लगे हैं। और नई पीढ़ी जिसे जेंजी का नाम दिया गया है वो इन आदतों को हाई सोसाइटी के संग स्टेटस सिंबल मान रही है। उसे लगता है कि ये जो आदत है इसको करने में कोई बुराई नहीं, ये तो मॉडर्न समाज का फैशन है। देर रात तक पार्टी, क्लब, रिसॉर्ट्स में दोस्तों संग मादक पदार्थों का, नशीले पदार्थों का सेवन करना, डांस करना, जश्न मनाना, उनको लगता है कि बस एक तो ये तो एक जस्ट एक एंजॉयमेंट है, फन है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस आदत को कभी फैशन नहीं माना जा सकता है, ना ही ये हो सकता है। और ये एक ऐसा व्यसन है जो धीरे धीरे व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार, करियर और पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत में तो कई लोग दोस्त के दबाव में आके या फिर दिखावा होता है या कोई कभी कभी जिज्ञासा होती है या तनाव हो जाता है तो उससे बचने के लिए मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तम्बाकू या अन्य नशीले पदार्थों का वो सेवन करते हैं और लगता है कि उनका व्यक्तित्व अधिक आकर्षक इससे दिखाई देगा और स्वीकार किए जाएंगे लोगों के बीच, जैसे लोगों के बीच वो रह रहे हैं। लेकिन तथाकथित ये जो फैशन है धीरे धीरे आदत और फिर लत में बदल जाता है और ये जो लत है वो बड़ी नुकसान करती है, जैसे कि आपने कहा स्वास्थ्य पर नुकसान है, शरीर के साथ साथ मानसिक संतुलन भी इससे प्रभावित होता है, निर्णय लेने में बहुत ही परेशानियां आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, आर्थिक समस्याएं भी पड़ती हैं, परिवार में हो तो तनाव पैदा हो जाता है, कई बार इसकी वजह से अपराध, सड़क दुर्घटना और हिंसा जैसी घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। इससे संबंधित और बातें करेंगे लेकिन एक अंतराल ले लें।

0: तो उसके साथ साथ आप रील बनाने लग जाते हैं, वीडियो बनाकर हाँ। ब्लैकमेल करना भी एक आदत शुमार हो जाती है लोगों की, और शोषण करना जैसी बातें कितनी आए दिन होती रहती है, हम खबरों में भी देखते हैं, और इससे वो लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन हमारे जो युवा युवतियां हैं वो इतनी न्यूज सुनने के बाद भी, समाचार सुनने के बाद भी वो लोग जागते नहीं, जागरूक नहीं होते, सतर्क नहीं होते कि उन्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। और सोचो उन माता पिता पर क्या बीतती होगी जब इस स्थिति में उनका बेटा या बेटी फंस जाते हैं, तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती है, उनके अच्छा नहीं लगता है कि परिवार की इस तरह से सब जगह वैसी बातें हो रही हैं उनके बारे में। तो बच्चों को ये चीज सोचना चाहिए, और इसके लिए क्या है कि आप इसको फैशन, मतलब अगर मानते हैं तो बहुत ही गलत बात है, ये फैशन नहीं है, फैशन आप और चीजों का कीजिए, लेकिन ये चीज, इन चीजों से आप दूर रहिए, और अपनी अपनी जो अच्छी शिक्षा है, जो आपको पिता माता चाहते हैं कि आपका बच्चा, मेरा बच्चा अच्छा पढ़े लिखे, तो उस तरफ ध्यान दीजिए, आप अच्छी शिक्षा लीजिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, खेल संगीत साहित्य और रचनात्मक कार्य कीजिए जिससे कि आपका नाम रोशन हो, ना कि आप इस वजह से आपके नाम को कहा जाए कि ये बच्चा गलत लत का शिकार है, ऐसा ना करें।
1: और कई बार इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि परिवार में, विद्यालय में, समाज में, सब हम मिलकर अगर युवाओं को इसके दुष्प्रभावों के बारे में अगर हम बताएं, या मित्रों का सही चुनाव कैसे करना चाहिए, या उनका जो तनाव है, तनाव तो सभी को होता है, तो तनाव का सकारात्मक रूप से कैसे समाधान कर सकते हैं, कैसे खुद को आत्मसंयमित हो सकते हैं कि नहीं, जो अगर हमारे साथी नशा कर रहे हैं या ऐसे लोगों के आसपास हम हैं या ऐसी चीजें हमें आकर्षित करनी है, तो कैसे खुद को हम ये बताएं कि नहीं ये चीज सही नहीं है, तो हमें इससे बचना है, तो इसके लिए आत्मसंयम बहुत जरूरी है। और जब हम देखते हैं कि क्या आजकल अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो ये व्यसन है, नशा है, वो एक नई पहचान की तरह आते जा रहा है, कि मान लीजिए सिगरेट है या नशीले पदार्थ हैं, तो उनका सेवन करना आधुनिकता मानी जाती है, ऐसा लगता है कि वह कितनी अच्छी तरह से, कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा युवाओं का जो नजरिया बदल रहा है उसके लिए ही वो उस तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। फिर अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसके तो पैकेट्स में ही सारी लिखे होते हैं क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसके, और अगर हम देखें तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम ही हैं जो आसपास भी दिख जाएंगे अगर वो देखते हैं, तो बहुत सी गंभीर समस्याएं होती हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि स्टेटस है या कूल दिखते हैं हम इससे, तो ये जो चीजें हैं वो सोशल मीडिया के जरिए या फिल्मों के जरिए कई बार, क्योंकि फिल्मों में भी बताया जाता है कि किसी खास किरदार को दिखाने के लिए उस तरह की चीजें करना लगता है उन्हें जरूरी, तो इस वजह से वो पूरा जो एक शुरुआत में बताया जाता है, स्पष्टीकरण दिया जाता है कि इस तरह का कोई भी काम वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, एक किरदार को दिखाया जा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: तो इस किरदार में आपको क्यों ढलना है,
0: क्यों ढलना है? और नेहा, जब कोई इस तरह की चीजों को लेता है तो उसका जो धुआं है वो सामने वाला अगर नहीं लेता है तो उसके, वो सांस तो ले रहा है ना, तो उसके लंग्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके फेफड़ों को भी नुकसान हो रहा है, आप अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं लेकिन आपके साथ दूसरे को भी नुकसान हो रहा है। अब घर में आप अगर आप ले रहे हैं तो बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चों को भी लंग्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार को इससे क्षति होती है। तो हमारे जो युवा बच्चे युवतियां हैं उनको कहना चाहिए कि वो सतर्क रहें, इस तरह की आदतों से दूर रहें। और हमारे साथी भी देखो लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन गंभीर मानसिक बीमारी है जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को बाधित करता है। किसी को धूम्रपान, तंबाकू सेवन या कैफी पदार्थ पीने का व्यसन हो जाता है जो शरीर और दिमाग को काफी नुकसानदायी होता है। आजकल एक नया व्यसन चल रहा है मोबाइल का, जिसका ज्यादा उपयोग करने से आंखों के साथ गर्दन के लिए भी काफी नुकसानदेह हो सकता है। व्यसन कोई भी हो, उनके अधीन होने में खुद का नुकसान ही होता है, इसीलिए इससे दूरी बनाने में ही समझदारी है। अगर आपको व्यसन रखना है तो रेडियो का रखिए, विद भारती पर मनभावन गीत संगीत सुनना सबसे बड़ा फायदेमंद होगा। तो बहुत अच्छी सी बात आपने अंत में लिख दी है, तो बच्चों को सोचना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो कुछ अच्छी चीजों का हम, क्योंकि किसी भी चीज की अगर लत लगती है तो वो ऐसे, हालांकि लत को बुरी चीजों, बुरी आदतों के साथ ज्यादा जोड़ा जाता है, फिर भी अगर हम जोड़ रहे हैं हमारे साथी कि संगीत के साथ आप कर सकते हैं, या पढ़ने के साथ अलग अलग किताबों का आप शौक पाल सकते हैं, उसके प्रति आप उतने ज्यादा दीवानगी पाल सकते हैं कि बस उसको आप, उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, तो फिर भी आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, कुछ ना कुछ आपके लिए फायदेमंद ही होगा। हमारे साथ ही लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन समस्या है जो आपके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकती है, जिनमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, रिश्ते और करियर शामिल है, और इसमें मादक पदार्थों के सेवन से संबंधित विकार, ये दो मुख्य प्रकार उन्होंने बताया व्यसन के, और व्यवहार संबंधी व्यसन। तो इसका इलाज लेकिन संभव है, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इलाज कर लेना चाहिए। यानी कि व्यसन मुक्ति के भी बहुत से केंद्र हैं वहां अगर आप जाकर, क्योंकि अगर आपको आदत हो गई तो उसे छुड़ाना भी आवश्यक है, तो एक अच्छी तरह से अगर आप छुड़ाते हैं तो आसानी से आप उससे बच सकते हैं।

0: वहीं वो कह रहे कि मस्तिष्क का एक दीर्घकालिक रोग है जो सीखने और बार बार होने वाले व्यवहारों को प्रभावित करता है। इसे आमतौर पर किसी विशेष पदार्थ पर निर्भरता के रूप में पहचाना जाता है जो आदतन उपयोग को प्रेरित करता है, लेकिन अन्य बाहरी कारकों जैसे घटनाओं से भी संबंधित ये हो सकता है। जैसे इसके लक्षण उन्होंने बताते हुए लिखा है कि तीव्र लालसा होती है, आत्मनियंत्रण खो सकते हैं, वापसी के लक्षण होते हैं, यानी कि अगर एक बार आपने छोड़ दिया, उनका जो भी मूल तत्व जो कहना चाह रहे हैं, तो एक बार अगर आपने छोड़ दिया तो खुद को उसी स्थिति में बनाए रखना थोड़ा कठिन भी हो सकता है, क्योंकि आपके मन में फिर से वो लालसा हो सकती है कि एक बार फिर से क्यों ना उसे चखा जाए या फिर से क्यों ना उस ओर बढ़ा जाए। तो वहां आत्मसंयम रखना बहुत जरूरी है। छोड़ना फिर भी आसान है, लेकिन छोड़े रहना छोड़ना मुश्किल है, तो वहां संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, और अगर आप मन में ठान लेंगे तो आप कर भी सकते हैं, उससे दूरी बना भी सकते हैं। हमारे साथी और लिखते हैं कि व्यसन एक गंभीर समस्या है, स्मार्टफोन का व्यसन एक बड़ी चुनौती है, स्वयं शिस्त और सेल्फ कंट्रोल एक ही उपाय है। जिन्होंने ये फोन बनाया था उनको भी ये बात पता थी, उन्होंने एक राक्षस बना दिया है। 3-4 साल के बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन देखता हूं तो दुख होता है, चर्चा के इंतजार में, इन्होंने लिखा है। कथा सुधा एक आज की कसर सुनेंगे इन्होंने, तो वो तो हमने सुनाई ही दी है,
0: ये सब तो हमने सुन लिया, लेकिन एक गीत भी तो सुने।

0: तो देखो
1: जीवन
0: भाई,
1: की बात बताता है ये गीत कितना अच्छा मंजे जी है ना?
0: बिल्कुल, एक दूसरे के प्रति समर्पित होना ये बहुत बड़ी बात है, इस गीत से भी संदेश मिलता है। और देखो जब विवाह जो है वो बंधन नहीं, रिश्तों को समझने का सबसे सुंदर एक सफर है। अक्सर लोग विवाह को बंधन कह देते हैं नेहा, लेकिन सच तो ये है कि विवाह किसी को बांधने का नहीं बल्कि दो अलग अलग व्यक्तियों को समझने और स्वीकार करने का नाम है। ये ऐसा रिश्ता है जहाँ केवल दो लोग ही नहीं बल्कि दो परिवार, दो संस्कृतियां, दो आत्य और दो सोच एक साथ चलना सीखती हैं। और विवाह का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं बल्कि एक दूसरे की पहचान का सम्मान करना है। जहां प्रेम हो, भरोसा हो, विश्वास हो और संवाद हो, वहां विवाह कभी बंधन नहीं लगता है। बंधन तो तब महसूस होता है जब रिश्ते में अधिकार अधिक और अपनापन कम हो जाए।
1: वाकई मंजरी जी, और एक सफल वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो उसकी नींव ही इस बात पर है कि जो पति पत्नी हैं वो एक दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें बल्कि एक दूसरे को समझने की और स्वीकार करने का प्रयास करें। हर व्यक्ति अपनी परवरिश, अपनी सोच और अनुभवों के साथ ही आता है और इसलिए मतभेद होना तो स्वाभाविक है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। कहीं हो सकता है वो कुछ अलग काम करते हो, आप कुछ अलग तरह से जीवन जी रहे हो, तो ये समझिए कि उनकी उनकी वो आदतें हैं। एक खास उम्र तक आप पहुंच चुके हैं और वो भी, तो एक जो आदतें हैं वो नहीं बदलती हैं, तो उन्हें स्वीकार जितनी जल्दी किया जाए
0: वो वही अच्छा है। और दोनों को पहल करनी पड़ती है रिश्ते में। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब छोटी छोटी बातों पर संवाद होता है, जब गलती होने पर अहंकार नहीं बल्कि क्षमा आगे आती है, और जब वो खुशी के साथ साथ कठिन समय भी नेहा एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं, कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएं, झूठ नहीं बोले, हमेशा सच बोले। यदि कोई अपनी लाइफ में तीसरा दखल देने की सोच रहा है तो उसके बारे में पति को बताएं, जिससे मुसीबतों से बचा जा सकता है। यानी कि विवाह को कोई जो है वो कैद नहीं है बल्कि एक ऐसी साझेदारी है जहां दोनों का समान होता है, समान अधिकार है और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलता है। इसमें मैं से अधिक हम का भाव होता है, लेकिन हम बनाते हुए किसी को मैं खोना भी नहीं चाहिए। यानी जब शादी के लिए वो समय आए तो जब शादी कर रहे हैं तो उसको निभाने के बारे में सोचना चाहिए, ये नहीं कि आज किया और कल हम अलग हो रहे हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए, है ना?
1: जहां तक संभव हो आपको ये देखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि छोटी सी बात पर आपने इसे बहुत बड़ा बना लिया। आपको हर पहलू का, हर नजरिए को देखना जरूरी है और उसे उस सोच के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। और हमारे साथी लिख रहे हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, न कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा हुआ जरतारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है। उसे तहे दिल से निभाना पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य है। दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। और उन्हें तो वो भी कहा, वट पूर्णिमा की पूजा भी आज है जो प्रेम, समर्पण, त्याग और आत्मविश्वास की पवित्र सीख देती है। और वैवाहिक बंधन से जुड़ी हुई ये बहुत ही अच्छी परंपरा है।
0: बिल्कुल, और हमारे साथी एक लिखते हैं कि विवाह केवल दो लोगों का साथ नहीं बल्कि दो दिलों, दो परिवारों और दो जीवन यात्राओं का सुंदर मिलन है। इसे बंधन कहना उचित नहीं क्योंकि सच्चा विवाह प्रेम, विश्वास, सम्मान और आपसी समझ पर टिका होता है। जब पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं, सपनों और परिस्थितियों को समझते हैं तभी उनका रिश्ता मजबूत बनता है। जीवन में मतभेद आ सकते हैं लेकिन संवाद, धैर्य और सहयोग हर कठिनाई को आसान बना देते हैं। विवाह का वास्तविक अर्थ एक दूसरे को बदलना नहीं बल्कि एक दूसरे को स्वीकार करना और हर परिस्थिति में साथ निभाना है। इसलिए विवाह बंधन नहीं बल्कि रिश्तों को समझने, संजो और प्रेम से निभाने की एक खूबसूरत यात्रा है। नेहा,
1: वही हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह का बंधन का मतलब बंधन नहीं है, अपने रिश्ते को समझें। कुछ लोग शादी तो कर लेते हैं पर शादी के बाद नए रिश्तों को अपना नहीं पाते, खासकर कन्या। वो लोग शादी कर लेती हैं ससुराल को और ना ही अपने सास ससुर को जल्दी अपना पाती हैं, समय लगता है। रिश्ते नहीं समझती बल्कि एक बंधन समझती हैं। अब हम इस रिश्ते से बन चुके हैं लेकिन वो सच्चे दिल के रिश्ते हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये नहीं समझते कि अरे अभी हमें रिश्ता निभाना है, ये बंधन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि अपने माता पिता की तरह ही उन्हें माने और उनके साथ रहें। और वो आगे कहते हैं कि ससुराल वालों से भी ये कहना चाहेंगे कि लड़के के ससुराल वाले हों या लड़की के ससुराल वाले, दोनों को ही टाइम दें। लड़के के लिए भी नया होता है दामाद बनना और नए लोगों को माता पिता का दर्जा देना थोड़ा समय लगता है, ये लड़कियों के लिए भी नया होता है। ये नहीं कि आज आप थोप दें कि हमारा रिश्ता जुड़ गया है तो आप हमारे अनुसार, हमारे नियमों के अनुसार रहें, तो इसमें समय लगता है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने दोनों नजरिया पेश किया क्योंकि आमतौर पर लड़कियों के लिए इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो अपना घर बार छोड़कर नए घर में जा रही हैं और उन्हें तो पूरे समय वहां रहना है, जबकि जो नए दामाद बने हैं उन्हें तो कभी कभी ही आना है। तो कभी कभी आने में तो इंसान दो तीन दिन तो फिर भी चला सकता है। सकता है, लेकिन अगर आपको पूरे दिन वहां रहना है तो बहुत सारे नियम कानून अगर नए तुरंत ही दे दिए जाए
0: तो वो
1: एक घबराहट होती है और ऐसा लगता है कि क्या ये मेरा घर नहीं है। वो जो एक मन में स्थिति आती है ना कि भाई ये मेरा घर नहीं है, क्या इतनी सारी चीजें ये सब करना है।
0: और सब लोग देखो उम्मीद भी लगा लेते हैं उस नई लड़की से कि ये तो आएगी तो हर काम कर लेगी, सबकी उम्मीदों पे खरी उतरेगी, तो ऐसा नहीं है। आप लोग मिलके काम करिए तो उस बच्चे को भी अच्छा लगेगा। और हमारे साथी लिखते हैं, विवाह बंधन नए रिश्तों को समझे, आज की युवा पीढ़ी विवाह के पवित्र रिश्ते को जिस सरलता से ले रही है, आज हर माता पिता और परिवार के बड़ों के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है कि नई पीढ़ी को विवाह के पवित्र रिश्ते का महत्व समझाए। विवाह पति पत्नी का रिश्ता अंतिम सांस तक का होता है, पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के मिसाल कायम करनी चाहिए ताकि दोनों में प्रेम बढ़े। और हम सोचते हैं एक गीत सुन लिया जाए नेहा।

0: तो ये जब शादी ब्याह की बातें होती है तो नाच गाने की और सब बातें भी हो जाती हैं, लेकिन असली जो भी होता है मौका तो उसके बाद ही होता है, क्योंकि निभाना तो उसके बाद ही
1: बिल्कुल है। और बहुत खुशी खुशी निभाइए अपने रिश्ते को, है ना। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, ना कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा युवा जरतारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है, उसे तहे दिल से निभा पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य निभाना, मतलब दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। देखो ना, आज की सती सावित्री वाली वट पूर्णिमा की पूजा भी है, ये तुमने मेरे ख्याल से ये वाला संदेश लिया।
0: और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि विवाह को एक समझौता या बोझ मानने के बजाय इसे जीवन को सुंदर बनाने का एक जरिया समझना चाहिए। जब

0: दो लोग एक दूसरे को बिना किसी शर्त के समझने का प्रयास करते हैं तब विवाह बंधन नहीं बल्कि एक खूबसूरत सफर बन जाता है।
1: बिल्कुल। और एक लिखते हैं, विवाह दो आत्माओं का स्वैच्छिक मिलन है, ये कोई बंधन नहीं है, ये दो लोगों के बीच बराबरी और सम्मान का रिश्ता है। एक अच्छा विवाह दोनों पार्टनर्स को व्यक्तिगत रूप से बढ़ने में मदद करता है। वाकई में जब आपकी शादी होती है, आपका पार्टनर है, तो एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करते हैं, और हम कहीं मुसीबत में होते हैं तो वो हमें संभालता है, उसको परेशानी होती है तो हम संभालते हैं। तो कहना चाहिए सुख दुख तो देखो आते ही रहते हैं जीवन में, लेकिन हमें उन्हें कैसे निभाना है वो हमें सीखना चाहिए शादी के बाद। वही बहुत जरूरी होता है कि एक दूसरे को बातों को समझे और कुछ भी ना छुपाएं। आप सच बोले तो हमेशा आपकी बात को वो समझेंगे कि हाँ ये हमेशा सच बोलती है, तो इससे आपका एक विश्वास भरोसा बढ़ेगा आपके ऊपर।
0: इससे एक आपकी जो एक आपका एक व्यक्तित्व है उनके सामने क्लियर सही तरीके से आएगा कि ये जो भी बोलना है चाहे वो बात अच्छी लग रही हो ना लग रही हो या वो बात कैसी भी हो ये सच हमें बता देंगे या ये सच हमें बता देंगे जो भी है दोनों के लिए। तो एक तरह से देखिए हमारे साथियों ने इतने सारे कमेंट्स किए तो सब में उन्होंने यही कहा है कि मिलजुल कर अगर रहें और आपसी सामंजस्य बिताएं, एक दूसरे को वक्त दें और एक दूसरे के साथ जो दूसरा साथी अगर थोड़ा बदल भी रहा है वक्त के साथ तो उसे स्वीकार करें क्योंकि हर व्यक्ति बदलता है।
1: बिल्कुल।
0: तो बस समझ कर चलने से एक दूसरे के साथ ही यही विवाह का एक कह सकते हैं कि मूल मंत्र है।
1: मूल मंत्र है
0: विवाह को अच्छी तरह से, बंधन नहीं है लेकिन साथ चलने का नाम है विवाह जिसमें।
1: अब देखो विवाह जब कर ही लिया है तो पति को क्या पसंद है वो भी समझे, क्योंकि कहते हैं कि अगर दिल जीतना है तो खाना वाना अच्छा सा बनाइए और दिल जीत लीजिए। तो
0: खाना तो बनाएंगे लेकिन गाना कब सुनाएंगे?
1: तो चलो पहले गाना सुना देते।
0: बिल्कुल।

0: तो
1: देखो
0: बनाने का तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि कुछ खिलाया जाए। अच्छा,
1: चलो फिर बना देते हैं दाल की कचौड़ी।
0: हा?
1: इसके लिए मैदा लेंगे और 2 कप मैदा लेंगे और इसमें घी या तेल जो है वो मोयन के लिए डालेंगे, नमक डालेंगे और इसको हम गूथ लेंगे।
0: हा?
1: और जो भरने की सामग्री है उसके लिए उड़द की दाल बिना छिलके वाली 1/2 कप, ये करीब 3-4 घंटे भीगी हुई और इसको पीस के रख लें जब भीग जाए अच्छे से। और बेसन इसमें लगेगा 2 चम्मच, सौंफ दरदरी और 1 चम्मच साबुत धनिया कुटा हुआ, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हींग, 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार आप लीजिए, और तलने के लिए तेल। और बस जो आपने आटा गूंथ कर रखा है मैदा वगैरह उसको एक बार वापस गूंथ लीजिए। और इधर जो आपने भरावन था उसको आपको भीगी हुई उड़द की दाल को बिना पानी डाले दरदरा पीस लीजिए। एक पैन में तेल गरम करिए, इसमें हींग जीरा सौंफ धनिया और बेसन डालकर भूनिए। इसके बाद पिसी हुई दाल डालें और सभी मसाले जो हैं वो मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला, अमचूर डालकर धीमी आंच पर इसको

0: तब तक भूने जब तक मिश्रण पूरी तरह से सूखा और भुरभुरा ना हो जाए। और इसमें आप नमक भी डाल दीजिएगा, नहीं मालूम पड़ा नमक भूल गए,
1: है ना।
0: और जब ये अच्छे से भुन जाए तो आपने जो मैदे का आटा तैयार किया था उसकी लोई बनाइए, दाल को भरिए और कचौड़ी को धीमी धीमी आंच पर आप तल लीजिए, है ना। और इसको खाया जाता है आलू की रसेदार सब्जी के साथ।
1: हम रेसिपी बताएंगे, पर एक बात यह है कि आपने कहा ना कि कहीं नमक डालना भूल गए, अगर भरावन में आप नमक डालना भूल गए तो बिल्कुल भी बुरा मत नहीं, जिसको आईबीपी हो उसे आप खिला सकते हैं बड़ी आसानी से।
0: लेकिन जिसको जिसको फीकी लगेगी वो कहेगा ये क्या बना दिया।
1: तो आलू की सब्जी के लिए उबले हुए आलू चाहिए 4 से 5, हाथ से आप उसको बड़े टुकड़े कर सकते हैं। टमाटर 2 बारीक कटे हुए, हरी मिर्च 2-3 बारीक कटी हुई, अदरक 1 इंच, हींग आधा छोटा चम्मच, मसाले चाहिए 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ और मेथी का दाना आधा छोटा चम्मच, और पाउडर जो मसाले चाहिए वो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, बाकी दोनों 1-1 छोटा चम्मच आप डाल सकते हैं। और नमक आपके स्वाद के अनुसार, अमचूर पाउडर भी इसमें डालिए 1 छोटा चम्मच, और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला तेल आपको 2 बड़े चम्मच लगेंगे। सरसों का तेल अगर डालें तो बहुत अच्छा लगेगा। हरा धनिया बारीक कटा हुआ चाहिए। तो तेल गरम किए कढ़ाई में, हींग जीरा सौंफ और मेथी दाना डालकर उसको तड़काइए, और इसमें कटी हुई हरी मिर्च अदरक और कटे हुए टमाटर डाल दीजिए, और टमाटर थोड़ा नरम होते तक इसको पकाना है। फिर हल्दी धनिया लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दीजिए, और मसालों को तब तक भूनिए जब तक तेल ना छोड़ दे। फिर इसमें आलू डालिए हाथ से फोड़कर, और आलू डालने के बाद थोड़ी देर 1-2 मिनट तक उसको अच्छे से चलाइए, और उसके बाद 2-3 कप पानी डालिए। अंत में आप अमचूर पाउडर डाल दीजिए, और गरम मसाला डालना है तो भी डाल सकते हैं। हरा धनिया डालें, गर्मा गर्म आलू की सब्जी तैयार है। कचौरियां तो बन ही चुकी हैं,
0: बिल्कुल।
1: तो आप दोनों ये सारी चीजें खाइए, और देखिए समय ऐसा बता रहा है कि आप समोसा और जो छोले की जो रेसिपी थी ना, समोसा बना हुआ लाइए, छोले अपने घर में अपने हिसाब से बनाइए, दोनों को मिलाकर खाइए,
0: बिल्कुल
1: जी।
0: तो बस कार्यक्रम से लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और
1: नेहा शर्मा का नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: सेहतनामा।
1: बोली बस्ती स्थित मतदान केंद्र संख्या 38 उत्क्रमित मध्य विद्यालय तथा मतदान केंद्र संख्या 210 गुरु नानक मध्य विद्यालय पर बीएलओ द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में किए जा रहे कार्य एवं कार्ययोजना की समीक्षा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि शिक्षा की कक्षा 7वीं 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। खूंटी अंचल सभागार में आज जन वितरण प्रणाली पीडीएस के सभी डीलरों के साथ बीएसओ खुशबू तिर्की ने बैठक की। इस बैठक में उन्होंने सभी डीलरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक माह 1 से 20 तारीख के बीच शत प्रतिशत राशन वितरण

0: ट्रक की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए चाईबासा सदर अस्पताल रेफर किया गया था। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अगर कुछ नहीं ठीक हो तो एंटीबायोटिक फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। पेट के दर्द के अगेन कई कारण होते हैं। एसिडिटी से भी किसी को पेट में दर्द हो सकता है, पेट में अल्सर हो सकता है, तो पेट में और कई ऑर्गन्स होते हैं, पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में अगर तकलीफ हो जाए, जो अल्कोहल पीते हैं उससे पेट में कभी कभी अल्सर हो सकता है, पेट में पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो उससे पेट में दर्द हो सकता है, पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो मैंने पहले कहा था IBS, उसमें भी पेट में दर्द हो सकता है। तो पेट का दर्द इज अ वेरी वेरी ब्रॉड टॉपिक, उसमें बहुत से कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द थोड़े दिनों तक रहे और चला जाए तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर पेट का दर्द जारी रहे, 2 से 3 दिन तक पेट का दर्द जारी रहे, उसके साथ अगर आपको बुखार आए या वॉमिटिंग हो, लूज मोशन हो या कॉन्स्टिपेशन हो, तब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस का सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम पेट का दर्द होता है। तो डोंट इग्नोर पेट का दर्द, 1-2 दिन तक हो तो घर के नुस्खे कर सकते हैं, मगर अगर कोई अलार्म सिम्टम्स हो जैसे बुखार, वॉमिटिंग, तब डॉक्टर को दिखाइए।
2: जी, तो ये आपने बड़ी जरूरी बात कही है, और उसमें यहाँ बहुत सारे लोग घरेलू इलाज करने लगते हैं। घरेलू इलाज की व्यवस्था तब थी जब मेडिकल साइंस

0: के शिकार होते हैं। क्या एसिडिटी का असर गले पर भी पड़ता है, थ्रोट पर, या आवाज पर भी पड़ता है? हमने सुना है कि आवाज फटने लगती है, खराब होने लगती है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो एसिड ऊपर आके गले को इरिटेट करता है, और गले में हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है। स्पेशली जब हम रात को सो जाएं, नींद में हो, और अगर आपको एसिड रिफ्लक्स हो तो ये गले में आके गले को इरिटेट करता है। कई पेशेंट्स कहते हैं गले में दर्द हो रहा है, किसी किसी की आवाज़ बदल जाती है। तो नॉर्मली ये सारे पेशेंट पहले ENT को जाके देखते हैं, ये गला ख़राब है। ENT जब अपना कैमरा डाल के गले में देखता है तो उनको पता चलता है कि जहाँ से खाने की पाइप शुरू होती है वहाँ पे काफ़ी लाल हो चुका है, विच टेल्स यू कि ये एसिड रिफ्लक्स के कारण है। तो एसिड रिफ्लक्स से गला खराब हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स से गले की आवाज़ जा सकती है, ऐसे लगता है हमको हमेशा कि गले में कुछ अटका हुआ है। तो एसिड रिफ्लक्स कैन कॉज ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन पेशेंट्स।
0: तो मतलब आवाज की दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं और उन्हें अगर एसिडिटी की समस्या है तो फौरन जागृत हो जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। और बात आवाज की चली है तो एक गाना है, मेरी आवाज ही पहचान है, अगर ये गाना आप कहें तो हम सुनवाएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया गाना है, बहुत सुनना चाहिए,
0: सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए, बीच में पेट के अल्सर का भी जिक्र किया था, और पेट के अल्सर की हालांकि अब तो लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत आसान है इलाज, लेकिन जिस मरीज को होता है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है। तो क्या अल्सर का इलाज दवाइयों से भी संभव है या ऑपरेशन करना जरूरी होता है?
1: नहीं, आज के जमाने में तो हम अल्सर का ऑपरेशन करते ही नहीं है, क्योंकि अभी इतनी बढ़िया दवाइयां निकल रही हैं जो अल्सर की ट्रीटमेंट टैबलेट से हो जाती है। पर क्वेश्चन है कि अल्सर क्यों हो रहे हैं? अगर आज के जमाने में अल्सर हो तो हमको ढूंढना चाहिए क्यों होते हैं अल्सर। ज्यादातर अल्सर होते हैं जब हम पेन किलर्स बहुत खा लें, जैसे कभी जोड़ों का दर्द हो गया, हेडेक हो गया, तो लोग पेन के दवाइयां लेते रहते हैं, तो पेन मेडिसिन से अल्सर होने की संभावना बहुत हाई रहती है। स्ट्रेस से भी अल्सर हो सकता है, उसको स्ट्रेस अल्सर्स बोलते हैं। एसिडिटी से भी अल्सर हो सकता है, और रेयरली पेट का अल्सर एक साइन ऑफ कैंसर भी हो सकता है। द रीजन हम अभी आजकल सर्जरीज नहीं कर रहे, क्योंकि जो एसिडिटी की दवाइयां हैं वो अगर आप खाओ तो मोस्ट अल्सर्स 6 से 8 हफ्ते के अंदर मिट जाते हैं। तो पुराने जमाने में ये दवाई नहीं होती थी, तो अल्सर लोगों के चले रहते थे, जबकि फट जाए तो सर्जरी कराओ। आज के जमाने में अल्सर की सर्जरी इज ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ, दवाइयों से 6 से 8 हफ्ते में मोस्ट अल्सर्स ठीक हो जाते हैं।
0: जी जी, तो ये बहुत सही बात आपने बताई है, लेकिन अल्सर की पहचान कैसे करें, मतलब मरीज को कैसे पता चले कि उसे अल्सर है, क्या सिम्टम होते हैं खासतौर से?
1: नॉर्मली अल्सर में आपको पेट में, जहाँ पेट शुरू होता है, छाती के जस्ट नीचे बीच में सेंटर में पेन होगा। कभी कभी ये पेन खाने के बाद हो सकता है, कभी कभी ये पेन खाने से पहले हो सकता है, कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है और वॉमिटिंग में ब्लड भी आ सकता है।
0: जी जी,
1: कभी कभी ये ब्लीडिंग मोशन में भी हो सकती है, काला कलर का अगर मोशन हो गया मतलब पेट में अल्सर की ब्लीडिंग हो रही है, तो ये संभावना हो सकती है। अगर आपको ब्लीडिंग हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए ब्लड की, पेट में दर्द हो जो खाने के बाद या खाने के पहले हो, दैट टेल्स यू कि आपके पेट में अल्सर होने की संभावना काफी हाई है।
0: जी, और एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे श्रोताओं की ओर से भी सवाल है, ये नींद और पेट की बीमारियों का क्या संबंध है, कि बहुत कम नींद लेके आजकल लोग काम करते हैं बहुत टेंशन में, तनाव में, तो उसका क्या असर पेट पर पड़ता है?
1: हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर हम ठीक से सोए ना, अगर हमारी नींद पूरी ना हो तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खराब हो जाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक क्लॉक पे काम करता है, सुबह उठते हैं, मोशन होता है और फिर पेट खाली होता है, फिर पूरे दिन हम खाना खाते हैं, अगले दिन फिर से सोते हैं, हमारी साइकिल रीसेट होती है, अगेन नेक्स्ट डे मोशन होता है। चूंकि स्लीप साइकिल खराब हो या लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, ये स्लीप पैटर्न खराब हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो हम देखते हैं आजकल के युवाओं में, जो लेट नाइट बैठे रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, फाइबर कम खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं स्लीप डिप्राइव्ड पेशेंट को, जब स्लीप पैटर्न ठीक ना हो। अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए, तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप दर्शक देख नहीं रहे कि मेरे हाथ में एक रिंग पहनी हुई है मैंने, ये मेरी स्लीप रिंग है, ये मुझे कहती है कि मैं कितना सोया हूँ कल रात को, ठीक से सोया हूँ कि नहीं। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है तो ये मुझे कहेगी कि मैंने नेक्स्ट डे मुझे इतने बजे सोना है। अगर मैं इसको फॉलो करूँ अपने स्लीप पैटर्न को, तो मेरा पेट भी ठीक रहता है, एसिडिटी भी नहीं होती, वेट भी कंट्रोल में रहता है। अगर आप स्लीप पैटर्न्स को ठीक करें तो अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
0: ओके, तो ये तो बहुत जरूरी बात आपने बताई है, क्योंकि आजकल तो सोने का किसी का समय फिक्स नहीं होता है, तो शिफ्ट ड्यूटी करने वाले लोगों को पेट की समस्या ज्यादा होती है कुछ?
1: बिल्कुल, या एब्सोल्युटली बिल्कुल। हमारे ओपीडी में काफी कंपनी के पेशेंट्स आते हैं जो अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट खत्म करके आते हैं हमारे पास देखने, और मोस्टली सबको इधर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है या एसिडिटी की तकलीफ रहती है, एंड दिस इज रिलेटेड टू द शिफ्ट वर्क। तो आई थिंक शिफ्ट वर्क पेशेंट्स को डेफिनेटली ज्यादा प्रॉब्लम होती है।
0: जी, हमारे एक श्रोता की ओर से सवाल है कि ये गट फ्लोरा क्या होता है?
1: गट फ्लोरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, जो अभी लास्ट एटलीस्ट 10 साल से डिस्कवर हुई है। जो हमारा पेट इंटेस्टाइन्स होता है उसमें कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जो हम सिंपल टर्म्स में, देयर इज गुड बैक्टीरिया एंड देयर इज बैड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया हो अगर ज्यादा हो तो डाइजेशन ईजी हो जाता है, गुड बैक्टीरिया ज्यादा हो तो ओवरऑल बॉडी का फंक्शनिंग बेटर होता है। तो बहुत बार अगर हमको लूज मोशन हो, हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो हमारे गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो पेट के मसले और बढ़ जाते हैं, लूज मोशन ज्यादा होता है, पेट ठीक नहीं लगता, पेट का दर्द होता है। तो इसके लिए प्रोबायोटिक्स डेवलप हुई हैं, गुड बैक्टीरिया जो हम देते हैं इंटेस्टाइन्स को, एंड इट हेल्प्स नॉट ओनली मेक द

गाने के बाद डॉक्टर साहब हमारे श्रोताओं की ओर से एक सवाल है कि फैटी लिवर की समस्या है, इसे योगासन से क्या ठीक कर सकते हैं और एक्सरसाइज से?

0: दवाओं के साथ साथ कर सकते हैं क्या, किस तरह की एक्सरसाइज?
1: बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि अगर पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, दवाई नहीं देनी है, हमने पहले एक्सरसाइज देनी है। एक्सरसाइज इंक्लूड योगा, योगा के साथ एक्सरसाइज जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, एक्सरसाइज जिससे आपको पसीना आए, जिससे आपके कैलोरीज बर्न हो। तो खाली योगा नहीं, योगा के साथ ऐसी एक्सरसाइजेज जिसके आपसे आपका हार्ट रेट बढ़े, एरोबिक एक्सरसाइजेज जो बोलते हैं हम ना, साथ में योगा इज गुड बिकॉज योगा से मसल बनती है। तो अगर मसल बढ़ाओगे तो आपका फैटी लिवर जल्दी जाएगा।
0: जी बिल्कुल। क्या पतले लोगों को भी, जो बहुत दुबले पतले होते हैं, उनको भी फैटी लिवर होता है?
1: हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट उनको जो फैटी लिवर होता है वो और नुकसान डेंजरस होता है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं।
0: जी।
1: पहले हमको लगता था कि जिसका वेट ज्यादा उनको ये बीमारी होती है, पर अगर आप देखा जाओ कंट्रीज लाइक जापान जहाँ पे लोग काफी पतले हैं, पर उधर इंसिडेंस ऑफ फैटी लिवर बहुत ज्यादा है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं। जो हमें लगता है कि हम सब, जैसे इंडियन पॉपुलेशन को ले लो, सारे सॉर्ट ऑफ दुबले पतले, पतले हाथ पतले पैर होते हैं, मगर जो मेन फैट होता है वो बेली में होता है, मेरे जो तोंद जो बोलते हैं सबकी निकल आती है, वो फैट इज अ मोस्ट डेंजरस फैट। तो आपका हाथ पैर पतला होगा, आप पतले लगोगे, मगर अगर आपका स्कैन करेंगे हम, सीटी स्कैन एमआरआई, तो पूरा फैट है वो पेट के अंदर आएगा, एंड दैट इज अ फैट विच इज अ मोस्ट डेंजरस फैट। तो इसको लीन नैश बोलते हैं। ये पेशेंट्स को भी फैटी लिवर के साथ सिरोसिस होने की संभावना ज्यादा होती है।
0: जी जी जी। और पेट के इन्फेक्शन के बारे में बताइए कि क्यों इन्फेक्शन होता है, किसी किसी को बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार लूज मोशन, कई कई बार लूज मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: अगेन लॉट ऑफ इट इज हमारी इम्यूनिटी कैसी है, हम क्या कैसा खाना खा रहे हैं। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ जिनको लूज मोशन दोबारा दोबारा होता है, मेक श्योर आप कुक्ड खाना खाओ, साफ सुथरा खाना खाओ। हाँ। अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो अवॉइड द चटनी, समोसा खा लो या जो भी खाना है, रोटी सब्जी खा लो, पर सलाद मत लो। बट अगर ये इमोशन दोबारा दोबारा होता रहे, दैट कुड मीन अ साइन ऑफ अदर मेडिकल प्रॉब्लम। जैसे आपको पेट के इंटेस्टाइन के अल्सर हो सकते हैं, एक तरह की बीमारी बोलते हैं IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें इंटेस्टाइन में और बड़ी आंतरी में छाले होते हैं, उसे दोबारा दोबारा लूज मोशन हो सकते हैं, कभी ब्लीडिंग हो सकता है। कई फूड एलर्जीज होते हैं जिसके कारण नौजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा सीलैक डिजीज, ग्लूटेन एलर्जी। तो अगर ये सिम्टम्स थोड़े दिन तक रहे तो वी कैन मैनेज, पर अगर ये दोबारा दोबारा होते रहे तो मेक श्योर यू सी योर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और थोड़ा बेसिक चेकअप कराओ कि कोई और बीमारी ना हो, जिसको ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होती है।
0: जी जी। और एक बात डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि जो अमूमन एक्सरसाइज से सेहत अच्छी होती है, लेकिन पेट की एक्सरसाइज खास तौर से जो योगा करते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पेट की बहुत फास्ट फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, पेट को फुलाना पचाना, ये कहाँ तक कारगर है, सही है या गलत है?
1: हाँ, इसमें भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत रिगरस स्टमक की एक्सरसाइज करना भी अच्छी नहीं है। पेट की जो हमारी लाइनिंग है उसमें दो बड़े मसल्स होते हैं, वो मसल्स को अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच करो तो आगे जाके वो वीक हो जाते हैं, मसल के बीच का जोड़ निकल जाता है और हर्निया होने के रिस्क होते हैं, पेट बाहर आ जाता है ज्यादा उल्टा। तो यू हैव टू बी केयरफुल, जो भी एक्सरसाइज करो ध्यान से करो, अंडर सुपरविजन करो, सही तरीके से करो। अगर उसको ठीक से नहीं करोगे, ज्यादा जोर लगाओगे पेट पे, तो हर्निया होने का रिस्क ज्यादा होता है।
0: जी, तो मतलब पेट की एक्सरसाइज से पाचन क्रिया पर फर्क पड़ता है?
1: बिल्कुल पड़ सकता है।
0: जी। और डाइजेशन सही रखने के लिए कुछ है ऐसी कारगर दवा, कोई इलाज है लोगों के? क्योंकि हर कोई कहता है कि मुझे तो खाना पचता ही नहीं है, क्या करें?
1: हाँ, तो ये जो खाना पचता नहीं है इसके लिए पूछना पड़ता है पेशेंट को, क्यों नहीं पच रहा है? हाँ। बोले हमको खाना पचता ही नहीं है, पर उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्जियत होती है। तो मेरा मानना होता है कि खाना आपको बहुत अच्छा पच रहा है, पूरा खाना आपने डाइजेस्ट कर लिया, आपको तो कॉन्स्टिपेशन हो गई है, जिसको नहीं पचे मतलब उसको लूज मोशन हो रहे हैं। तो पूछना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है, पचना नहीं पचना इज अ डिफरेंट sort of पेशेंट का जो आउटलुक होता है वो अलग होता है, पच नहीं रहा है। तो मोस्ट टाइम्स ये पेशेंट का मतलब होता है या तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है या उनको एसिडिटी हो रही है। तो उसको बेसिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करो, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर बढ़ाओ खाने में, पानी बढ़ाओ। मोस्ट टाइम्स हमने देखा है डाइट में स्पेशली यंग किड्स पानी बहुत कम पीते हैं, तो पानी नहीं पीते हैं कॉन्स्टिपेशन होती है, पानी नहीं पियो तो और तकलीफें होती हैं, डिहाइड्रेशन होता है, फिर से कॉन्स्टिपेशन होती है, फिर खाना नहीं खाते, तो इट्स अ विशियस साइकिल। तो आई थिंक बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन, वाटर इनटेक, गुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि जो आपकी प्लेट है ना खाने की वो कलरफुल होनी चाहिए।
0: ओके।
1: मतलब पेट में आपके दो तरह की भाजियां हो जाए, एक रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए, रोटी हो जाए, वो कोई भी गेहूं की ले लो, जवार की ले लो, थोड़ा सा राइस लो, दाल ले लो, एंड इफ यू नॉन वेजिटेरियन एक छोटा सा मीट का पोर्शन हो जाए, बट योर प्लेट शुड बी कलरफुल।
0: लेकिन

0: अभी एक चलन चला है कि या तो एक एक अन्न खाओ, चावल खाओ या रोटी खाओ। तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि सिर्फ कढ़ी चावल खा लिया, सिर्फ दाल चावल, तो इससे बचना चाहिए मेरे
1: बिल्कुल,
0: ख्याल।
1: इसमें तो खाली कार्बोहाइड्रेट खाया आपने, प्रोटीन तो बहुत मिनिमम हो गया।
0: तो बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर हम आगे और बढ़ते हैं।
1: एक और गाना जो मुझे काफी पसंद है, बहुत पुरानी पिक्चर है, रॉकी पिक्चर का, क्या यही प्यार है। ये गाना वाज क्वाइट फेमस
0: जी
1: मेरे स्कूल के टाइम पे
0: जी
1: और
0: क्या
1: काफी
0: बात
1: सुना
0: है
1: है हमने।
0: जी।

0: डॉक्टर साहब, बीच में एसिडिटी की बात कर रहे थे जो बहुत बड़ी समस्या है, वहां पर एक बात रह गई थी, वो ये कि कहीं एसिडिटी की वजह से, एसिड रिफ्लक्स की वजह से बीमारी को थोड़ी असावधानी हो, या तो कहीं कैंसर का रूप भी लेती है वो?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है और आप दवाई नहीं ले रहे ठीक से, या आपने इसका इलाज ना किया हो, तो जो एसिड होता है वो तेजाब है बेसिकली, ऊपर आके खाने की पाइप को जलाते रहता है, जला जला के फिर आगे एक अल्सर बनाता है, और यही अल्सर आगे जाके कैंसर भी बन सकता है, जिसमें खाने की पाइप का कैंसर हो जाता है और खाने की पाइप छोटी हो जाती है और अटकने लगता है। इसके लिए मैंने पहले कहा था अगर खाना अटक रहा हो तो एंडोस्कोपी करना बहुत जरूरी है। अनकंट्रोल्ड एसिड रिफ्लक्स कैन लीड टू कैंसर्स इन द फूड पाइप।
0: जी, और ये जो एसिडिटी की समस्या, एसिड रिफ्लक्स, इसके लिए एक तो आपने एंडोस्कोपी बताया जांच, और क्या क्या जांच की पद्धति है, क्योंकि अभी तो टेक्निक बहुत एडवांस हो चुकी है, हमारे श्रोताओं को जानकारी?
1: हाँ, तो बेसिक एंडोस्कोपी तो सेम रही है, एंडोस्कोपी टेक्निक काफी सेम ही है।
2: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
1: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
0: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं, ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
0: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में CIET NCERT के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
2: जी।
0: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
1: गांव ढाणी, कुतुबपुर, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
0: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
1: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया, जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
0: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक और समकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया
2: जी,
0: अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
1: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का। लिखते हैं,
1: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षाप्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और आवासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
1: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
1: इसका उत्तर है साथियों, भीम बैठका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था, बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
1: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी
0: जी।

0: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
1: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहाँ चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
0: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
0: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा?
0: हाँ।
1: ले आया लकड़ी? इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया? अम्मा अम्मा अम्मा, देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा। अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूँ पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
1: काम चल जाता है, काम चल जाता है, हाँ नहीं तो। अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा,
1: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए, कुछ समझता तो है ना। हाँ।
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। न लकड़ी की कमी, न फलकंद की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
1: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ हाँ। या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो। हाँ,
0: अरे
1: हाँ।
0: अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सुन, अब चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
1: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं है? कोई बहाना बना देंगे ठीक।
0: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
1: इधर बातें कर रहे हो दोनों?
0: कुछ नहीं,
1: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी।
0: नहीं नहीं नहीं,
1: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, अपने सामने कटवाऊंगी पेड़। अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
2: हाँ अम्मा, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं अम्मा की।
1: जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं, मैंने तो सोच लिया है मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: चुप्पा, क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
0: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
2: अम्मा मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
2: अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो।

0: पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा माँ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और वो रोने लगा। अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
1: चुप्पा चुप्पा।
2: सजा बेटे सजा, डर मत। अरे वो तो सपना था। सजा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ।
0: सोचा
2: बेटा सोचा सोचा, शाबाश। अच्छा बेटा है ना, चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया। इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।
1: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
2: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा जा सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, पुतवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ के हाथों से काटोगे।
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है वो। चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी।
1: चलो
2: चलो, चलो।

0: अरे मुंह क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस।
3: मैं तो गहना लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, गहना गरिया लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी, मैं तो साड़ी लूंगी।
0: अरे बाप रे, तेरे इस जंगल में शेर भी है क्या?
4: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा वगैरह होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
0: फिर भी
1: अम्मा तू भी चले वापस?
0: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
1: अम्मा क्या सोच रही है?
0: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
4: ये जामुन?
0: हाँ
4: चलो इसी को काट देते हैं।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
4: हाँ।
1: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
0: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी? तो फिर फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
4: अरे रे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
0: अरे बात तो तुम्हारी सच है।
1: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना उनमें से एक को काट देते हैं।
0: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवार?
4: ये
0: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर। तो
4: फूल तो हैं, फल भी आएंगे, अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
0: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
4: अच्छा तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है?
0: क्यों?
4: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
1: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
0: हाँ हाँ चलो चलो, चलो। आगे चलकर देखते हैं। चलो
4: देखो ये पेड़
0: देख लो।
1: अम्मा अम्मा वो देखो ओक का पेड़ और वही

0: बबूल भी है। चलो अम्मा काटे,
1: चलो इधर से निकल कर आओ।
0: अच्छा
2: आई,
1: क्या हुआ चुप्पा?
2: क्या हुआ?
0: अम्मा अम्मा कांटा चुप गया। आई,
1: अरे दिखा तो।
0: अम्मा लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
3: ठीक है ठीक है, नहीं काटेंगे। हाँ।
0: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे, है ना?
3: हाँ बेटा, ये देखो ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और तार।
1: हाँ।
3: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
1: और नुकसान भी क्या है?
3: बहुत नुकसान है। हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
4: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो।
5: ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल?
3: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
0: क्यों? देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
5: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है। उसे तो काटो कम से कम।
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं अम्मा, उसे छोड़ दो। देखो अम्मा, इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
3: हाँ।
0: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा?
3: हाँ बिल्कुल,
5: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है। बतवा, रहने दे इसको भी।
3: अच्छा।
5: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है, तू रहने दे इस पेड़ को तो।
3: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
0: अम्मा जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
5: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। लो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
3: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे?
5: क्या सारे पेड़ों को बख्श दिया?
3: और क्या?
5: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
3: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद हैं, जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
5: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
4: अरे चुप।
3: क्या हुआ?
5: अरे चुप्पा, पेड़ अब नहीं कटेगा, तो यही बात थी ना? तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है,
3: लेकिन अम्मा
0: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है, अब तू ही बता किसे काटे।
5: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
3: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
5: फिर कैसे?
3: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
5: चल। बता।
3: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुलें आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली, फल, सब्जी, महुआ, कटहल बेचेंगे। हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
0: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
3: बोलना।
5: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का। चल।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के 5 पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
3: उधर देखो,

0: तुम्हें क्या दिखाई देता है?
1: किसी ने कहा, गुरुजी मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
2: किसी ने कहा,
3: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
0: हाँ?
2: किसी ने कहा,
4: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
2: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
5: गुरुजी मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
2: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
0: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
6: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार। उमंग।

0: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है, प्रादेशिक मुख्य समाचार 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। इनमें आरोग्य सेतु के दूसरे चरण, आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुत क्लिनिक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय और भारत के डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य मानक शामिल हैं। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा, महेशपुर और पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में 30 जून से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम शुरू होगा। बूथ लेवल अधिकारी, राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट, वॉलंटियर एवं बीएलओ सुपरवाइजर को पूरी पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न कराने का प्रशिक्षण दिया गया है। लोहरदगा में उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने आपूर्ति विभाग की समीक्षा करते हुए सभी मार्केटिंग अफसरों को 30 जून तक शत प्रतिशत खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि कोई भी पात्र लाभुक राशन से वंचित नहीं रहे। बैठक के अंत में सहकारिता सप्ताह के तहत उपायुक्त ने अधिकारियों और कर्मियों को सहकारिता की शपथ दिलाई। गिरिडीह जिले में आज पुलिस ने एक कार्यक्रम आयोजित कर 211 लोगों को उनका मोबाइल वापस लौटा दिया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि आपका मोबाइल फिर से आपका कार्यक्रम के तहत खोया हुआ मोबाइल पुलिस ने आम आदमी को वापस की है। उन्होंने बताया कि इसके पहले भी 400 से अधिक मोबाइल आम आदमी को लौटाया गया है। पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यह यात्रा 28 अगस्त को संपन्न होगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में गर्जन के साथ बारिश, आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम के मिजाज को देखते हुए राज्य के कई हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

0: इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 114.1 MHz पर। पेश है कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाजों में फिल्म वंश से ये गीत। अब आइए कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म पत्थर के फूल से।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

साधना सरगम और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म प्रेम कैदी से ये गीत। अब आइए हम आपको कार्यक्रम के आखिर में सुनाते हैं लता मंगेशकर की और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में फिल्म 100 डेज से ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती बारी।

कार्यक्रम खेती बाड़ी सुनने वाले सभी ग्रामीण भाई बहन के मीनाक्षी बहन के तने से जोहार प्रणाम राम राम और सभी गोटे के आपने कार्यक्रम में स्वागत है और हमारा उम्मीद है कि सभी

0: तो कई किसान बिचड़ा भी कर देले होथिन। और कई किसान ऐसन भी हथिन जे अपन खेत में का साग सब्जी लगावे के है ओकर बारे में विचार करत हथिन, का दलहनी फसल लगावे के है एकर बारे में भी ध्यान दिए हथिन। और देखा ई अभी के जे महीना है वो खेती बाड़ी और बागवानी खातिर बहुत ही बेस हो है। इस समय में देखा हम इनकर किसान सब इन खरीफ फसल के साथ साथ देखा सब्जियन के भी खेती भी बेस तरी से करो हथिन। सब्जियन में हो गलो कि बैगन हो गलो, मिर्चाय हो गलो, अगेत फूलगोभी के रोपाई हो गलो, ये महीना में करल जा सको है। और एक में बड़ी ध्यान दिए के जरूरी है, मतलब देखा कि बड़ी बेस तरी से अगर हम इन खेती बाड़ी करिए तो ये महीना में बड़ी बेस तरी से लाभ ले सकोगे। और एक साथ साथ ये महीना में कई गो बात के ध्यान भी दिए के जरूरी है, जैसे कि ज्यादा पानी होए से जल निकासी के व्यवस्था भी करे के जरूरी है। काहे कि देखा कि ज्यादा बारिश हो जाए से फसल के कातरी बचवल जा सको है, ओकर बारे में भी ध्यान देना जरूरी है। और इकर अलावे भी देखा कि ज्यादा बेस हम इनके फसल के पोषक तत्व स्तरी से मिले ले ओकर लिए भी देखा कि हम इनके जल के प्रबंधन करे के चाहिए। एकर अलावे भी देखा कि जैसे कि नाइट्रोजन खाद देते समय देखा कि बारिश के भी ध्यान दिए के जरूरी हुए है, खेत में नमी के ध्यान दिए के जरूरी हुए है। तो देखा ये सब बात पर आगे भी हम इन बातचीत करबे, पहले सुनो ही कुछ जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: तो देखा अभी हम इन सुने थलिए जरूरी संदेश, और एकर पहले हम इन बतिया थलिए कि खेत में देखा कि एक महीना में का जरूरी काम हुआ है वो करे के बारे में। और देखा कि एकर में है कि हम इन अभी खरीफ फसल के बुआई के और ओकर देखभाल खातिर हम इन के ध्यान दिए के जरूरी है। जैसे कि अभी हो गलो कि मक्का हो गलो, बाजरा हो गलो, अरहर हो गलो, इस सब के बुआई भी इस समय कर दिए के जरूरी हुआ है। और इकरा हम इन बीज के उपचारित करके लगाइए तो हम इनके बेसी फायदा होता है, मुनाफा होता है। और इकर अलावे दलहन और तिलहन में देखा कि मूंग हो गलो, उड़द हो गलो, मूंगफली हो गलो, देखा इस सब के भी अभी लगावे के समय बड़ी अनुकूल है। देखा एकर में भी ध्यान दिए के जरूरी है। और साथ में देखा कि सब्जियन के खेती में के बारे में बात करल जाए तो फूल देखा अगेत फूलगोभी जो हो है ओकरा, और बैगन हो गलो, मरचाई के रोपाई भी इस समय करल जा सको है, भिंडी हो गलो, तोरी हो गलो, खीरा, लौकी, इस सब के भी बुआई इस समय करल जा सको है। एकर अलावे देखा कि खरीफ प्याज के भी नर्सरी इस समय करल जा सको है। और साथ में देखा कि अगर मानसून देखा कि के हालचाल देखते हुए देखा कि हम इनके फसल के में देखा कि नमी बना के रखे के चाहिए, साथ में बढ़िया बेस तरी से मेड़बंदी भी कर दिए के चाहिए। और बारिश होए के स्थिति में खेत में जल के भराव न होए के दिए के चाहिए, पानी के भराव और न होए दे के चाहिए। ओकर निकासी के खातिर देखा कि नाली पहले से तय ओकरा बना दिए के चाहिए, जिक्र से हो का है ने कि पानी के निकासी आसानी से हो जाते हैं। और वो हम इनके तालाब में या देखा कि अगर हम इन डोभा जगह जगह पर निर्माण कर लिए ओकर में अगर संग्रहित करके रख दिए तो हम इनके जखन पानी ना पड़ो है, पानी खेत सूखे लगो है, तखन ओकरा पटवे में काम आ सको है। तो और एकर अलावे देखा कि जे नाइट्रोजन खास हो है, यूरिया जेकरा कहल जा है, ओकरा मौसम देख करके ही ओकर छिड़काव करे के चाहिए। ये साथ में देखा कि बारिश अगर ज्यादा होए लगो है तो काफी ज्यादा देखा कि खर पतवार घास फूस हो गलो ये सब उग जा हथिन, तो ओकरा समय

समय पर निराई गुड़ाई भी करते रहे के चाही। और साथ में देखा कि इस समय में देखा कि अभी के जो महीना है वो बारिश में और नमी के वजह से देखा कि पौधा सबन जल्दी लग जाते। इस समय देखा पपीता आम लीची जैसन फलदार पेड़ के लगावे के या रोपाई करे के चाही। एक पहले से देखा हम इन बड़ी किसान सबन अपन पौधा रोपण खातिर रोपे खातिर गड्ढा तैयार करे रहो तो गड्ढा में देखा कि पौधा लगा के ओकरा में हमेशा नमी बना के रखे के चाही ताकि जो पौधा है वो जल्दी से लग सके। आगो भी हम इन बातचीत में बनल रहे। पहले देखा कि हम इन के कार्यक्रम के शुरुआत भी हो गए हैं और हम इनके श्रोता सभी ने उम्मीद कर ले होते हैं कि गीत सुने ले मिलते तो सुनल जाए।

0: तो देखा अभी हम इन सुने थलिए गीत और हमारा उम्मीद है कि हम इनके श्रोता सब इनके गीत जरूर बेस लगले होते और अब देखा जानकारी के दने भी बढ़े के चाही और देखा कि अभी ये देखा कि जो समैया है वो देखा कि फलदार वृक्ष लगावे के जैसे कि आम हो गलो अमरूद हो गलो पपीता हो गलो नींबू हो गलो लीची हो गलो और ये सब पौधा लगावे के एकदम समय अनुकूल हो और एकरा लगावे ले जे गड्ढा तैयार करल गेल है ओकरा पौधा रोपे का समय देखा कि दीमक से बचाव खातिर भी दवा के प्रयोग करे के चाही और साथ में देखा कि अभी जे बारिश के समय आ गले है या आ रहे है तो ओकर में देखा कि खेत में जल भराव से देखा कि फफूंद लगे के समस्या बनल रहो है एहे ले हम इनके चाही कि जल जमाव के समस्या न होए के दिए के चाही पानी के निकासी खातिर नाली बना दिए के चाही और देखा कि मूंग और दलहनी फसल में भुआ पिल्लू जैसन कैगो कीट लग जा है ओकर से बचाव खातिर भी समय समय से कीटनाशक के छिड़काव करे के चाही और एक अलावे है कि अभी देखा कि अदरक और हल्दी के भी बुआई के सही समय हो नमी वाला खेत में देखा बेस किस्म के रोपाई कर दिए के चाही और देखा कि कंद वाला प्याज लगावे के भी एकदम सही समय हो बेस समय हो एकर अलावे भी देखा कि आज हम इन देश कर किसान सबिन भी देखा कि ये हम इनके किसान भाई सबिन काफी जागरूक हो गए दिन है अपन आमदनी बढ़ावे खातिर देखा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले थतिन जिक्र में है कि महिला सबिन भी अब देखा कि अपन घर के आमदनी बढ़ावे खातिर आगे आ रहल हथिन आज हम इनकर बीच में ऐसने एक महिला किसान हथिन वो आगे बढ़े खातिर अपन मुर्गी का पालन के काम करके अपन आमदनी बढ़ा रहल हथिन तो ये महिला किसान हथिन सुनैना देवी भी हथिन और ये तो सुनो ही उनकर अनुभव उनकर ही जवानी देखा कि वो मुर्गी पालन का काम करके कैसे अपन आमदनी बढ़ा रहल हथिन तो सुनल जाए
1: श्रोता आज हमारे बीच है सफल महिला मुर्गी पालक जो काफी समय से बेहतरीन तरीके से नाम मुर्गी पालन का काम कर रही हैं। तो आपका नाम
2: सुनैना देवी।
1: सुनैना देवी तो सुनैना देवी जी आपको मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: और आप बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं?
2: जी मेरा नाम सुनैना देवी हुआ ग्राम कंचनपुर पोस्ट लुकुम थाना कटकमशांडी जिला हजारीबाग राज्य झारखंड।
1: तो आप यहाँ के कंचनपुर के रहने वाले हैं?
2: जी हाँ
1: कंचनपुर।
2: जी जी मेरे ग्राम का नाम कंचनपुर हुआ।
1: तो आप मुझे ये बताइए कि आप ये जो मुर्गी पालन का काम कर रहे हैं वो कब से कर रहे हैं?
2: जी हम ये मुर्गी पालन का काम लगभग 2017 से ही कर रहे हैं।
1: 17 से कर रही हैं। और ये बताइए कि जैसे इसके इस काम को करने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली?
2: जी एक JSLPS का समूह बना हुआ था उसी में हम लोग मीटिंग में अटेंड किए थे तो उसी में एक दीदी बंगाल के आई हुई थी वो मुर्गी के बारे में विशेष जानकारी बताई और वही जानकारी पा करके फिर हम अपना बिजनेस को स्टार्ट किए।
1: तो फिर बताइए मुझे विस्तार से बताइए कि कैसे क्या।
2: हाँ पहले वो हमें बताएं कि यदि किसी का साइड बना हुआ है

0: तो ठीक है, पालिए, और नहीं बना हुआ है तो पहले सैड को
1: तो
0: बनाइए।
1: उसमें क्या प्रशिक्षण दिया गया महिलाओं का समूह बना करके?
0: हाँ, समूह बना करके प्रशिक्षण दिया गया।
1: हाँ अच्छा, तो उसमें सारा चीज प्रशिक्षण में सीखे हैं आप लोग,
0: हाँ जी,
1: और उसके बाद ये अपना मुर्गी पालन का कार्य
0: हाँ
1: शुरू किए।
0: जी।
1: तो क्या आपने जब शुरुआत की थी तो कितने चूजे ला करके आपने शुरू किया था?
0: पहले तो 300 से शुरू किए, 300 के बाद फिर 500, 500 से फिर थोड़ा डिफरेंस लगा तो फिर 1,000, 700, 700 फिर से फिर 900, 900 से फिर 1,000, 1,000 से फिर 1,200, नहीं, इसी तरह
1: मतलब इसी
0: संख्या
1: तरह से संख्या
0: बढ़ाते
1: बढ़ाते
0: गए।
1: गए।
0: हाँ,
1: तो
0: बढ़ाते
1: इसमें
0: गए।
1: मतलब मुर्गी पालन के लिए आपको जब प्रशिक्षण मिला तो ये बताया गया होगा कि नर मादा दोनों को ही मिला करके लाए जब
0: जी
1: मुर्गी पालन किया जाता
0: जी
1: है,
0: जी
1: तो उसको जब आपको इसमें मुर्गी पालन के लिए प्रशिक्षण लिए उसे, और इसके लिए तो आपने इसके लिए शेड का भी निर्माण किया होगा?
0: हाँ, नहीं, पहले तो मेरे घर में छोटा सा साइड था
1: हाँ,
0: निर्माण, और उसके बाद जब इसे हमें कुछ बेनिफिट समझ में आया तो बैंक से लोन लेकर के और हमने दूसरा साइड को तैयार किए, और तैयार करके और फिर हम मुर्गी को और संख्या में बढ़ा के
1: तो
0: पालने की
1: मुर्गी
0: शुरुआत
1: पालन,
0: किए।
1: जैसे कि आप मुर्गी पालन कर रहे हैं तो इसका शेड का जो निर्माण किया आप, वो कितना बाई कितना किए
0: कितना बाय कितना किए
1: और
0: यानी
1: कितना
0: समझिए।
1: क्या हवादार होना
0: हाँ
1: चाहिए
0: हाँ
1: कि क्या?
0: 30 फीट चौड़ाई और लंबाई आप जितना भी अपना रख लीजिए यानी जमीन के अनुसार, और चौड़ाई इसका 30 फीट ही होना चाहिए, खिड़की का ऊंचाई इसका 6 फीट होना चाहिए, और पूरा जालीदार और चारों तरफ से यानी हवा अच्छा से प्रवेश हो सके,
1: हवा का
0: गैस,
1: आवागमन
0: हाँ
1: अच्छा से
0: हाँ
1: हो।
0: गैस बने ना, और लंबाई आपको जितना रखने का इच्छा है उतना, और खिड़की का ऊंचाई 6 फीट, बाकी फिर अपना दीवार का ऊंचाई आप अपना अनुसार जैसा आपका लोन का माध्यम है वो अनुसार आप बड़ा भी बना सकते हैं, नहीं तो फिर छोटा
1: छोटा
0: ही
1: में
0: बना
1: भी
0: सकते हैं
1: मतलब
0: जी।
1: छोटा
0: हाँ,
1: स्तर पे
0: यानी
1: भी
0: दस
1: आप?
0: फीट 10-12 फीट 15 फीट तक ऊंचाई दीवार का आप रख सकते हैं, और खिड़की का ऊंचाई 6 फीट
1: तो ये तो हो गया कि उसके रहने
0: साइड।
1: शेड शेड का
0: हाँ,
1: निर्माण करें,
0: निर्माण।
1: तो मुझे ये बताइए कि उनका जो आहार होता है वो कैसा होता है, कितना नियमित पोषक तत्व तो से भरपूर होता है,
0: हाँ,
1: क्या क्या क्या
0: हाँ,
1: देते हैं आप?
0: वो मक्का, सोया, बाजरा, गेहूं और बहुत सारे ये मेडिसिन, बहुत सारे विटामिन
1: विटामिन भी देते
0: विटामिन डाल
1: हैं, मिनरल
0: करके
1: वगैरह भी
0: जी।
1: देते
0: हाँ
1: हैं साथ में देते हैं।
0: हाँ
1: तो जो आप जो सोया बाजरा ये सब बोल रहे हैं कि उसको कूट करके मिक्सी में जो
0: नहीं
1: बना
0: मिक्सी
1: हुआ
0: में
1: आता है?
0: नहीं, वो फैक्ट्री में दाना बनता है, हम
1: हाँ
0: लोग डायरेक्ट दाना खरीदते हैं
1: अच्छा
0: मार्केट
1: दाना
0: से।
1: मार्केट
0: हाँ
1: तो उसको ला करके फिर उसको देते हैं, तो कितनी
0: हाँ
1: मात्रा होती है उसकी
0: कितनी मात्रा होती है देने का
1: चूजे?
0: मात्रा,
1: हाँ
0: जैसे कि आपके मुर्गी पे डिफरेंस है, जैसे आपके चूजा है 1,000, तो 1,000 में आपका प्रतिदिन का 50 केजी दाना वो खाएगा, और जैसे 2,000 का है तो प्रतिदिन आपका 1 क्विंटल दाना
1: मतलब
0: खाएगा।
1: जितना है वो
0: हाँ,
1: उसके अनुसार
0: उसके अनुसार
1: मतलब
0: हाँ
1: 1,000 चूजा है तो
0: हाँ तो
1: उसका
0: 1 बोरा हानि 50 केजी का पर डे का, और 2,000 है तो 1 क्विंटल पर डे का।
1: तो उनको पानी वगैरह भी देते हैं?
0: हाँ, पानी भी देते हैं, पानी भी देते हैं, जब छोटा मुर्गी रहता है तो छोटा बर्तन में यानी 3 लीटर का बर्तन आता है छोटा, और बड़ा बर्तन उसका आता है 8 लीटर का।
1: तो आपका जो चूजा आप लिए तो वो कितने दिनों में तैयार हो जाता है आपका?
0: हाँ, ये मेरा 36 दिन में 2 केजी बॉडी वेट, और ये 30 दिन में आपका 1.5 केजी बॉडी वेट, और यदि कोई तरह का उसमें बीमारी वगैरह आ गया तो फिर थोड़ा वजन घट भी जाता है,
1: अच्छा,
0: और कुछ नहीं आया तो 36 दिन में
1: मतलब
0: 2 केजी उसका बॉडी वेट आता है।
1: अच्छा, तो मतलब उसका बीमारी उसमें लगती है तो आप लोग क्या करते हैं?
0: मेडिसिन डालते हैं, मेडिसिन से जब नहीं आराम होता है तो फिर इंजेक्शन डॉक्टर आके
1: डॉक्टर को
0: लगवाते
1: बुलाते
0: हैं।
1: हैं और
0: हाँ,
1: उनसे टीकाकरण भी
0: टीकाकरण करवाते हैं
1: कई
0: जी।
1: बार ऐसा होता है कि कई बीमारी भी चलती है तो आप लोग बुला करके टीकाकरण करवाते हैं उससे बचाव के लिए?
0: हाँ।
1: अच्छा, तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप जब मुर्गी पालन कर रहे हैं तो कई बार अचानक से आपकी गर्मी भी उनको अधिक लगती है, तो उससे भी
0: उनको
1: बचाव के लिए
0: हाँ
1: कुछ करते हैं क्या?
0: हाँ, पंखा पंखा फॉर्म में पंखा लगा रहता है, और पानी हम लोग परेशर जैसे कृषि में हम लोग जो डब्बा में दवाई मिलाकर डालते हैं पेड़ पौधा में, उसी टाइप से ये मुर्गी के ऊपर भी हम लोग पानी का छिड़काव करते हैं। मुर्गी को यानी बिल्कुल ठंडा रखना है भिंगा करके, ताकि उसमें ज्यादा गर्मी प्रवेश ना करे, नहीं तो फिर ज्यादा गर्मी प्रवेश करने के कारण मुर्गी में मोर्टिलिटी बढ़ जाती है।
1: अच्छा, उसका
0: हाँ, उसका देखरेख के लिए पानी का छिड़काव भी करते हैं और पंखा उसमें चलवाते हैं,
1: मतलब गर्मी ना लगे,
0: गर्मी ना लगे इसके
1: और
0: लिए।
1: इसीलिए वो शेड को भी आप लोग हवादार
0: बनाते हैं।
1: जैसे अब बरसात आने वाला है तो उस तरह में शेड का निर्माण की पानी आराम से उसकी निकासी हो जाए वैसा भी रहता है।
0: हाँ हाँ, वो वैट वाला जो प्लास्टिक आता है वो हम लोग खिड़की के आधा आधा साइड में लगा देते हैं ताकि बारिश कोई भी साइड से आए तो ये प्लास्टिक से पानी छलक के नीचे गिर जाए, अंदर फोम के अंदर घुसे पानी नहीं, नहीं तो फिर फोम के अंदर घुसेगा तो पूरा फोम गीला हो जाएगा और गीला होने के कारण फिर मुर्गी में आ जाएगा सर्दी, और जब सर्दी
1: तो रोग लगने का,
0: हाँ तो फिर वो बीमारी आने का संभावना है।
1: तो जब बीमारी आती है तो उससे अपने से भी कुछ इलाज करते हैं क्या उससे?
0: नहीं, अपने हाँ अपने से घरेलू उपचार वही कि सर्दी आया तो हम लोग लहसुन जो होता है लहसुन वगैरह घर से मिक्सी में पीस के वो पानी में देते हैं
1: मिला करके
0: और कुछ वैसा बीमारी आता है तो हल्दी गुड़ नहीं तो फिर ये जो पान का पत्ता है वो पीस करके पानी में देते हैं।
1: तो आप मुर्गी पालन करते हैं तो क्या ये मांस उत्पादन के लिए करते हैं कि ये अंडा भी उत्पादन लेते हैं?
0: नहीं, अंडा नहीं,
1: अंडा नहीं लेते, मांस उत्पादन के लिए।
0: जी हम लोग बस पालते हैं और मार्केट में बेच देते हैं।
1: मार्केट में बेच देते हैं तो क्या व्यापारी भी आकर के आपके यहाँ से ले जाते हैं?
0: व्यापारी ही सारा लेके जाता है।
1: अच्छा,
0: खुदरा इतना बिकता बिकेगा ही नहीं, सारा व्यापारी लेके जाता है,
1: सारा व्यापारी लेके चला जाता है।
0: हाँ,
1: तो उससे काफी अच्छी आमदनी हो जाती है। आपको बाजार जान ले जाने की
0: आवश्यकता? नहीं, बाजार जाने की आवश्यकता नहीं है,
1: मतलब घर पे ही आराम से।
0: हाँ हाँ हाँ, बस मुर्गी सिर्फ सही होना चाहिए, बीमार ना होना चाहिए, सही से तैयार रहेगा तो आमदनी अच्छा हो जाएगा, और बीमार रहेगा काफी मुर्गी मर जाएगा तो इसमें नुकसान भी होता है।
1: अच्छा, हाँ। तो फिर जैसे आप मुर्गी पालन किए तो अगर मान लीजिए कि वो अंडा देने का तो उसके लिए और समय रुकना पड़ता है क्या?
0: नहीं, अंडा देने के लिए वो दूसरा मुर्गी रहता है।
1: अच्छा, अंडा देने के लिए
0: दूसरा हाँ, और ये मांस उत्पादन के लिए ये दूसरा मुर्गी रहता है।
1: तो ये मांस उत्पादन के लिए करते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या सावधानी बरतने की जरूरत होती है मुर्गी पालन के लिए?
0: इसके अलावा और सावधानी बरतने की यही है कि मुर्गी पालन जब हम कर रहे हैं तो अगल बगल ज्यादा घर ना रहना चाहिए, और हम लोग खुला जगह में फॉर्म बनाए, साइड बनाए खुला जगह में, तो बहुत ही बेटर ढंग से तैयार होगी मुर्गी। और हवा होना चाहिए चारों तरफ, पेड़ पौधा होना चाहिए
1: जिससे वहाँ पे कम वातावरण, थोड़ा
0: ठंडक होना चाहिए गर्मी के लिए, और ठंड के लिए उसमें कोयला वगैरह हम लोग जलाते हैं, हीटर वगैरह डाल,
1: हीटर वगैरह
0: हाँ, हीटर तो अब तो हीटर उतना नहीं लगता है, लेकिन ये कोयला तो हम लोग को जलाना पड़ता है ठंड के
1: आसपास के ये में तो।
0: हाँ,
1: तो सुनैना देवी जी, क्या आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा संदेश देना चाहेंगे कि आपको क्या लाभ होता है, क्या कोई भी काम करना छोटा या बड़ा नहीं होता है क्या?
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं,
1: तो बताया हमारे श्रोताओं को क्या?
0: हाँ, जैसे कि देखिए, हम पहले कुछ नॉलेज नहीं था, अब ये पाल के हमें बहुत अच्छा या लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, तो हम आगे जानकारी भी लोगों को देने के लिए इच्छुक हैं कि लोग यदि घर पे बैठे हैं, बेरोजगार हैं, या फिर पढ़े लिखे हैं या नहीं भी पढ़े लिखे हैं, तो भी इस रोजगार को कर सकते हैं, अपना सेट बना के, प्रशिक्षण लेके और अपना ये मुर्गी पालन का काम शुरू कर सकते हैं, इससे वो भी अपना आमदनी का स्रोत बना सकते हैं।
1: महिलाओं को भी इसमें आगे आना
0: चाहिए, महिला पुरुष, जी हाँ, महिला हो या पुरुष, इस काम के लिए दोनों कर सकते हैं।
1: हाँ, तो मतलब करेंगे तो
0: अच्छी आमदनी होगी। हाँ, और उनका अपना जो जरूरत है वो भी पूरा हो जाएगा, वो गरीब या फिर पढ़े लिखे हैं तो हार मान के घर पे बैठेंगे नहीं कि हम पढ़े लिखे हैं तो हमें कुछ काम नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला, जॉब नहीं मिला, वो इस बिजनेस को करके आगे बढ़ सकते हैं। बस यही है कि थोड़ा उनको मेहनत करना पड़ेगा, तो बिना मेहनत का तो कुछ होता नहीं है।
1: होता है, बिल्कुल एकदम सही। तो सुनैना देवी जी, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। थैंक यू।
1: तो देखा, अभी हम इन सुने थलिए जानकारी, और जानकारी हले मुर्गी पालन देखा आय के बेहतर, रोजगार के बेहतर जरिया है, और जानकारी दे थल थिन सुनैना देवी, और उनकर जानकारी से हमरा उम्मीद है कि हम इनके किसान भाई सबन जरूर लाभ उठे थे। और देखा, समय समय पर देखा कि किसान भाई सबन लाभ खातिर पहुंचावे खातिर देखा सरकार सब कह योजना चलावे रहो हथिन,
2: उकर से किसान भाई सब इनके काफी लाभ भी मिलो है। वैसने में एगो योजना है देखा कि

किसान क्रेडिट कार्ड ई देखा कि बड़ी उपयोगी देखा कि किसान भाई सबन के योजना है उनकर काफी लाभ भी मिलो है और जेकर मुख्य उद्देश्य देखा कि एकर में खेती खातिर पशुपालन खातिर मछली पालन खातिर सस्ता ब्याज दर में देखा कि पर्याप्त मात्रा में उनकर समय पर ऋण मिल जाए है और एकर से कभी बड़ी लाभ भी मिलो है। तो और देखा कि एकर उपयोग देखा कि करके खेती बाड़ी हम इनके किसान भाई सबन आसानी से कर सको थी और जब देखा फसल के कटाई हो जाए है और ओकरा बिक्री के बाद आसानी से वो लोन के पर भुगतान कर सको थी। तो यह जानकारी के साथ अब कार्यक्रम से हमरा कार्यक्रम खेती बाड़ी से हमरा मीनाक्षी के अनुमति देते नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बारी, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के खेलगांव में शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1042 नव चयनित इंटर और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इनमें 274 इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य, 768 स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य तथा विज्ञान विषय के सहायक आचार्य शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मिलकर राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम करें। झारखंड में कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समन पर पूर्व वित्त मंत्री और लोहरदगा के विधायक रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव रांची स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री और उनके बेटे ने ईडी को पत्र लिखकर पूछताछ के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। नीट यूजी परीक्षा लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। बोकारो जिले में उपायुक्त अजय नाथ झा ने जिला समन्वय समिति, जिला स्तरीय समीक्षा समिति तथा आरसेटी की समीक्षा बैठक में कहा कि उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा जिले के आर्थिक विकास में बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी बैंकों को अपने प्रदर्शन में तत्काल सुधार लाने का निर्देश दिया। साहिबगंज वन प्रमंडल द्वारा जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मोती झरना में विशेष स्वच्छता अभियान संचालित किया गया। वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग ने के नेतृत्व में आयोजित इस अभियान के दौरान वन विभाग के अधिकारियों और कर्मियों तथा वन सुरक्षा समिति के सदस्यों ने मोती झरना परिसर की व्यापक साफ सफाई की और लगभग 1 टन कचरे का वैज्ञानिक ढंग से निष्पादन किया गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:02 हुए हैं। पेश है महिलाओं के लिए कार्यक्रम अंगना।

कार्यक्रम अंगना सुनने वाली सभी बहनों को ममता का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, हमें पूरा विश्वास है कि आप सब अपना एवं अपने पूरे परिवार का ख्याल बहुत ही बढ़िया तरीके से रख रही होंगी। तो आज हम सब साथ मिलकर कुछ ऐसा माहौल बनाएं जिससे हमारा मन खुश रहे, हम स्वस्थ रहें। तो आइए सबसे पहले सुनवाते हैं ये आपको प्यारा सा गीत।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
4: आगे सैलरी? नहीं झुमके
5: ना, पहले बचत,
4: पहले झुमके।
5: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
4: लेकिन झुमकों का क्या,
5: जाते हो कि
4: हाँ?
5: लगाओ इंजेक्शन।
6: आरबीआई कहता है,
7: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
8: बहनों, अब आइए सुनते हैं एक वार्ता, बच्चों और माताओं का पोषण आहार। जानकारी दे रही हैं देविका वर्मा।
9: नाइटिंगेल ने कहा था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य का रहस्य लोगों के घरों में ही है। स्वास्थ्य एवं विकास, पोषण तथा अन्य पर्यावरण संबंधी स्थितियों जैसे आवास, जल आपूर्ति, सफाई आदि पर निर्भर करता है। बच्चों के स्वास्थ्य का सबसे अधिक क्षति कुपोषण से, विशेष करके प्रोटीन, कैलोरी, माली न्यूट्रिशन से होती है। यह बात संपूर्ण विश्व में होने वाले अध्ययनों द्वारा सिद्ध की जा चुकी है। विटामिन ए डी की कमी से बच्चों के शरीर पर अपूर्णीय क्षति होती है। उनमें अंधेपन के लक्षण धीरे धीरे आने लगते हैं। ऐसी स्थिति बनी रहती है तो एक दिन उन्हें पूर्ण अंधापन आ जाता है। अतः बचपन से ही कुपोषण से बचाव की उचित तथा उचित पोषण प्रदान करने की व्यवस्था जरूरी है। अधिकांश भारतीय परिवारों के आकार विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में बड़े होते हैं। यदि गर्भावस्था में तथा उसके बाद महिलाओं को समुचित पोषण मिलता है और उनके शिशु की देखरेख का प्रबंध हो सकता है, जैसा कि अक्सर पश्चिमी देशों में होता है, तो वे भी राष्ट्रहित के उत्पादनों में हिस्सा बटा सकती हैं तथा पुरुषों की बराबरी में राष्ट्र के विकास में निजी भूमिका निभा सकती हैं। यदि आहार के नमूने में, बनाने की शैली में, चुनाव के तरीकों में थोड़ा सा परिवर्तन लाया जाए तो कम खर्च में पौष्टिक आहार बच्चों व माताओं को मिल सकता है। जैसे सब्जी की जगह प्यूरी बनाकर, जैसे गाजर, पत्तेदार सब्जी को स्वादिष्ट तरीकों से बनाकर हेल्दी फूड बन सकता है। संयमी, धैर्यवान तथा कृत संकल्प होने की जरूरत है। महिलाओं को इस संबंध में पोषण संबंधी शिक्षा देना जरूरी है। मातृ शिशु पोषण का तात्पर्य 1000 दिनों की अवधि के दौरान

और बच्चों के पोषण से है, जो गर्भधारण से लेकर बच्चे के दूसरे जन्म दिन तक होता है। जन्म के बाद प्रारंभिक कुछ दिनों तक बच्चों को माता से गाढ़ा पीले रंग का दूध प्राप्त होता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। इसमें प्रोटीन एवं विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है, जो बच्चों को प्रारंभिक कुछ माहों तक संक्रमण से बचाता है और पाचक एंजाइम को भी उत्तेजित करता है। पूरे जीवन में भोजन महत्वपूर्ण है, खासकर शिशु के जन्म के प्रथम वर्ष में। प्रथम वर्ष में ही उसके शरीर एवं स्वास्थ्य की नींव का निर्माण होता है। पोषक आवश्यकताएं प्रति यूनिट शरीर भाग पर इसलिए अधिक होती है क्योंकि इस अवधि में उसकी वृद्धि तीव्रता से होती है। जन्म पश्चात लगभग 9 माह तक वह तेजी से वसा का संचय करता है, उसके बाद मात्रा कम हो जाती है। उत्तम पोषित शिशु में पेशी ऊतक मजबूत होते हैं। बच्चों के जन्म के बाद 6 माह की उम्र तक उसे माँ के दूध से आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। माता का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम प्राकृतिक आहार है, जिसमें सभी पौष्टिक तत्वों का उचित अनुपात में समावेश रहता है। यह दूध बच्चे के मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए उपयोगी होता है। माता का दूध जो बच्चों के पाचन के योग्य होता है। बहनों, माँ का दूध पूर्णतः जीवाणु रहित होता है और इसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में बच्चे की आवश्यकता के अनुसार होते हैं। बहनों, दुग्धपान कराने से बच्चों और माता दोनों को मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। कभी कभी पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं के मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, जैसे वे सोचती हैं कि हमने खट्टा खा लिया तो बेबी को छींके तो नहीं आएगी, हमने तीखा खा लिया तो मेरा बेबी बीमार तो नहीं हो जाएगा। माँ का दूध शिशु के लिए सर्वथा उपयुक्त होता है, पर किसी कारणवश ये नहीं मिल पाए तो अन्य प्रकार का दूध यानी गाय का दूध, कुछ डिब्बा बंद दूध दिया जा सकता है। कुछ अवस्था में माता का दूध बच्चे को नहीं देना चाहिए। यदि माता को कोई दीर्घकालीन बीमारी यथा क्षय रोग, हृदय रोग आदि हो। शिशु में प्रोटीन की कमी माता के दूध छूटने पर भी होती है। यदि उस समय गाय का दूध उसे पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो यह कमी पूरी हो जाती है। गाय के दूध में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है जो बच्चे के लिए आवश्यक है। शरीर की वृद्धि के लिए तथा हड्डियों एवं दांतों के स्वास्थ्य के लिए कैल्शियम एवं फास्फोरस की अधिक आवश्यकता होती है। माता का दूध एवं गाय का दूध बच्चे को पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे तो इन खनिजों की पूर्ति होती रहती है। 4 से 6 माह के बच्चों को दाल का पानी, अंडे की जर्दी तथा सब्जियों का सूप दिया जा सकता है, जिससे बच्चे के विकास के लिए आवश्यक प्रोटीन तथा विटामिन होते हैं। गेहूं का दलिया, चावल एवं मूंग दाल की खिचड़ी, सूजी की खीर, कॉर्नफ्लेक्स आदि 7 से 8 माह के बच्चे को देना चाहिए। इस उम्र में बच्चे की पाचन संस्थान भोजन पचाने के लिए भी तैयार हो जाता है। इसी प्रकार बहनों, 1 से 2 साल के बच्चों के लिए दूध, अंडे, मछली, दाल, अनाज से बने खाने, चावल, खिचड़ी, दलिया इत्यादि, फल और हरे पत्तेदार सब्जियां शामिल करें। साथ ही घी, तेल आवश्यकता अनुसार दे सकती हैं। बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रोटीन, विटामिन, खनिज, आयरन आवश्यक है। कहते हैं एक स्वस्थ महिला ही स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है तथा वे अपने बच्चों का उचित रूप से पालन पोषण एवं विकास कर सकती है। गर्भावस्था से ही माता एवं शिशु के स्वास्थ्य का ध्यान रखने से दोनों का जीवन स्वस्थ एवं खुशहाल रहेगा। एक महिला जो माँ बनने वाली है, उन्हें इस दौरान पौष्टिक एवं संतुलित आहार मिलना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। कुपोषण एवं अपर्याप्त पोषण दोनों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए माँ बनने वाली महिला के आहार में दूध, पनीर, मांस, मछली, अंडा, दाल, सूखे मेवे आदि देने चाहिए। भ्रूण माता के रक्त से कैल्शियम

0: पोषित कर अपनी आवश्यकता पूरी करता है, परंतु माता के शरीर में इसकी कमी होने से माता की अस्थियां एवं दांत कमजोर हो सकते हैं। इसलिए कैल्शियम युक्त भोजन पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए तथा कैल्शियम के शोषण के लिए विटामिन डी भी आवश्यक है। जब कोई महिला अपने बच्चों को स्तनपान करवा रही होती है तो इस दौरान उन्हें तरल पदार्थ का खूब सेवन करना चाहिए, जिससे शरीर हाइड्रेट रहता है, यथा संभव नूडल्स, केक, पेस्ट्री, चॉकलेट, मिठाई, ठंडे पेय का सेवन कम करना चाहिए। डिब्बा बंद भोजन, परिष्कृत मांस और सॉसेस कम चुनें, खूब पानी पिए। गर्भावस्था के दौरान आयोडीन, आयरन, फॉलेट, कैल्शियम, जिंक जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी वाले आहार से माताओं में एनीमिया की शिकायत हो सकती है। इनकी कमी से बच्चों में मृत जन्म, कम वजन, कमजोरी और विकास में देरी भी हो सकती है। पर्याप्त मात्रा में अनाज खाएं, चावल, पास्ता, ब्रेड से ऊर्जा और बी समूह के विटामिन प्राप्त होते हैं। साबुत अंकुरित अनाज विटामिन युक्त होते हैं। दिन भर पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करना चाहिए, खूब पानी पीना चाहिए, हल्के फुल्के व्यायाम करके सक्रिय बने रहना, पर्याप्त नींद लेना, पूरी प्रक्रिया के दौरान धैर्य बनाकर रखना अच्छा है। यदि पोषण आहार संबंधी जानकारी महिलाओं के पास है तो वे अपने स्वयं को तथा बच्चे को मामूली सी हरी पत्ती वाली सब्जियों से, पालक के थोड़े से जूस से, सस्ते फलों से ही पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकती हैं और स्वयं को, अपने बच्चों तथा पूरे परिवार को स्वस्थ तथा रोग मुक्त रख सकती हैं। इसके लिए पोषण संबंधी शिक्षा का प्रसार किया जाए, इसमें स्थान विशेष के लोगों की भोजन शैली, भोजन संबंधी आदतें, परंपराओं का ध्यान रखना जरूरी है। हेल्थ सेंटर या मातृ शिशु कल्याण केंद्र जैसे संगठन इस संबंध में जागरूकता बढ़ा रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यक्रमों में महिलाएं एक स्थान पर एकत्रित होती हैं। यह एक अच्छा अवसर है जहां महिलाओं को पोषण शिक्षा एवं इनके व्यवहारिक प्रदर्शन जैसे तरह तरह के फूड स्टॉल लगाकर जानकारी दी जाती है। अनचाही परंपराएं जो आहार से संबद्ध है तथा प्रत्येक समुदाय में गहरी जड़ जमाए हैं, उनसे मुक्ति महिलाओं को शिक्षित करके मिल सकती है।
1: बहनों, अभी आप सुन रही थी देविका वर्मा से जानकारी, बच्चों और माताओं का पोषण आहार। अब आइए, इतनी अच्छी जानकारी के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

बहनों, परिवार में सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए सभी सदस्यों का सहयोग और सम्मान सबसे जरूरी होता है। इसके लिए एक दूसरे से खुलकर बात करें, अपनी बातें प्रेम और शांति से कहें और दूसरे की बात ध्यान से सुनें।

सभी को सम्मान दे। उम्र चाहे छोटी हो या बड़ी, सभी की भावनाओं और विचारों का आदर करें। साथ समय बिताएं, रोज कुछ समय साथ बैठकर भोजन करें, बातचीत करें या कोई खेल खेलें। बहनों, अच्छी बातों की प्रशंसा होनी ही चाहिए। परिवार के सदस्यों के अच्छे कार्यों की सराहना जरूर करें। गुस्से पर नियंत्रण रखें, मतभेद होने पर भी शांतिपूर्वक समाधान निकालने की कोशिश करें। एक दूसरे की मदद करें, घर के कामों और कठिन समय में सहयोग दें। क्षमा करना सीखें, छोटी छोटी बातों को मन में ना रखें और गलती होने पर उन्हें माफ कर दें। सकारात्मक आदतें अपनाएं, घर में स्वच्छता, अनुशासन, प्रार्थना, योग या ध्यान जैसी अच्छी आदतों को बढ़ावा दें। बहनों, जिस परिवार में प्रेम, विश्वास, सम्मान, सहयोग और संवाद होता है, वहां स्वाभाविक रूप से सकारात्मक वातावरण बनता है और सभी सदस्य अधिक संतुष्ट रहते हैं। बहनों, इन्हीं बातों के साथ कार्यक्रम अंगना से ममता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

इसी गाने के साथ फिल्म संगीत समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब आप थोड़ी देर में सुनेंगे प्रादेशिक समाचार एवं जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ
1: एडमिशन कराने?
3: खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1042 सहायक आचार्यों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। कहा, सभी मिलकर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का करे कार्य। राज्य के कथित शराब घोटाला मामले में ईडी के समन पर पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव नहीं हुए उपस्थित। दोनों ने जवाब के लिए मांगा अतिरिक्त समय। झारखंड उच्च न्यायालय में भूमि सर्वेक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज हुई सुनवाई। विभागीय सचिव को 15 जुलाई तक शपथ पत्र दाखिल करने का दिया निर्देश। पलामू में अज्ञात बीमारी से पिछले 10 दिनों में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। मेडिकल टीम जांच में जुटी। मृतकों के विसरा को जांच के लिए रखा सुरक्षित। और मौसम विभाग ने राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। गर्जन के साथ बारिश और आकाशीय बिजली का जताया पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के खेलगांव में शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1042 नवचयनित इंटर और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इनमें 274 इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य, 768 स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य तथा विज्ञान विषय के सहायक आचार्य शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मिलकर राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम करें।
1: जहां हमारे सरकारी स्कूलों पर उंगलियां उठाई जाती थी, वहीं पर मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय उसके पैरेलल हम लोगों ने खड़ा किया। और आज जहां 9,000-10,000 सीटें हैं, 40,000 बच्चों का एप्लीकेशन आता है उसमें फॉर्म भरने के लिए। सरकार की चीजों पर, सरकार की व्यवस्था पर हमें गर्व होना चाहिए और उसको कितना बेहतर कर सके इस पर हमें काम करना।
0: झारखंड में कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समन पर पूर्व वित्त मंत्री और लोहरदगा के विधायक रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव रांची स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए। पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव को भी 30 जून को पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री और उनके बेटे ने ईडी को पत्र लिखकर पूछताछ के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। गौरतलब है कि इस मामले में जांच एजेंसी ने इससे पहले 23 अगस्त 2023 को रोहित उरांव के रांची आवास स्थित 32 ठिकानों पर छापेमारी की थी। राज्य में चल रहे भूमि सर्वेक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई की गई। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि वे स्वयं 15 जुलाई तक शपथ पत्र दाखिल करें। अदालत ने यह भी कहा कि यदि पिछली सुनवाई के बाद इस मामले में कोई नई प्रगति हुई है तो उसकी विस्तृत जानकारी भी शपथ पत्र में उपलब्ध कराई जाए। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को निर्धारित की गई है।

0: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज धनबाद में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का जायजा लिया। उन्होंने यहां निर्देश दिया है कि किसी भी अयोग्य व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होना चाहिए। फर्जी दस्तावेज के जरिए नाम जुड़वाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि रिफ्यूज टू साइन कैटेगरी में वैसे मतदाता भी आते हैं जो दूसरे देश में जाकर वहां की नागरिकता हासिल कर चुके हैं, लेकिन भारत की मतदाता सूची से अपना नाम नहीं हटवाया है। विशेष पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे।
1: कल से आपका एनुमेरेशन फॉर्म फिल करने वाला कार्यक्रम यहाँ से शुरू होगा। यहाँ पहले इंडिया में था भारत नागरिक, यहाँ से दूसरा देश जाके वहाँ नागरिकता प्राप्त कर लिया, उनका नाम भी आएगा नहीं। बाहर का देश से इंडिया में आया, उनका अभी तक यहाँ नागरिकता प्राप्त नहीं हुआ, उनका नाम भी नहीं आएगा। एसआर प्रोसेस है केवल यहाँ का भारत का नागरिक के लिए।
0: जामताड़ा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज विभिन्न शिक्षण संस्थानों में जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई और छात्र छात्राओं के द्वारा रैली निकाली गई। इस दौरान भागवत झा आजाद इंटर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर श्यामली फौजदार ने कहा कि छात्र छात्राओं द्वारा अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।
2: हमारे महाविद्यालय पर SIR को लेकर जागरूकता कार्यशाला एवं रैली निकाली गई। इस दौरान महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को मतदाता सूची, छात्र छात्राओं को नागरिकता के बारे में बताया गया। इस दौरान उन्हें अपने तथा अपने आस पड़ोस के लोगों को SIR को लेकर जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया।
0: नीट यूजी परीक्षा लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा जांच किए जा रहे 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। CBI ने अब तक इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और परीक्षा से पहले नीट यूजी प्रश्न पत्रों को प्राप्त करने और प्रसारित करने में शामिल एक कथित नेटवर्क की जाँच कर रही है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नक्सल संगठनों की ओर से मनाए जा रहे दमन विरोधी सप्ताह के मद्देनजर दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ कर दिया गया है। रेलवे सुरक्षा बल RPF ने ऑपरेशन ट्रैक हॉक के तहत 25 जून से चक्रधरपुर और मनोहरपुर रेलवे स्टेशनों के बीच नक्सल प्रभावित रेलखंड में ड्रोन के माध्यम से विशेष निगरानी एवं क्षेत्र प्रभुत्व अभियान शुरू किया है। आज जारी बयान में रेलवे प्रशासन ने बताया है कि विशेष सुरक्षा अभियान का उद्देश्य हर स्तर पर रक्षा सुनिश्चित करना है। संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और निगरानी व्यवस्था को तकनीकी रूप से और मजबूत बनाया गया है। पलामू जिले के पड़वा प्रखंड के सिक्का गांव में अज्ञात बीमारी से आज तड़के 5वीं मौत हुई। इसके साथ ही पिछले 10 दिनों में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो चुकी है। रिम्स में इलाजरत कुछ अन्य लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़ित परिवार को इलाज के लिए 4 बार रेस्क्यू किया गया। वहीं मेदनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉक्टर आरके रंजन ने बताया कि सभी मृतकों के विसरा को जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। धनबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने भूली बाईपास रोड स्थित एक मैरिज हॉल को अवैध निर्माण घोषित करते हुए इसे तोड़ने का आदेश जारी किया है। नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने जानकारी दी कि निगम ने भवन मालिक को 15 दिनों के भीतर खुद निर्माण हटाने का निर्देश दिया है।
3: हम लोगों ने उनको 15 दिन का टाइम दिया हुआ है कि वो स्वतः उसको डिमोलिश कर लें, और अगर 15 दिन में स्वतः डिमोलिश नहीं करते हैं और जो एक दूसरा है कि 10 लाख रुपए का फाइन जो लगा है अगर वो नहीं करते हैं उसके बाद हम लोग उसमें विधि सम्मत कार्रवाई करें। बाकी अदर अपील कर सकते हैं, वो कोर्ट्स में जाके अपील कर सकते हैं, पर ये उनको प्रॉपर 2

0: महीने का प्रॉपर टाइम दिया गया था, उसके बाद ये कार्रवाई हुई।
1: पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यह यात्रा 28 अगस्त को संपन्न होगी। धनबाद के जगन्नाथ मंदिर में आज धार्मिक अनुष्ठान शुरू हुए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा की स्नान यात्रा पवित्र जल से संपन्न होने के साथ ही वे 15 दिनों के लिए अज्ञातवास में चले जाएंगे। इसके बाद 16 जुलाई को धार्मिक विधि विधान के साथ भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी।
2: सुबह 6 बजे से पूजा के बाद भगवान ने रत्न सिंहासन छोड़कर अपना स्नान वन में 108 घड़ा जल से सुगंध से स्नान करेंगे। 5 बजे के बाद अज्ञातवास जाएंगे। 15 तारीख को नेत्र उत्सव बना जाएगा और 16 तारीख को रथ यात्रा होगा।
1: मौसम विज्ञान केंद्र ने राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में गर्जन के साथ बारिश और आकाशीय बिजली का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1042 सहायक आचार्यों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। कहा, सभी मिलकर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का करें कार्य। राज्य के कथित शराब घोटाला मामले में ईडी के समन पर पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव नहीं हुए उपस्थित। दोनों ने जवाब के लिए मांगा अतिरिक्त समय। झारखंड उच्च न्यायालय में भूमि सर्वेक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज हुई सुनवाई। विभागीय सचिव को 15 जुलाई तक शपथ पत्र दाखिल करने का दिया निर्देश। पलामू में अज्ञात बीमारी से पिछले 10 दिनों में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। मेडिकल टीम जांच में जुटी। मृतकों के विसरा को जांच के लिए रखा सुरक्षित। और मौसम विभाग ने राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। गर्जन के साथ बारिश और आकाशीय बिजली का जताया पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ
1: एडमिशन कराने,
3: खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
6: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गिरिडीह संवाददाता।
1: गिरिडीह जिले के सभी 2403 बूथों पर पल्स पोलियो की दवा बच्चों को पिलाई गई। डीसी राम निवास यादव, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार और सिविल सर्जन डॉक्टर बच्चा सिंह ने बजटो गांव में बच्चों को दो बूंद दवा पिलाकर इस अभियान की शुरुआत की। सिविल सर्जन ने बताया कि 29 एवं 30 जून को घर घर जाकर स्वास्थ्य कर्मी 4,91,000 से अधिक बच्चों को पोलियो मुक्त भारत के लिए दवा पिलाएंगे।
2: एनआईटी के साथ गिरिडीह जिले में दिनांक 28 से 30 तारीख तक पल्स पोलियो की दवाइयाँ पिलाई जाएगी। 28 तारीख को जो हमारे बूथ हैं गिरिडीह जिले के, टोटल जो बूथ है 2,337 बूथ, उस पर बच्चों को जो 0 से 5 साल के बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन, जो अभी BOPV बाइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन की दो बूंद दवाइयाँ दी जाएगी। 29 और 30 तारीख एक कार्यक्रम डोर टू डोर किया जाएगा।
1: भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं

0: का लाभ पाकर गरीब आत्मनिर्भर बन रहे हैं। भंडारीडी की रजिया इस्लाम और उनके पति इस्लाम कहते हैं कि सरकार ने उन्हें गैस, अनाज, आवास सब कुछ दिया है।
1: मेरा नाम इस्लाम है, फ्री चावल दे रहा है, गैस भी दे रहा है, सरकार से बहुत खुश है।
2: मेरा नाम रजिया इस्लाम, पहले काठी जलाते थे, अब गैस मिल गया तो गैस से आराम हो गया, खाना बना के दे देते हैं टिफिन जल्दी जल्दी करके, धुआं से धक्का से बचते हैं, बीमारी से बचते हैं। घर दिया है, गैस दिया है, तो सरकार को धन्यवाद देते हैं।
0: गिरिडीह जिले के पीरटाल प्रखंड की महिलाएं मोटे अनाज से मिठाई बनाकर बेच रही है। इस काम से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है और सरकार के प्रति आभार प्रकट कर रही है।
3: मैं यहाँ की एक किसान हूँ और हम लोगों का जो मुख्य फसल हुआ करता था गांव का, वो धान उगाते थे चावल के लिए, लेकिन अभी कुछ दिनों से हमारे यहाँ मड़ुआ का बहुत अधिक उत्पादन हो रहा था और उस उत्पादन के बाद हम लोग क्या करते थे, मड़ुआ को डायरेक्ट बाजार में ले जाके सेल कर दिया करते थे। लेकिन अभी हम लोगों के यहाँ एक रुद्रा फाउंडेशन नाबार्ड के द्वारा बहुत बढ़िया प्रशिक्षण दिया जा रहा है मड़ुआ से अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थों को बनाने का, जैसे कि मड़ुआ की बर्फी, मड़ुआ के लड्डू, मड़ुआ का केक, निमकी, इसी तरह बाजरे से भी अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थों का ट्रेनिंग दिया जा रहा है बनाने का, तो हमारे कौशल का भी विकास हो रहा है।
0: गिरिडीह जिले के किसान अशोक वर्मा का कहना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उन्हें प्रारंभ से मिलते रहा है, इस राशि से उन्हें खेती करने में आसानी होती है।
4: अशोक वर्मा, पंचायत पांडेडी प्रखंड गिरिडीह, जिला गिरिडीह का एक किसान हूँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मुझे साल भर में 2-2 हजार रुपया करके शुरुआत से ही मिलते आ रहे हैं, इक्कीसवां किस्त भी मिला है और इस पैसे से हम किसान वर्ग खेती कार्य के लिए खाद, बीज व अन्य उपकरण का में खर्च करते हैं और इससे हम सभी को लाभ भी मिला है।
0: गिरिडीह जिले में पुलिस प्रशासन और आम लोगों की तत्परता से मुहर्रम का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने शांति समिति की थाना से लेकर जिला स्तर तक की बैठकें की थी। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह।
5: अभी आप सुन रहे थे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाजों में फिल्म आग से खेलेंगे, इससे ये गीत। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाजों में, फिल्म का नाम है आग और शोला।

इसी यानी के साथ कार्यक्रम झनकार समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पीछे प्रोग्राम ऑल टाइम हिट्स।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश है कार्यक्रम आपकी चाहत। आपकी चाहत कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को ममता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम के आरंभ में हमने खत लिया है। भागलपुर से हैं गणेश पासवान, सुधा पासवान, पूजा पासवान, विकास पासवान, नितिन पासवान, मनोज पासवान। गांव सुपाई साई से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, प्रकाश, रेशमा कुमारी, निशा, प्रीति और देवेंद्र जी। तो दोस्तों, वक्त हो चला है कि हम आपकी फरमाइशों को पूरा करें। तो आपने सुनना चाहा है आबरू फिल्म से गीत, तो आइए हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत।

अब आइए सुनाते हैं कुमार सानू और पूर्णिमा की आवाज में फिल्म आग से ये गीत। फरमाइश भेजी है हमें पोचरा सामुदायिक भवन से महेश राम, सरिता देवी, फुलवासी देवी, कुमारी वर्षा, पिंटू कुमार एवं उनका समस्त परिवार। झुमरी तिलैया से उमेश चंद्र पांडे, शंभु चंद्र, अनिल चंद्र, साकेत, शुभम, नर्मदा, अक्षता, प्रियंका, शम्मी, अपराजिता एवं उनका समस्त परिवार।

दोस्तों, इस गाने की फरमाइश की थी चेपा का लबड़का गांव से श्री बाबूलाल ठाकुर, श्रीमती सबिया ठाकुर, तिलेश्वरी, श्री भरत ठाकुर, मंजू संतोष ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर, प्रभात कुमार ठाकुर, जितेश आदर्श, अनुराधा रुक्मणी, प्रियंका, दीपिका। शहर मोरी गेट से हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। अब आइए सुनवाते हैं आपको फिल्म डांसर से ये गीत, जिसकी फरमाइश की है हजारीबाग पतरातु से बेसिल खलको, मधु ऋतु रचना, श्वेता पल्लवी, रोहित प्रवीण, नदीम, मनीषा एवं उनका समस्त परिवार।

दोस्तों, आप सबकी फरमाइश पर आइए हम आपको सुनाते हैं कुमार सानू की आवाज में ये गीत। आपने फरमाइश की है मेन रोड बड़का गांव से दिनेश मालाकार, नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास मालाकार, रंजना मालाकार, गुड़िया रानी, गोलू बाबू, भोला बाबू एवं उनके मम्मी पापा और ढेर सारे मित्रगण। साथ ही आप है चेपा कला से श्री बाबूलाल ठाकुर, श्रीमती सभ्या ठाकुर, दिलेश्वरी, श्री भरत ठाकुर, मंजू संतोष ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर, प्रभात कुमार ठाकुर, अनुराधा, रुक्मणी और प्रियंका।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब आप कुछ ही पलों में सुनेंगे समाचार संध्या और न्यूज़ 8 हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। यह बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक

0: 26 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डीआरडीओ को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन डीएफपी 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हो। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है, जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से 0 उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्या शरण की रिपोर्ट।
4: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले चार वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से

0: 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
1: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
0: वहीं 30,00,000 रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
2: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधे उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर 94.54 रुपए पर बंद हुआ।
2: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: साथियों, आज हम जिस फनकार के फन का जिक्र कर रहे हैं वो वर्सिटाइल आर्टिस्ट हैं, इसलिए हमारे लिए ये मुश्किल है कि हम उनकी किस खूबी का जिक्र करें और किसका ना करें। हम सोचते हैं क्यों ना उनसे आपकी सीधी बात करा दें।
1: नमस्कार जी, मेरी तारीफ मैं अपने मुंह से क्या करूं।
0: सुदेश भोसले आज के हमारे फनकार हैं, और अब आप समझ ही गए होंगे हमारी मुश्किल क्या है। बहरहाल, हम पहले सुनते हैं उनका गाया गाना, फिर सुनेंगे उनके बारे में उन्हीं की जबानी।

0: बेटे ना, स्टेप बाय स्टेप बारी बारी मालूम हुआ, जो भी आज मैं दिखता हूँ या जो भी करता हूँ बिल्कुल उसके विरुद्ध था। बिल्कुल बचपन में मैं स्कूल भी जाता तो मालूम भी नहीं पड़ता मैं स्कूल में क्लास में बैठा हूँ या नहीं, क्वाइट एकदम, किसी से बातचीत नहीं। फिर अब जो मैं आवाज़ें बनाता हूँ, जैसे खासतौर पे अमित जी की आवाज़, मैं बचपन में लता जी के गाने बिना वॉइस चेंज किए गा सकता था, मतलब वॉइस में आवाज़ मेरी लड़की जैसी थी। तो लोग मेरे फ्रेंड्स वगैरह काफ़ी चिढ़ाते थे कि भाई बिल्कुल वॉइस आवाज़ तुम्हारी एकदम लड़की की तरह। लेकिन एक बात ये थी कि मम्मी जो थी गायिका थी सुमन भोसले, मेरी नानी क्लासिकल सिंगर थी दुर्गाबाई शिरोडकर, आगरा घराने की क्लास। तो म्यूज़िक का माहौल तो बचपन से था, लेकिन कभी माता पिता ने ये नहीं सोचा था कि मैं भी गायक बनूंगा। लेकिन बचपन से बहुत सुना है और अच्छा गाना बहुत सुना है, और घर में ये लगा था कि मैं पेंटर बनूंगा क्योंकि मेरे पिताजी आर्टिस्ट थे और मैं खुद बहुत अच्छा पेंटर हूँ, पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप बनाता हूँ। फैमिली में म्यूज़िक एंड पेंटिंग दोनों बचपन से हमने देखा है और उसके साथ हम बड़े हुए हैं। और मेरे पिताजी पेंटर थे और हम लोग फिल्मों की पब्लिसिटी करते थे, जिससे आप होर्डिंग्स और बैनर्स जो देखते हैं एनआर भोसले के नाम से हम लोग करते थे। और एट द एज ऑफ 1974 में मैंने पहले पोस्टर, मतलब पहला पोस्टर पेंट किया, वो था राजेश खन्ना हेमा मालिनी की फिल्म प्रेमनगर का। तो मुंबई में जितने भी बैनर्स लगे थे सारे मेरे हाथों से पेंटिंग हुए थे। उसके बाद मैंने कई साल 74 से 82 तक लगातार पेंटिंग किया पिताजी के साथ। उसके बाद मैंने जैसे प्रेमनगर के बाद जूली, स्वयंवर, स्वर्ग नर्क, श्रीमान श्रीमती, निशाना, काफ़ी फिल्में मराठी हिंदी फिल्मों के बैनर्स पेंट किए। तो मेरा पेंटिंग भी इतना अच्छा था कि मेरे पिताजी को ये लगा कि मैं यही बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा।
1: एक मिनट सुदेश जी, आगे बढ़ने से पहले हम एक गाना सुन लें, फिर बातें भी होंगी।

क्योंकि गाने का शौक था और एक बचपन से ये मुझे एक ऊपर कुदरती एक देन थी कि आमतौर पे जब आदमी कोई अच्छा गाना सुनता है, उसकी इच्छा होती है गाने की, तो वो अपनी आवाज़ में गाता है। लेकिन बचपन से मुझे ये था कि अगर मैं हेमंत दा का गाना सुनूं तो हेमंत कुमार की जैसे ही गाने की अपने आप कोशिश होती, या सैगल साहब हो या सचिन दा हो या किशोर दा हो, तो ये फ़ायदा मुझे कॉलेज में हुआ। तो हर कॉलेज में जैसे कल्चरल ग्रुप होता है तो वहाँ मैं ज्वाइन हुआ, तो जब जब भी मौका मिले मैं एक एक दो दो लाइनें सब सिंगर्स की गाता था। तो उधर लोगों को अच्छा लगा कि एक आदमी कई आवाज़ों में गाता है। अब ये करते करते हुआ कि मिमिक्री, तो मतलब जैसे इमिटेशन तो चल ही रहा था, सब उस वक्त मुझे कॉलेज में पहली बार मतलब लोगों के सामने गाने का, या ना पब्लिक परफॉर्मेंस का, मतलब कई साल मुझे एक कह सकते एक ट्रेनिंग जैसे मुझे मिल गई। गाना तो बचपन से शौक तो था, लेकिन कभी किसी के सामने गाने की हिम्मत हुई नहीं। धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे कॉलेज जाने लगा तो लोगों ने मतलब फ्रेंड्स ने थोड़ा इनक्रेज किया, तो उनके साथ धीरे धीरे हंसी मजाक में पहले जैसे दोस्तों में बैठ के गाना सुनाना शुरू किया तो उन्होंने पसंद किया। फिर जैसे हमारे ग्रुप का जो कॉलेज का जो ग्रुप था ऑर्केस्ट्रा, उसमें कभी मौका मिला तो एक हाथ दूसरे गाने गा लेता था मैं। बहुत साल पहले हमारे जहाँ रहता हूँ मैं, हमारे कॉलोनी में एवरी ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते थे 26 जनवरी। तो वहाँ लोगों को, तो पड़ोस पड़ोस वालों को पता था कि थोड़ा बहुत अच्छा गा लेता हूँ। तो उन्होंने एक दिन अचानक मुझे ऐसे बिना कहे मेरा नाम अनाउंस करके मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया मुझे, और बोले अभी सुदेश भोसले गाएंगे। और मुझे पता भी नहीं था, और जब मैंने देखा कि सामने इतने लोग थे तो मैं तो बिल्कुल घबरा गया था। लेकिन मैंने गाना शुरू कर दिया, वो गाना था दुश्मन का, किशोर दा का, वादा तेरा वादा।

फूलों से, तो ये शुरुआत तो मैंने की और जब मैंने गाना खत्म किया तो वंस मोर हो गया, तो मैं भी हैरान हो गया वंस मोर। तो ये मेरा पहला पब्लिक परफॉर्मेंस था।

0: वेद भारती के हमारे सभी श्रोता सुदेश भोसले जी को बहुत करीब से जानते हैं, है ना? अजी जानेंगे क्यों नहीं, अक्सर सुदेश जी अपने हिट प्रोग्राम्स के साथ विविध भारती पर मौजूद रहते हैं। उनके ऐसे ही एक आइटम की छोटी सी झलक यहां भी।
1: इधर तुम्हारा घर में, तुम्हारा सामने किसी ने फादर को और तुम देखते रह गए। अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो अपन को उठाने का था। अपन का इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसका जरूरत है। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मासूम एंथनी को चर्च के बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। कौन पालता सा लवर इस बच्चा लोग को? ये पालता है ये। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं।
2: तो ये सीन था और बिल्कुल वो बच्चे एकदम हैरान हो गए। बिल्कुल दोबारा मुझसे वो करवाया, तब मुझे कहते ना कॉन्फिडेंस आ गया कि यस। उसके बाद मैंने उनके जो उस वक्त की सारी फिल्में थी, जैसे लावारिस, दीवार, या उसके बाद अम्मा अकबर एंथनी, अंधा कानून वगैरह, उनको मैंने लाके डायलॉग्स को लिखा, उनको बाय हार्ट किया। फिर एक एक एक एक जैसे मौके मिलते गए, मैं एक एक सीन लोगों के सामने करता गया। और उस वक्त बहुत पसंद किया लोगों ने, क्योंकि अमित जी बिल्कुल एकदम टॉप पर थे, मोस्ट पॉपुलर उस वक्त थे उनके, जब डॉन वगैरह फिल्में आई थी। और कोई मिमिक्री आर्टिस्ट उस वक्त अमित जी की नकल नहीं करता था, तो दैट्स वाई लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मेरी भी मतलब हिम्मत बढ़ गई।

0: शशि कपूर जी जो प्रोड्यूसर थे फिल्म अजूबा के, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो मुझे ले गए अमित जी से मिलाने कि अमित जी ये हैं सुदेश भोसले, इन्होंने गाया है आपके जो दो गाने इन्होंने गाए हैं। तो अमित जी को मैं देख रहा था जैसे साक्षात, यकीन नहीं हो रहा था कि अमित जी सामने खड़े मेरे, तो मैं हाथ जोड़ के उनको नमस्ते करने लगा तो सामने से वो हाथ जोड़ के बोले, भले अरे भैया हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती हैं। ये उनका फर्स्ट रिएक्शन था। और जब जुम्मा चुमा मैंने गाया उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं नहीं गाऊंगा, मेरे सारे गाने सुदेश गाएगा। तो ये उनकी रिएक्शन थी। बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे और बहुत इनकरेज भी किया।
1: परांदी गाजर, परांदी गाजर, ले गई

0: आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था स्टेज की दुनिया के जाने माने कलाकार और पार्श्व गायक सुदेश भोसले पर।
1: आज के फनकार

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। पेश है सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनी गंधा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हुए हैं। पेश कार्यक्रम एक फिल्म से, आज की फिल्म है दिलवाले।
1: छोड़ दो मुझे, भाग जाऊंगा, भाग जाऊंगा मैं। दुनिया की कोई पुलिस मुझे नहीं रोक सकती, भाग जाऊंगा मैं यहाँ से।
2: तू सपना से बहुत प्यार करता है ना, इसलिए तुझे हर किसी की आवाज सपना की ही आवाज लगती है।
3: सपना, सपना कौन थी?
4: मेरी किश्ती थी डूबी वहां।

0: अरुण, मेरी पार्टी में रंग कैसे जमेगा जब तक तुम शेर नहीं सुनाओगे?
1: हाँ, come on अरुण, come on।
2: ये आँखें, ये चेहरा, इंसान हो या परी हो तुम,

0: हमारी आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।
1: I love her! I love her!

इसी गाने के साथ कार्यक्रम एक फिल्म से समाप्त होता है। आज की फिल्म थी दिलवाले। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Kiran Jha. President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of armed forces, were also present on the occasion. A report. The President